फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो धुआं था, तो उसने उससे और जमीन से फरमाया कि दोनों आओ, खा खुशी से खा ना खुशी से। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं।

अगर ये लोग सरकशी करें तो अल्लाह को भी उनकी परवाह नहीं। जो फरिश्ते तुम्हारे परवरदिगार के पास हैं वो रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं और कभी थकते ही नहीं।

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: अर्रहमान,
0: वो जो निहायत मेहरबान है।
1: अल्लमल कुरआन,
0: उसी ने कुरान की तालीम फरमाई।
1: खलक़ल इंसान,
0: उसी ने इंसान को पैदा किया।
1: अल्लमहुल बयान,
0: उसी ने उसको बोलना सिखाया।
1: अश्शम्सु वल क़मर बिहुस्बान,
0: सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं।
1: والنجم والشجر يسجدان,
0: और बूटियां और दरख्त सजदा कर रहे हैं।

0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: इनमें
0: दो चश्मे बह रहे हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं,

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

0: 8 a.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Wednesday, 3rd of Zilhaj, May the 20th, 2026. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister has reaffirmed the resolve to defend the country's sovereignty and territorial integrity against any misadventure. Pakistan and the Asian Infrastructure Investment Bank have signed a loan agreement worth $320 million for the rehabilitation of N5 highway. The Chairman Senate says Pakistan and Australia have vast opportunities to further strengthen bilateral ties in diverse sectors. The Minister for National Food Security says sufficient reserves of wheat are available to meet the national requirements.
1: सामने वालों का बकरा भी आ गया। बाबा चले ना मंडी।
2: अभी चलते हैं।
3: पैसे रख लिए?
2: किस लिए? अब तो मंडी में भी पेमेंट होती है बराहे रास्त।
4: इस बकरीद पर कैश ले जाने के झंझट से बचें और रास्त से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर क्यूआर कोड स्कैन करें और पैसे ट्रांसफर करें बिल्कुल फ्री। तो कुर्बानी के लिए पेमेंट हाथ के हाथ बराह रास्त।
5: दिस इज FM 101.1
6: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: कराएं। नादरा की पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: ओ हर फन माला ओ हो जाएगा मोमिन, हक जदो सीने लाया दिल होया रोशन।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: वाह भाई, गाय वगैरह सब बिक गए, कैश रख लिया ना इबादत से?
3: कैश अब जेब में नहीं, बराए राज बैंक अकाउंट में। पेमेंट लेता हूँ सिर्फ राज से, यही है कैश की पक्की हिफाजत।
4: तो अपने मोबाइल से किसी भी बैंक की ऐप या पेमेंट ऐप पर QR कोड बनाएं और पेमेंट वसूल करें हाथ के हाथ, बराह रास्त।
5: दिस इज FM 101.1।
6: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
7: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमें कहते हैं FM 101 चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, और मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं। शो लाइव है सिटी वाइब्स, और एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को सुबह बखैर जिंदगी, सुबह बखैर पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेल 9:27 बजे आते हैं, मेरा आपके साथ ये साथ रहेगा सिटी वाइब्स में ठीक 11 बजे तक के लिए। बात कर लेते हैं अभी आज के दिन के मौसम के हवाले से, क्या कहता है आज का मौसम और क्या हालात वाकयात हैं आज के मौसम के लाहौर और उसके मदाफात में। वेल जनाब, जब भी आपसे मौसम की बात की जाती है, आपसे हमेशा ये लाजमन लाजमन कहा जाता है कि असल मौसम जो होता है ना, वो इंसान के अंदर का, उसके दिल का, उसके मन का मौसम होता है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल जनाब, ऐसा ही है। और कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि अपने दिल की, अपने मन की, अपने अंदर के मौसम का, यानी कि अपने मिजाज का जो ख्याल है ना, वो हमें रखना चाहिए, रखना आना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो तब ही मुमकिन हो पाता है कि बाहर के मौसम जितने भी शिद्दत वाले हों, जितने भी तुंदो तेज़ हों, जितने भी शिद्दत या हिद्दत वाले हों, आप अंदर से ठंडे ठंडे कूल कूल रहते हैं। और गर्मियों में होता है ना कि बंदे को हमें बिला वजह की तप चढ़ी होती है, ऐसे दिल चाहता है कि बस ना लड़े किसी से, कोई ना कोई बहाना मिले बात करने का, बात को बढ़ावा देने का, पंगा लेने का। तो अपनी सारी जो अंदर की गर्मी है, भड़ास है, वो निकालने का मौका मिल जाता है। तो हमने क्या करना है कि हमने ऐसी ऐसी दिल चाहता है कि बस ना लड़े किसी से, कोई ना कोई बहाना मिले बात करने का, बात को बढ़ावा देने का, पंगा लेने का। तो अपनी सारी जो अंदर की गर्मी है,

लग रहा है कि जैसे जून जुलाई के जो अय्याम होते हैं, अगस्त के अय्याम होते हैं, बारिश के बाद जैसे हब्स हो जाती थी, घुटन का माहौल हो जाता था, तो मुझे आजकल सुबह सुबह ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो मेरी आवाज़ से आपको लग रहा है, और चले मैं आपको बता देता हूँ, मैं रात को सोया नहीं हूँ। क्यों नहीं सोया? गर्मी बहुत लगी है। और गर्मी क्यों लगी है? क्योंकि हमारी साइड पे ऐसा कुछ हुआ है मामला कि ना हमारे इलाके का जो ट्रांसफार्मर है वो कहीं ख़राब हो गया है, पता नहीं फट गया है, क्या हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन बहुत बुरा हुआ है। और मेरी आवाज़ से मेरी जो मैं कहते हैं ना कि जो फ्रस्ट्रेशन होती है उसे आपको लग रहा होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको वो गर्मी नहीं लगने देंगे। सो आपको अच्छी अच्छी वाइब्स देंगे, अच्छे अच्छे ऐसा साथ आपको जो है वो बिल्कुल फराहम करेंगे। वेल, मौसम की हम बात कर रहे थे, और मौसम की बात कहाँ से कहाँ चली गई। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर ली जाए जो अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है, अभी की बात कर ली जाए जो है अभी से ही 37 हो चुका है, यानी कि 37, और मैक्सिमम जो आज रिकॉर्ड किया जाएगा वो है जनाब 42, यानी कि 42 डिग्री तक जाने वाला है। इसके साथ साथ अगर मिनिमम टेम्परेचर की अगर आज के दिन के हवाले से बात कर ली जाए जो रहेगा रिकॉर्ड किया जाएगा शाम के औकात के बाद, वो है 29। इसके साथ साथ ठंडी हवाएं चलने के इम्कान मौजूद हैं रात 9 बजे के बाद। हवा में नमी का तनासुब जो आज रहने वाला है इंतहाई कम, यानी कि 27%। इसके साथ साथ 3 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से आज हवा चलने वाली है, यानी कि कोई इतनी ख़ास हवा भी नहीं चलने वाली। वेल, आने वाले दिनों में कुछ इम्कानात हैं कि बारिश होगी, मौसम ठंडा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा मौसम। तो तब तक हमने क्या करना है कि हमने अपने आप को मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलना। अगर निकलना है तो सर पे कपड़े का, रुमाल का, छतरी का इस्तेमाल जो है ना वो हमने लाजमी करना है। इसके साथ साथ बच्चों का खसूसी ख्याल रखना है, उनको वो छोटे चश्मे जो होते हैं ना वो ले दें, वो जो ऐनक होती है, ग्लासेस होती हैं, वो उनको ले दें। अपनी आँखों का बचाव कीजिए, और ठंडे पानी के जो छट्टे होते हैं आप वो अपने मुँह पर भी मारिए और आँखों में भी बार बार मारते रहिए। तो ये मौसम होता है ऐसा, इसमें लू लगती है, पता नहीं चलता, और इसकी वजह से बुखार, सर दर्द और बहुत सारे ऐसे अमराज जो हैं वो सामने आ जाते हैं। सो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ परहेज़ कीजिए कि जो कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी ग़ज़ाएँ हैं जो गर्म ग़ज़ाएँ हो सकती हैं, नुकसानदेह हो सकती हैं, आपने उनसे परहेज़ करना है। बार बार नहाना है, और नहाना वैसे भी अच्छा होता है, सो कोशिश ये करनी है कि आपने नहा के सोना है और नहा के उठना भी है। वेल, मौसम की हम बात करें थे, और वही बात जो कि हम बारहा करते रहते हैं और आज भी करेंगे कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, क्योंकि मौसम तो इंसान के अंदर होता है, तो अंदर के मौसम का ख्याल रखिए। वेल, 9:32 हुए चाहते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल कर लेते हैं आसिम अज़हर की आवाज़। आसिम अज़हर के हवाले से आजकल काफ़ी बातें हो रही हैं और होती भी रहती हैं। मुझे लगता है कि ये जो आसिम अज़हर है ना, इनको पता चल गया है पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया सारिफिन की साइकी का। सो कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसे मामला जो हैं वो लेते रहते हैं, हम आज शेयर करते रहते हैं। तो आजकल भी कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं, गर्दिश कर रही हैं, लेकिन आज हम अभी इनके म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, और ऐसा ही म्यूज़िक, एक ऐसा ही म्यूज़िकल पीस आप तमाम समातों की नज़र करना चाहूँगा, जिसमें आसिम अज़हर बहुत पुराने, बहुत छोटे और बहुत यंग दिखाई दे रहे हैं। सो जब आप सुनेंगे, और मुझे लगता है कि आपने आसिम अज़हर के जितने भी गाने सुने हैं ना, ये जो मैं चलाने लगा हूँ ये आपने नहीं सुना होगा। बहुत ही मज़ेदार गाना, और मुझे ये सुनने के बाद एहसास हुआ कि आसिम अज़हर की म्यूज़िक की जो समझ बूझ है और मॉडर्न जो पॉप म्यूज़िक था उसकी तभी से इतनी पहचान थी, इतना उसको एक अच्छे तरीके से निभाया था। सो जब आप ये ट्रैक सुनेंगे तो तब आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। सो इस ट्रैक इस पर आपसे मुलाकात होते हैं, होती है। वेल, आसिम अज़हर कहते हैं सुन ले। सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड, एंड यस, डोंट गो एनीवेयर।

ओके जना, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं एफएम 101 चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, और मुझे मुस्तफा कहते हैं शो लाइव है एसटीटी वाइब्स। वेल जनाब, 9:39 हुए जाते हैं, 39 ही होते हैं ना वैसे, 9:39 AM। बिल्कुल जनाब, 11 तक के लिए रहेगा मेरा आपके साथ ये साथ। और बात कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से। जनाब आज 20 मई है और आज कुछ अहम दिन जो हैं वो मनाए जा रहे हैं। HR क्या होते हैं? बिल्कुल आपको पता है और आपकी उनसे यकीनन नहीं बनती होगी। अगर आप खुशकिस्मती से, बल्कि मैं कहूँगा बदकिस्मती से, अगर आप HR हैं तो आपकी अपने जो मातहत लोग हैं उनसे नहीं बनती होगी। ऐसा होता है कि नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आज HR जो होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से काम करने वाले अफराद होते हैं, जो ख़वातीन और हज़रात होते हैं, इनका आज आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। वेल, इनके अलावा अगर बात कर ली जाए, आज मक्खियों का दिन, यानी कि जो हनी बीज होती हैं, शहद की मक्खियाँ, इनका भी आलमी दिन जो है ना वो मनाया जाता है, और आज मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसकी भी तारीख है, इसकी भी अहमियत है, इसकी भी इम्पोर्टेंस है। इस पे हम बात करेंगे जनाब। और शहद के हवाले से हमें पता है कि क्या मामला होते हैं और किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या फ़वाद होते हैं। ये सब चीज़ें हैं, तमाम तर मामला हैं। इसके हवाले से हम एक आज खसूसी सेगमेंट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि शहद की मक्खी क्या करती है, कैसे करती है, और किस तरह से हमारे लिए एक टीम वर्क के साथ काम करने के बाद इतनी मीठी, इतनी बेहतरीन चीज़ बना कर देती है। जनाब इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा जनाब कुछ मामलात हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें से हमने आज बात करनी है कि जो आपकी मस्बत सोच होती है, इसकी आपकी जो ये जो याददाश्त होती है, जो आपकी मेमोरी होती है, इस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा हम बात करेंगे जनाब, सवाल आपसे मैंने करना था, मैंने अपना वाक़ अपना माजरा आपके साथ सुना दिया कि रात को मैं सो नहीं पाया। और अमूमन आजकल ऐसा होता है, गर्मी भी है और कुछ यू नो कि सोशल मीडिया की हमें इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो गई है, रील्स को हम स्क्रॉल करते रहते हैं, चाहे वो काम है, चाहे किसी भी तरह का मामला है। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम स्क्रीन टाइम के बहुत ज़्यादा आदि हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन के आगे, टीवी के आगे बैठे रहते हैं। इसका नुकसान किस तरह से पड़ता है, इस बात का हमें अंदाज़ा जो है एक सादा सी मिसाल से लगा लेना चाहिए कि हम कितने घंटे सोते हैं, अपनी नींद कितनी लेते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं आजकल सही से नहीं सो पा रहा हूँ, और आज रात तो बिल्कुल, यानी कि गुज़श्ता रात जो गुजर गई है, मैं तो बिल्कुल नहीं सो पाया। क्यों नहीं सो पाया, मैंने आपको बताया कि बत्ती गई हुई थी। और क्यों गई थी? क्योंकि हमारे इलाके का जो ट्रांसफार्मर था उसका कोई इशू निकल आया था, वो पड़ गया था। होपफुली मेरे जाने तक ठीक हो जाएगा और मैंने जाते ही सो जाना है। वेल, आप मुझे ये बताएं, सवाल आपसे ये किया जा रहा है कि आपने मुझे ये बताना है कि आप अपनी ज़िंदगी में, यानी कि अपनी रोज़ाना जो रोज़मर्रा की रूटीन है, इसमें कितनी नींद लेते हैं। या आप मुझे ये बताएं कि अगर आप नहीं सो पाते, सही से नहीं सो पाते, सो क्या क्या वजूहात हैं, और उन वजूहात के अलावा आप में क्या ऐसे इलामात हैं, क्या ऐसे मसले मसाइल हैं जिनको आज कल आप फेस करें, आप सामना करें। इस पे हम एक इंटरैक्टिव सेशन है वो करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी दिल की बात सुनेंगे। इस हवाले से कुछ ऐसी तहकीकात हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। हमारे भी और आपके भी नॉलेज में, इल्म में इजाफा होगा।

विजय, अब इसके अलावा कुछ खबरें होंगी, कुछ अपडेट्स होंगी, कुछ और आपके साथ गपशप लगाई जाएगी और ऑफ कोर्स आपकी जो लाइव कॉल्स हैं इनको भी इंटरटेन किया जाएगा। लेकिन 10 बजे के बाद हम आपको नंबर बता देंगे, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो हम फिर भी आपको बताएंगे। सो आप तब तक के लिए मैसेजेस कर सकते हैं 44471 पे। इसके अलावा आप थ्रू फेसबुक हम तक यानी कि मुझ तक अपनी रसाई को यकीनी बना सकते हैं। सो तरीकाकार इंतहाई आसान, यू कैन रीच मी अपॉन FM 101 लाहौर का जो फेसबुक फैन पेज है, FM 101 लाहौर लिखेंगे, ऑफिशियल आप साथ लिख लेंगे, सो हमारा जो असली वाला पेज है ना वो आपको मिल जाएगा। सो असल होने की निशानी ये है कि वहाँ पर आपको जो अभी हालिया पोस्ट, जो आपको पहली पोस्ट नज़र आएगी ना, वो मेरे शो से मुतालिक होगी। उसमें आपको एक प्यारा सा लड़का दिखेगा, वो यकीनन मैं हूँ। सो पिक्चर को चाहे आप लाइक कीजिए या ना कीजिए, लेकिन शेयर लाजमी कीजिएगा और अपनी राय का, मेरे सवाल का जो जवाब है वो लाजमी दीजिएगा। सवाल आपसे ये किया है कि आप आजकल क्यों नहीं सो पा रहे हैं, क्या मामलात हैं, क्या मसले मसाइल हैं, ब्रेकअप हो गया है, कोई टेंशन है, परेशानी है, सैलरी नहीं आ रही, आप बॉस ने कुछ कह दिया, घर वालों से आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो गई है। सो कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, बिल्कुल हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी सख्ती से तलखी जो है वो गुजर रहा होता है। तो वो कहते हैं ना कि जो मुश्किलात होती हैं, जो आसानियां होती हैं, वो बांटने से ही बढ़ती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि बाबा इशफाक रहमत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते होते थे। तो हमने बातें शेयर करनी हैं, आसानियाँ बांटनी हैं, जो हमें मुश्किल लगता है उसको आसान बनाने के हवाले से। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है, कोई काम किया है, सो हमने उसका तजुर्बा जो है वो शेयर भी करना है, तो हमें जान के अच्छा लगेगा आपके बारे में, आपके ख्यालात के बारे में। वेल जनाब, 9:45 AM, 9:45 हुए चाहते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं एक और ट्रैक और देखते हैं कि हमारा अगला गाना क्या कहता है। जनाब शामिल कर लेते हैं हसन रहीम और तलाल कुरैशी हैं, साथ में जस्टिन बीबिस मौजूद हैं। और मुझे जस्टिन बीबिस की वो वीडियो याद आती है जिसमें ये एक बर्तन बजा रही थी और उसमें इन्होंने जस्टिन बीबर का गाना जो था वो गाया था और क्या ही बेहतरीन अंदाज़ में वायरल हुआ था। सो जनाब बिल्कुल, जब इंसान में टैलेंट होता है और उसमें मुस्तकिल मिजाजी होती है, तो वो किस तरह से इंसान अपने टैलेंट का इजहार जो है वो बड़े लेवल पर, बड़ी सतह पर कर आता है। सो एक ऐसा ही गाना, एक ऐसा ही ट्रैक, इन तीनों आवाज़ों की जो है बिल्कुल इनकी आवाज़ों में जो है वो आपकी समातों की नज़र करेंगे। सो तब तक के लिए इस ट्रैक को सुनते हैं, इंजॉय करते हैं और वापस आते हैं इस ट्रैक इस पार। सो स्टे ट्यून, स्टिक अराउंड एंड यस, डोंट गो एनीवेयर। जनाब ट्रैक कॉल्ड पीछे हट।

0: ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमें कहते हैं FM 101 चैनल वीडियो पाकिस्तान लाहौर, और मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं। सो जनाब, 9:54 हुए जाते हैं पाकिस्तान का मयारी वक्त, और मेरा यानी कि हमारा अभी आपके साथ रहने का भी। सो हमारा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं यहाँ पर स्टूडियोज़ में इस वक्त सुबह के इस पहर में अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ एक बहुत ही हस्ती मुस्कुराती, बहुत ही हमारे रेडियो पाकिस्तान FM 101 की चमकती दमकती शख्सियत और बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत ही टैलेंटेड खातून मौजूद हैं, मोहतरमा मौजूद हैं, खदीजा मुराद। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अच्छा, मेरे काम देखें, मैं ऐसा हूं कि मैंने माइक आपका ऑन नहीं किया और
1: कोई बात नहीं, हम दोबारा से सलाम दुआ कर लेते हैं।
0: अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
1: वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूं, आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत प्यारा, आप बताएं?
1: बहुत प्यारे आप, माशाल्लाह बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, बहुत नफीस इंसान हैं।
0: अरे थैंक यू सो मच। मेरी एक्चुअली अभी ना मत बजी हुई है, मैंने आपको बताया रात को मैं सो नहीं पाया, इतनी गर्मी थी, पसीने से बुरा हाल था। हमारे इलाके में लाइट गई हुई थी और उसकी जो वजह थी वो ये थी कि ट्रांसफार्मर जो था वो कहीं फट गया, कोई मामला हो गया।
1: आजकल तो मुस्तफ़ा गर्मी की जो एक शिद्दत हम लोग महसूस कर रहे हैं ना, तकरीबन कोई पिछले 3-4 दिन से, और वो बहुत ज़्यादा हो रही है। हीट इंटेंसिटी वाकई ज़्यादा है, दोपहर के टाइम में भी, इवन रात के टाइम मौसम जाके थोड़ा सा बेहतर हो जाता था, लेकिन पिछले 3-4 रोज़ से हम महसूस कर रहे हैं कि वो भी बेहतर नहीं हो रहा। सो लेकिन मुझे सुन के बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप पूरी रात डिस्टर्ब रहे, लेकिन इसके बावजूद आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप अपने शो में बहुत टाइम पर पहुँचे, क्योंकि हमारी ऑडियंस को इंतज़ार होता है और उन्हें याद होता है कि आज के दिन में इस स्लॉट में किस आरजे के साथ उनकी बातें होने वाली हैं।
0: अच्छा, आपने थैंक यू सो मच, आपने तारीफ कर दी कि मैं टाइम पे, मैं कहूँगा कि मैं बिल्कुल ही टाइम पे पहुँचा था पहुंच गया था, ये अच्छी बात है।
1: पहुंच गए, देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है।
0: ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे बताएं, गर्मियों में क्या पसंदीदा कुछ पीती हैं आप मशरूबात में?
1: गर्मी जो है वो देखा जाए तो बड़ा एक सख्त किस्म का मौसम है, लेकिन हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को जो है वो हम फरामोश करें, या किन किन नेमतों के ऐसे जिनके हम शुक्र बजा ना लाएं। तो गर्मी को बर्दाश्त करने की जो सबसे बड़ी वजह एक ये है कि इसमें अल्लाह ताला ने जो आम का तोहफा हमें दिया है ना, कि वो हमें इस मौसम के लिए बाकायदा तौर पर इंतजार होता है कि यार गर्मी आ जाए, वरना अगर आम ना होता इस मौसम में, मैंगो सीजन अगर हम ना एंजॉय कर पाते, तो शायद गर्मी जो है वो ज्यादा तकलीफ दे महसूस होती। सो दैट्स द रीजन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है आम, और मैं बड़े शौक से खाती हूँ, फिर चाहे वो मिल्क शेक की फॉर्म में हो या क्यूब्स काट के खाए जाए, और इसके अलावा ठंडे ठंडे मशरूबात जो हम इसमें एंजॉय करते हैं जो गर्मी का तोड़ माने जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर चीज का हमें साथ में,
0: आपको पसंद है आजकल काफी बात हो रही है तरबूज के हवाले से?
1: बिल्कुल, तरबूज भी बहुत, और देखें अल्लाह ताला ने अगर मौसम में सख्ती रखी है तो साथ में हमें नेमतें वो अता कर रखी हैं कि जो बाकायदा तौर पर इस गर्मी का तोड़ कहा जाए जिन्हें, तो वो गलत नहीं होगा। उसमें आपने तरबूज की बड़ी अच्छी मिसाल दी है, फिर और आप देखें कि लस्सी बना के पी जाती है, दही की, दूध की लस्सी, वो बड़ी ठंडी होती है, वो भी आपके, आप कह लें कि स्टमक के लिए बड़ी अच्छी है, आपकी गट हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है।
0: सत्तू पीती?
1: सत्तू का शरबत बेहतरीन, मैं कहती हूँ कि जो शक्कर और सत्तू का शरबत जो बनता है ना, क्या ही जबरदस्त उसका टेस्ट होता है। जितने मर्जी आप जो है वो पैकेट्स वाले मशरूबात इस्तेमाल कर लें, पैकिंग वाले, लेकिन ये जो हमारी देसी चीजें हैं ये, इनका कोई जो है वो सानी नहीं हो सकता और इनका कोई मुकाबला नहीं है किसी और चीज से।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, और
1: 100% ऑर्गेनिक और बेस्ट फॉर द हेल्थ, और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की नेमतों का बस शुक्र अदा करते रहना चाहिए।
0: क्या ही कहने हैं, हम हमेशा शिकवा करते हैं कि मौसम की तलखी है, बहुत शिद्दत है, इद्दत है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये नहीं देखते उसमें क्या क्या नेमतें हैं, क्या क्या हमारे लिए ऐसे लवाजमा जो है वो कुदरत ने हमें अता किए हैं। वेल, इसके अलावा अगर बात कर ली जाए गर्मियों के हवाले से, सर्दियों के हवाले से ये बहस जारी रहती है कि कुछ लोगों को गर्मियां पसंद होती हैं, सर्दियां पसंद होती हैं, आपको क्या पसंद है?
1: अच्छा, मुझे सर्दियां वैसे ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल, अच्छा उसकी एक ख़ास ये भी वजह हो सकती है कि शायद हमारा, हम जिस खित्ते में रहते हैं वहाँ पे सर्दी का मौसम बड़ा कम दौरानिए का होता है, बहुत ज़्यादा एक तवील अरसा हम सर्दी का नहीं गुजारते। सो दैट्स द रीज़न कि जो चीज़ मुख्तसर होती है और कम वक्त के लिए होती है उसकी कदर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। सो ये एक वजह है कि मुझे पर्सनली सर्दियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं।
0: चलिए अच्छी बात है। वैसे ये देखा जाता है कि सर्दियां हम इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि एक तो गर्मी का मसला नहीं होता, लाइट चली भी जाए तो हम सो लेते हैं,
1: पुरसकून रहते हैं।
0: लेकिन सर्दियों में मुझे लगता है कि सर्दियों में अगर बारिश होती है ना, उसमें हम नहा नहीं पाते, उसको एंजॉय नहीं कर पाते।
1: अच्छा, वैसे जो सर्दियों की बारिश है उसका भी एक अपना मजा है।
0: जी बिल्कुल जनाब, हम बात करेंगे और अभी आपने बैठने दो मिनट।
1: जी मैं
0: एक न्यूज पे का वक्फा है, इसके बाद वापस आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड एंड यस डोंट गो एनीवेयर।
2: You are tuned into the one above, 101 F.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: This is FM 101.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: 101 FM.
2: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
3: This is FM 101.
4: पेशे खिदमत है प्रोग्राम हम सबका पाकिस्तान. इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे.

0: اوکے جناب، ویلکم بیک ونس اگین. ایک بار پھر سے آپ تمام سننے والوں کو ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں فیم 101 چینل ریڈیو پاکستان لاہور، اور مجھے مصطفیٰ کہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں، بلکہ میں جن کے ساتھ موجود ہوں، محترمہ خدیجہ مراد. سو میم، ہم بات کر رہے تھے گرمیوں کے حوالے سے، اور گرمیاں پسند ہے یا نہیں، آپ نے کہہ دیا نہیں پسند.
1: گرمیاں پسند ہے مینگو کی وجہ سے.
0: اچھا، آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کافی بحث ہوتی ہے، اگر کوئی یہ بندہ کہتے ہیں نا مجھے گرمیاں پسند ہیں، تو اچھی خاصی گالیاں بڑھتی ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسے نوجوان ینگسٹر جو ہوتے ہیں گرمیوں کے حوالے سے، آج کل یہ ڈبیٹ چل رہی ہے، باقاعدہ اس پہ میمز بن رہی ہیں. سو کچھ ایسے ینگسٹرز ہیں، وہ پکچر جب اپنی شیئر کرتے ہیں نا، یہ لکھ کے مجھے گرمیاں پسند ہیں، سو اس کے پیچھے اے سی لگا ہوتا ہے. سو یہ معاملات ہیں، یہ چیزیں ہیں، لیکن اس میں پسند ناپسند سے زیادہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر موسم کی اپنی ایک بات ہوتی ہے، اس کی خاصیت ہوتی ہے.
1: سو ہمیں اپنے فوائد ہوتے ہیں اور یہ ضروری ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم تو بڑے ایک، میں کہتی ہوں کہ پاکستان ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا تحفہ ہے، زمین کا ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں ہم ماشاءاللہ بہترین قسم کے موسم انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نہ تو لگاتار یہاں پہ ٹھنڈ پڑتی ہے، نہ لگاتار گرمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسم بہار عطا کیا ہے، خزاں کا جیسا خوبصورت موسم ہے، اس کی بھی ایک اپنی بیوٹی ہے. اور استھیٹیکلی آپ دیکھیں کہ آٹم سیزن جو ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے. سو دس از اے تھنگ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر لحاظ سے ملک پاکستان کو نوازا ہوا ہے، اور پاکستانی قوم ایک بڑی ہی خوش نصیب قسم کی قوم ہے. اور بات اگر ہم کرتے ہیں کہ جناب لوگوں کو گرمیاں پسند ہیں، تو بالکل ہونی بھی چاہیے، کیوں نہیں. آزاد ملک، آزاد شہری ہیں، حق بنتا ہے ہمارا کہ جو ہمارا دل کرے ہم وہ پسند کریں.
0: بالکل ایسے ہی ہے، اور پسند اپنی اپنی، لیکن بات ساری ہے کہ ہم نے خیال رکھنا ہے. اور موسم کی جہاں پر اس کی کچھ ایسی اچھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے تلخ معاملات بھی ہوتے ہیں. طبیعت آپ کی، آپ کا مزاج کچھ بھی خراب ہو سکتا ہے. سو احتیاط کرنی ہے، اچھا اچھا کھانا ہے، اچھا پینا ہے، ٹھنڈا پانی پینا ہے. آج کے دور میں
1: ٹھنڈا پانی مشروبات کا استعمال بہت زیادہ استعمال نہ کریں. بہت زیادہ ٹھنڈا پانی جو ہے یہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اور اس طرح کے موسم میں یہی ہے کہ سب سے پہلے تو خیال یہ رکھا جائے کہ آپ نے ڈی ہائیڈریٹڈ نہیں ہونا، آپ نے اپنا فلوئڈ انٹیک جو ہے وہ بیٹر رکھنا ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ ہم دیکھیں کہ اب ماشاء اللہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ قریب ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر تو خاص طور پہ کھانے پینے کی جو احتیاط ہے وہ بہت لازم ہے. گوشت کی تاثیر گرم ہوتی ہے، عام طور پہ نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فراوانی عطا کی ہوتی ہے گوشت کی اس عید کے موقع پر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ لیں کہ اعتدال جو ہے، بیلنسڈ رکھ کے کھانا، یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے اور صحت کی نشانی ہوتی ہے.
0: بالکل بالکل جناب، صحت اچھی تو سب اچھا، اور اعتدال کے ساتھ کھانا ہے. قربانی کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے، عید کی آمد آمد ہے، کچھ تیاری کیا آپ نے کہ نہیں؟
1: جی الحمدللہ، عید کی تیاری جاری ہے. ماشاءاللہ
0: روز ہی تیار ہو کے آتی ہے، آپ کی سب سے اچھی بات ہے.
1: تھینک یو سو مچ. یہ میری شروع سے عادت ہے، فرام دا ویری فرسٹ ڈے، جب سے میں نے آفس جوائن کیا، میں کہتی ہوں کہ جب بھی، انفیکٹ اگر میں آپ کو بات بتاؤں اپنے زمانۂ طالب علمی کی، تو وہاں پہ جب ہمارا یونیورسٹی کا فرسٹ ڈے تھا، اورینٹیشن ہو رہی تھی ہماری، تو ہمیں ہمارے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھیں، انہوں نے اپنے اس لیکچر میں ایک بات سمجھائی کہ جب آپ نے اپنی یونیورسٹی آنا ہے کل کو، آپ نے جب یہاں سے تعلیم حاصل کر کے اپنے ورک پلیسز پہ جانا ہے، تو آپ کو دیکھ کر یہ نظر آنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ایک گھنٹہ پہلے اٹھیں آپ. ٹھیک ہے نا، ایک گھنٹہ پہلے اٹھیں تو آبویسلی آپ اٹھ کے اپنے آپ کو فریش کریں گے، آپ اچھے سے تیار ہوں گے، نیٹ اینڈ ٹائیڈی ہو کے آپ اپنے ورک پلیس پہ آئیں گے. تو صبح صبح جب آپ اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں اور خود سے تیار ہو کے اپنی جگہ پر آتے ہیں، تو یقین کریں کہ پورا دن آپ کا فریش گزرتا ہے، اچھا گزرتا ہے. گھر سے ہی ہسل اینڈ بسل میں آئیں گے، اور منہ بھی پراپر طریقے سے نہیں دھویا ہوا، آپ کے بال آپ نے پراپرلی کام نہیں کیے ہوئے، تو نہ تو دیکھنے والے پہ اس کا کوئی اچھا تاثر آتا ہے، اور نہ ہی آپ کی اپنی طبیعت جو ہے وہ پراپرلی فریش ہوتی ہے، اور نہ آپ کا کسی کام میں دل لگتا ہے. سو دیٹس دا ریزن.
0: مجھے یہ بتائیں کہ بینگ اے وومن، بینگ اے مدر، آپ ماشاء اللہ ماں ہیں،
1: جی الحمد للہ،
0: سو کس طرح یو نو کہ وومنس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے صبح کے وقت، ورکنگ وومنس کے لیے مینج کرنا، کم ٹائم میں زیادہ جو ہے اپنے آپ کو گروم کرنا، اپنا خیال رکھنا، ناشتہ کرنا، سب کا خیال رکھنا، اور اس کے بعد اپنے کام پہ جانا، سو کیسے کر لیتی ہیں؟
1: اچھا مصطفیٰ، بڑا ہی مزے کا سوال ہے. اور میں بلکہ سمجھتی ہوں کہ ہماری سننے والی اس وقت، ہماری وہ لسنرس جو خواتین ہیں اور ہمیں سن رہی ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نا، جو ایک خاتون ہے، جو ایک عورت ہے، उसको मल्टीटास्किंग बनाया है. ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना औरत के अंदर ये कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो एक ही वक्त में दो तीन काम इकट्ठे कर लेती है और मैनेज कर लेती है.
0: बिल्कुल ऐसे
1: तो ये एक बहुत बड़ी वजह है. और आप कहें कि कुदरती तौर पे चीज़ें मैनेज हो जाती हैं. सिर्फ ये कि आप अगर इसको अपनी नर्व्स पे ना लें, आप हर चीज़ को बर्डन के तौर पे ना लें, आप थोड़ा सा सिस्टमैटिकली होकर चलें. और जब आपको पता है कि यू आर अ वर्किंग लेडी, आपने जाना ही जाना है, आपने बच्चों को भी प्रॉपरली देखना है, आपने अपने हाउस होल्ड अफेयर्स भी देखना है, तो अल्टीमेटली चीज़ें जो है ना सीधी होने लग जाती है.
0: अच्छा,
1: और मोस्ट इम्पोर्टेंट
0: सवाल, चलिए बातें हम कोशिश करें शॉर्ट करें आपसे.
1: अच्छा,
0: मैं
1: एक बात
0: मैं
1: जरूर, एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहूंगी कि इसमें बहुत हद तक घर के जो मर्द हजरात हैं उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है.
0: मैं यहीं पर आने लगा.
1: अगर मर्द हजरात ताउन कर लेना तो यकीन करें कि औरतों की जिंदगी बहुत आसान हो जाए. बिल्कुल. और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि मैं इस मामले में आई एम अ ब्लेस्ड सोल के मेरे बिल्कुल मेरे लाइफ पार्टनर माशा बहुत अच्छे हैं और वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं. दैट्स द रीजन की जिंदगी की गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है.
0: माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है. अच्छा, मैं कह रहा था कि हम कम वक्त में ज्यादा सवाल आता आपसे, ज्यादा जो चीजें हैं ना वो हल करने की निकलवाने की कोशिश करें. कोशिश ये है कि हम वो बातें करें जो कि अमूमन कम की जाती हैं, आप जैसे लोगों से कम की जाती है. सो मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि चलें इसमें जेंडर की कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. सवाल ये है कि बींग अ वुमेन, चलें मैं अपनी बात कर लूँ कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस होते हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ कहीं ना कहीं मिक्स कर देते हैं. सो पर्सनल लाइफ में काम करना मुश्किल हो जाता है, कोई मसला है, कोई इशू है, लेकिन ऐसे चेहरे के साथ, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ और ऐसे प्रोफेशनलिज्म के साथ अपनी फील्ड में काम करना, इसके पीछे क्या राज है?
1: अच्छा, इसके पीछे जो है ना सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊँ कि फॉर मी माई प्रोफेशन इज रियली रियली मैटर्स अलॉट. क्यों मैटर करता है? इसलिए मैटर करता है कि मेरी नेचर को बहुत ज़्यादा जो है ना सूट करता है. और मेरा शौक था कि मैं इस जगह पे, और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने इस इदारे को, अपनी इस जॉब को ओन करती हूँ.
0: क्या बात,
1: ये एक फोर्स्ड किस्म का प्रोफेशन नहीं है मेरे लिए. आप यूं कह लें,
0: मतलब मैं यूं कह लूं कि आपके लिए प्रोफेशन नहीं है, आपके लिए पैशन है.
1: ये पैशन है और ये सबसे बड़ी वजह है कि चाहे हम लोग, आपको पता है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है या हमारा जो काम है, हम लोग 24 आवर्स ऑन ड्यूटी होते हैं.
0: बिल्कुल ऐसे
1: जितनी देर हमारी ट्रांसमिशन चल रही ना, अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब ट्रांसमिशन हमारी बंद नहीं होती, और जब ट्रांसमिशन बंद नहीं होती तो हमारा ऑफ नहीं होता. सो वी आर 24/7 ऑन ड्यूटी.
0: बिल्कुल ऐसे.
1: और जब मतलब के मुझे पसंद था बातें करना, मेरी हॉबी थी अच्छी अच्छी बातें करना, लोगों से अच्छी अच्छी बातें सुनना. सो वैसा ही प्रोफेशन अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दिया. और जैसा हमारा तो मोटो ये है रेडियो पाकिस्तान का कि जी लोगों से अच्छी बात कहो. बिल्कुल
0: बिल्कुल ऐसा ही है. और चलें, आपने ये बता दिया कि आपका पैशन था. मुझे इससे ये बात याद आती है कि हज़रत वासिफ अली वासिफ कहते थे कि इंसान की ज़िंदगी में इस बात से बड़ी कोई आयाशी नहीं हो सकती कि उसका जो शौक़ है ना वो उसका जरिया रोज़गार बन जाए.
1: एग्जैक्टली. When your hobby becomes your profession,
0: बिल्कुल.
1: then there's not even a single day in your life when you have to work.
0: आयाशी करी या फिर चले अल्हम्दुलिल्लाह. चले ऐसे ही अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ऐसे ही आज जो बड़े बड़े कार हैं नुमाएं आप सारी जान देती रहे. हमारे साथ एक कूलर मौजूद है, जानते हैं कौन है, कहाँ से ले ले कॉल.
1: जी जरूर
0: जी. अस्सलाम ओके अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: दोनों की मैडम आई हुई है, हमारी खदीजा मुराद. ये मेरी ना हॉबी डोल है, ये बड़ी प्यारी इनकी आवाज है, इतनी मीठी बोलती है.
0: हाँ जी,
2: दोबारा इनके साथ मिले.
0: जी बिल्कुल ऐसा ही है.
2: मैडम अस्सलाम वालेकुम.
0: सलाम कह रही हैं आपको, फरी चुबुची से बात कर रही हैं.
1: वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम फरी जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है.
2: आपको मिली थी ना, आपके स्टूडियो में आ रही थी.
1: जी जी.
2: तो आपकी स्पीच हुई, बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं. आपको याद चाह रही हैं, अगर आपको मिल्क केक चाहिए तो मैं लेके आऊँ बना के आपके लिए.
1: परी जी आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आपके खलूस का बहुत शुक्रिया. अब जब भी हैं आप वैसी हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि बहुत गर्मी है, प्लीज़ किसी भी तरह से ख़ुद को थकाइएगा मत. और आपका आना जो है ना यही हम सब के लिए काफ़ी है, और आपकी दुआएं चाहिए हमें.
2: आप बड़ा अच्छा शो पेश करती हैं,
1: जी जी फरी जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपना ये शो दोबारा से स्टार्ट करेंगे और इसके पीछे कुछ ऐसी मैनेजमेंट की वजूहत है जिसकी वजह से हम लोग शो जो है वो कुछ अरसे के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन इंशाल्लाह आप सबका प्यार मोहब्बत हमारे साथ शामिल है, आपका खलूस हमें हासिल है, तो बहुत जल्द हम अपने उस शो के साथ वापस आप लोगों के पास आएंगे और ढेरों ढेर बातें किया करेंगे।
2: हमें उम्मीद है कि आप दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जुबैर बशीर, डॉक्टर बसरा साहब और आपकी पूरी मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी दुआएं, ईद मुबारक आपके लिए।
0: अच्छा चले जी, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।
2: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
1: पहले आवाज आ रही थी।
0: हाँ ठीक है, ये ओके जनाब, 10:14 हुए चाहते हैं। सो अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, सो यू आर मोर देन वेलकम। तरीका इंतहाई आसान, FM 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज। इसके अलावा अगर आप कॉल करना चाहते हैं, कॉल करने के लिए यू कैन कॉल मी अपॉन 04-4111-0101। सो यहाँ पर आने के बाद आप बिल्कुल जनाब हमसे बात कर सकते हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं और सबसे बढ़ के हमारी नन अदर देन खदीजा मुरा साहिबा से बात कर सकते हैं। सो ओके, अच्छा हम बात कर रहे थे गर्मियों के हवाले से, वहाँ से बात चली प्रोफेशनलिज्म के हवाले से और ज़िंदगी के मसले मसाइल में से निकलते हुए अपने काम में एक क्या कहते हैं कि बेस्ट होना, अपना बेस्ट देना, बेहतरीन काम करना। सो आपके प्रोफेशनलिज्म के पीछे आपने बताया कि आपके पार्टनर का साथ है और आपका पैशन भी है, लेकिन इसके अलावा कहते हैं कि किसी भी काम में चाहे वो आपका पैशन है उसमें मुस्तकिल मिजाजी बहुत मुश्किल से आती है।
1: ये इस बात से मैं इत्तफाक करती हूँ। अच्छा इस चीज़ का जो क्रेडिट है ना मुस्तकिल मिजाजी का, वो मैं अपने सीनियर्स को दूंगी।
0: अच्छा
1: कि अल्हम्दुलिल्लाह वर्क प्लेस पे अल्लाह ताला ने इस तरह के सीनियर्स हमें अता किए कि जिन्होंने कदम कदम पे हमें बेहतरीन तरीके से गाइड किया।
0: सही।
1: एक नई फील्ड थी, नई जगह थी और वहाँ पर अपना आप मनवाना, देखें गर्ड्स अगर हों भी किसी शख्स में, उन गर्ड्स को भी ग्लोरीफाई करने के लिए तराश और खराश जो है वो ज़रूरी है। जैसे हीरा जो है ना तराश खराश के बाद ही अपनी असली फॉर्म में आता है। सो वी कैन नॉट से कि सिर्फ गर्ड्स का होना काफ़ी है, आपको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। और वर्क प्लेस पे वो फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है हमारे सीनियर्स के हाथ में होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर्स ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया और बेहतरीन हमारी रहनुमाई की।
0: आपसे पूछने लगा था कि आपने इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से आई, सो उसके पीछे मुझे लगता है कि ये राज है कि आपको मिला है जो
1: बिल्कुल
0: वो आप आगे दे रही हैं।
1: इंसान के पास जो होता है ना वही तकसीम करता है,
0: लेकिन लाजमी नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें आपकी नेचर का भी बड़ा किरदार होता है।
1: दैट्स ट्रू,
0: आपकी
1: नेचर
0: जबिलत होती है।
1: तो मेरी ये कोशिश होती है कि अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो आप वही तकसीम करो। हाँ कहीं पे अगर आपको ज़िंदगी में किसी ने कुछ अच्छा नहीं भी दिया तो कोशिश करें कि आपके हाथ से वो चीज़ आके ना जाए। ये तो हमारे अपने कंट्रोल में है ना, और हम अपनी नेचर को इस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं।
0: अच्छा।
1: और अपनी आदत में हम ये चीज़ें शामिल कर सकते हैं। बहुत सी जगहों पर ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ होती हैं, हमें बुरी लगती हैं या किसी ने हमारे साथ हक तलफ़ी कर दी होती है। कोशिश करें कि जो चीज़ आपको नागवार गुजरी है, आपको बेहतर नहीं लग रही, वो आप आगे तकसीम ना करें, आगे मत बांटें। कहीं तो इस चेन को ब्रेक होना चाहिए ना।
0: भले मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है, हम हमेशा तहैया करते हैं, इरादा करते हैं कि हमने तल्ख नहीं होना, सख्त नहीं होना, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना हमारे मिजाज में, हमारे एटीट्यूड में, हमारी चाल ढाल में ये चीज़ें आ जाती हैं। आपके साथ ये मामला मतलब बहुत कम, मैं आपकी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा और मेरी ये बात है कि मैं तारीफ़ बहुत कम करता हूँ लोगों की और करता उन्हीं की हूँ कि जो वाकई डिज़र्व करते हैं। मैं काफ़ी ब्लंड आदमी हूँ इन मामलात में। सो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने खुद आपका आपके साथ काम किया है, हमने रोड शोज़ किए हैं और मुझे याद पड़ता है, बल्कि अभी रिसेंटली मुझे कॉल्स जितनी भी आती हैं वो इसी हवाले से आती हैं, उसमें आपका नाम भी शामिल होता है खदीजा मुराद। सो बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद है कि जब भी आपके साथ काम किया, हमने रोड शोज़ रिकॉर्ड किए, एडिट किए, रात को 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आता?
1: नहीं, काम के मामले में
0: नहीं हो सकता।
1: काम जो है ना मुस्तफा, काम इबादत।
0: मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आपको गुस्सा आता है वैसे?
1: गुस्सा देखें आता है, गुस्सा इंसानी जबिलत है, लेकिन जहां मेरा काम इन्वॉल्व है ना, जहाँ ऑफिस वर्क इन्वॉल्व है वहाँ कतई तौर पे मुझे गुस्सा नहीं आता, वो मेरी ड्यूटी है।
0: सही।
1: और मेरे ड्यूटी आवर्स जो है, देखिए हम लोग इसी पैशन के साथ काम कर रहे हैं ना, हमने बूस्ट देना है अपनी ट्रांसमिशन को, हमने लोगों तक अच्छी बातें पहुँचानी है, यही हमारा मोटो है और हम इस पर स्टेडफास्ट हैं।
0: सही।
1: ठीक है, सो इस मामले में नहीं। हाँ, अगर कोई ज़ाती बात है, मेरी ज़ाती ज़िंदगी में कोई ऐसी इस तरह की बात है जो मुझे नागवार गुजर रही है, तो गुस्सा आता है और बहुत बुरी तरह आता है। पिटाई
0: जोक्स अपार्ट, वेल 10:18 बजे आते हैं हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, जानते हैं कौन है कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक हो
0: सर? बिल्कुल ठीक ठाक। तुसी सुनाओ, कौन गल कर रहे हो? कितों
3: सर? बॉडी जट गल कर रहे हैं सर, रावी दे कंडे दे।
0: अच्छा जी, रावी दे कंडे हो आगे ने। बॉडी जट, बॉडी जट साहब की हाल चाल ने?
3: तिलक
0: इना जाना अंदर है। क्या बात है, क्या बात है, दरिया के ठंडे ठंडे ताजे दुआने खा रहे हो फिर तुसी खिलिया खिलिया।
3: सारिया
0: ने सलूट जी, सारिया ने सलूट,
3: बड़ी मेहरबानी सर। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਰਜੇ ਸਰ, ਮਖਸੂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਜ਼ੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ,
0: ਕੀ ਬਾਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
3: ਸਰ,
0: ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਪੀਆਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੈ।
1: आप ये देखिए इतने शौक से सुनते हैं हमारी ट्रांसमिशन, ऑलमोस्ट हमारे सारे आर्टिस्ट का पता है।
0: मैं यकीन करूं, चलिए मैं बता देता हूं, ये बॉडी जट है। मुझे अक्सर पता क्या कहता है, मुस्तफा यार मैंने तेरी आवाज का नशा है। तुसी कहंदे हो कि नहीं कहंदे? वैसे दस दियो आज।
3: हां जी सर, कहंदे हैं। क्यों नहीं सर कहंदे?
0: अच्छा,
1: देखें जी, इन्हीं मोहब्बतों की वजह से, इसी खलूस की वजह से हम लोग जो है वो अपने शोज सजा कर बैठे होते हैं अपने ऐसे ही लिसनर्स के लिए।
0: बिल्कुल ऐसी है। चलो सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
3: जिंदाबाद
0: जिंदाबाद। ओके सर, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। अच्छा, ले लेते हैं कॉल, कॉल से बात करें।
1: बिल्कुल करें
0: जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें? कहां से?
4: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है जी आप?
0: हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है सर। कौन बात कर रहे हैं, कहां से?
4: अब तो पहचान लो भाई, क्या हो गया आपको, अब पहचानते नहीं हमें?
0: सर आप नाम बता दें तमाम सुनने वालों को, नए सुनने वालों को बता दिया करें ना।
4: तो ये बात करें ना, आप खुद नहीं पूछ रहे तो इसलिए हम ना बताते हैं। मोहम्मद शिदार उर्फ मौला जट बात कर रहे जी।
0: अच्छा ठीक है, आप पश्तून हैं
4: जी?
0: आप पश्तून हैं, आपका लहजा पश्तून लग रहा है मुझे।
4: जी हम पंजाबी है, पंजाबी भी बात करता हूं।
0: अच्छा, क्या बात है सर। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे मौजू के हवाले से? गर्मियाँ पसंद है, सर्दियाँ पसंद है? अच्छा मौजू ये नहीं था, सवाल आपसे पूछ लिया। तुम किस और पास जा रहे हो? अच्छा जी सर
4: जी, आप पहले मुझे पहचाने नहीं, पहले पहचाने
0: सारा। आप अपना नाम बता दें प्लीज, बड़ी मेहरबानी, मैं नहीं पहचान पाया।
4: बता दें फिर।
0: हाँ जी बता दें, बता दें, बता दें।
4: मोहम्मद शहजाद केले वाला।
0: अरे क्या बात है, शहजाद साहब है, सीनियर कॉलर है और मुझे लगता है कोई प्रैंक कर रहे थे, क्या मामला थे सर। टाइम जाया नहीं करना, बहुत शुक्रिया आप। जी जी, क्या कहना चाहेंगे जल्दी से?
4: ये बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और ये आप भी आई, इनको मैडम साहब को भी सलाम मेरा बोता बोता।
1: वालेकुम अस्सलाम।
4: हम सबको चाहिए एक रहना चाहिए, एक अच्छी बात करनी चाहिए और सलूक प्यार मोहब्बत वाली बात करनी।
0: जी
1: बेशक,
0: सही हो गया,
1: बहुत तो अच्छा पैगाम है आपका।
4: ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, अल्लाह
0: बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। काफ़ी अरसे के बाद इनसे बात हुई है और ये वो कॉलर हैं कि कोई भी एनिवर्सरी होती है, कोई मामला होता है, सो ये यहाँ पे सबसे पहले पहुँचे होते हैं। ये रमज़ान में मेरे लिए केले ले आए थे, मैं एक टॉपिक था डिस्कस कर रहा था बनाना शेक के हवाले से ना, तो मुझे कॉल्स आ रही हैं और पता नहीं क्या मामला, मैं एकदम से पैनिक हो गया, पता नहीं क्या हुआ. सो मुझे बाहर से गार्ड ने आके बताया कि बाहर पर लिस्नर हैं और आपके लिए इतने सारे केले लेके आए थे, मैंने यहीं पर बांट दिए. सो खुद भी खाए थे, तोहफा तोहफा होता है. जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
5: वालेकुम.
0: जी सर, अरे सर सलीम टेलर आगे इच्छा बजाज लाहौर से. मेरी बचपन की बहुत सारी यादें हैं इच्छरे से, आपको पता है.
5: वाकई
0: सर, क्या कहना चाहेंगे?
5: मिस आई हैं, अस्सलाम वालेकुम, बहुत सारी दुआएं. बहुत अच्छा लगा आपका यहाँ पे आवाज सुनना, आपका आना.
1: थैंक यू सो मच सलीम साहब, बहुत शुक्रिया.
5: अगर आप टाइम बहुत कम है, अगर कुछ लेके भी आए आपके लिए तो आप चले जाएंगे.
0: नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं
1: सलीम साहब, किसी चीज की जरूरत नहीं. आप शो सुन रहे हैं, शो को पसंद कर रहे हैं, यही हमारी जो है ना सबसे बड़ी विक्ट्री है. और यही आप लोगों का खलूस और मोहब्बत जो है, यही सबसे बड़ा तोहफा है जो अनमोल है.
0: सलीम साहब के कपड़े कुपड़े सीते हैं लेडीज के, तो है ना, सीते हो ना तुसी, कोई लाओगे कोई डिस्काउंट वगैरह के? कोई ना
5: वो पापियो तुसी आंदे नहीं इधर.
0: ले फिर हुन सी आई है ना, ठीक है मैडम बैठे ने, इना दा कोई भी होना ऑर्डर होएगा ना सूटा दा, ए टाडी वाली आ रही है, ठीक है
5: जी जी.
0: चलो,
5: और आपकी पूरी मैनेजमेंट को सलूट पेश करते हैं,
1: थैंक यू सो मच,
5: यहां पे आते हैं,
1: बहुत शुक्रिया.
5: और जैसे आरजे डॉग्स वसीम अहमद साहब
1: जी जी,
5: सीनियर हमारे हैं यहाँ पे, जब आते हैं रौनक लग जाती है, जैसे आपने लगाई है.
0: क्या बात है सर, आप लोग आते हैं तो रौनक बिल्कुल डबल हो जाती है, दुबारा हो जाती है.
5: और एक और आरजे हैं, वो नहीं भूलेंगे हमें, कैसे कर लेते हैं, ज़िया अंजुम साहब.
0: ज़िया अंजुमन साहब, ज़िया अंजुमन बहुत अच्छा बोलते हैं.
5: मोदी जट साहब आए हैं, बड़ा अच्छा लगा. और जहाँ तक आवाज आ रही है आपकी, हमारी से सलामती की दुआ.
0: अरे सर बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज. जनाब 10:25 हुए जाते हैं 04-2111-000-101. और कॉल्स हम ले रहे हैं, अब मैम भी बैठी हैं, अच्छा लग रहा है आप तमाम सुनने वालों से बात करके. सो ऐसे मौके जो है कम कम आते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
6: वालेकुम अस्सलाम, सलमान राजपूत बात कर रहा हूँ भाई, लाहौर से.
0: सलमान राजपूत बात कर रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप?
6: सर टॉपिक ये था, गर्मियों के हवाले से टॉपिक रखा
0: है. सर टॉपिक ये था कि रात को आप जल्दी सोते हैं कि नहीं सोते?
6: रात को सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, इंसान की जिंदगी में क्या मामलात हैं हिसाब से वो जागता. और इसका अगर मैं दुरुस्त जवाब अपनी नजर में देना चाहूँ तो वो यही है कि बचपन से कुछ आदतें होती हैं आपको, कुछ लोगों को होती हैं ज्यादा लेट जागने की और कुछ लोगों की रूटीन होती है जल्दी सोने की.
0: ठीक हो गया, ठीक
6: हो गया. परेशानी का इसमें बिल्कुल भी लिंक नहीं है, क्योंकि इंसान परेशान है, बहुत ज्यादा खुशी हो या बहुत ज्यादा परेशानी हो तो आपको अगर नींद आनी है तो आपने सो ही जाना
0: है. सही है सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए, आपकी तमाम मुश्किलें दूर फरमाए, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है?
6: ठीक है सर.
0: ओके सर, ओके सर, अल्लाह. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
7: अस्सलाम वालेकुम.
0: जी वालेकुम अस्सलाम.
7: मुस्तफा भाई क्या हाल है, ठीक है?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं सर, खैरियत से हैं?
7: सबसे पहले आपको और मैडम खदीजा मुराद साहिबा को हम दिल से खुश आमदीद कहते हैं.
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. क्या कहना चाहेंगे?
7: जी मैडम, मैं मोहम्मद उस्मान मुगल अर्ज कर रहा हूँ.
1: जी जी मोहम्मद उस्मान साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
7: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके 2-3 शो जो हुए थे
1: जी जी,
7: तो उसके बाद आपने लंबी छुट्टी ले ली
0: है जी.
1: लंबी छुट्टी पे हम नहीं गए, इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आएंगे आप लोगों से बहुत सारी बातें करने के लिए. कुछ सिलसिले इस तरह के हो गए कि आपको भी पता होगा कि सरकारी दफातर में 2 दिन जो है वो आना होता है और 2 दिन हमने वर्क फ्रॉम होम करना होता है. तो ये एक वजह थी कि मैनेजमेंट सारी की सारी, हम सारे प्रोड्यूसर्स एक दिन ऑफिस नहीं आते, हमने ऑफिस के दिन जो है वो डिवाइड किए हुए हैं. और चूंकि ये कंबाइंड शो होता था तो अब इंशाल्लाह दोबारा से हम कुछ ईद के बाद ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारा शो रिवाइव हो जाए और हमारे वो तमाम लिसनर्स जो हमें मिस कर रहे हैं हम दोबारा उनके साथ जो है वो शामिल हों और बहुत सारे उनके साथ बातें कर सकें.
7: जी मैम, अगर आप ये कर लेंगे
1: जी जी
7: तो आपका शुक्रिया होगा.
1: नहीं इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं,
0: जरूर करेंगे जी, जरूर.
7: बाकी जो नींद है
1: नींद
7: मैं कोशिश करता हूँ कि ईशा की नमाज पढ़ के सो जाऊँ।
1: जबरदस्त, बहुत अच्छी आदत है, अच्छी सेहत का राज है ये।
7: अगर तो मैं घर में हूँ तो फिर मैंने सो जाना है, अगर कहीं गया हूँ पढ़ने के लिए
1: जी
7: तो फिर तो एक मजबूरी बन जाती है ना।
1: बिल्कुल,
7: फिर भी मेरी कोशिश यही होती है कि जैसे मैं घर में इन हूँ तो कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी सो जाऊँ।
1: ये बहुत अच्छी आदत है
7: कि यार अभी आज चले घंटा रेस्ट कर लें या ये कर लें वो कर लें तो फिर सोएंगे, नहीं कोशिश करनी है कि जैसे होम में एंट्री देनी है तो सोने की कोशिश करनी।
1: क्या बात है,
8: चले सर बहुत शुक्रिया, ठीक है अपना ख्याल रखिएगा।
7: पाकिस्तान
0: जिंदाबाद। वेल जनाब, अभी हम कुछ देर के लिए जो कॉलर्स का सिलसिला है ये हम मुनकता करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं आज के मौजूदात के हवाले से, मक्खियों का, शहद की मक्खियों का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। सो कभी चलें, मक्खी ने काटा है आपको शहद की मक्खी?
1: जी बिल्कुल काटा है, बचपन में मुझे तो 2-3 दफा काटा है शहद की मक्खी ने, और मेरा तो बहुत ही ये आप कह लें कि एक बुरा किस्म का तजुर्बा है। और लेकिन चले एक नई फीलिंग भी तो आए ना कि शहद की मक्खी काटते तो कैसा असर आता है,
0: कैसा फील हो? मक्खी ने काटा है आपको शहद की मक्खी?
1: जी बिल्कुल काटा है, बचपन में मुझे तो 2-3 दफा काटा है शहद की मक्खी ने, और मेरा तो बहुत ही ये आप कह लें कि एक बुरा किस्म का तजुर्बा है। और लेकिन

0: ये दिन मनाने का मकसद भी ये है कि जो ऐसे जंगलात हैं, ऐसी जो मकामात हैं, ऐसी जगह हैं, उनका हमने ख्याल रखना है, इस नस्ल का हमने ख्याल रखना है, क्योंकि शहद बहुत नापीद होता जा रहा है।
1: आप ये शहद की मक्खियां कम होती जा रही हैं। शहद जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है।
0: बिल्कुल
1: ठीक। और जहाँ जन्नत का अल्लाह ताला ने हमें एक तसव्वुर दिया है, एक हमें ख्याल अल्लाह ताला ने जो जन्नत का दिया है, उसमें भी खास तौर पर शहद की जो नहरें हैं उनका जिक्र है। तो इस वजह से आप ये देखें कि शहद में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। और अब हम जो इंसान हैं, हमारी जिम्मेदारी है ये कि हमने शहद की मक्खियों को एक्सटिंक्ट होने से बचाना है। हमने दरख्तों को, जंगलात को जिस तेज़ी से हम ख़त्म कर रहे हैं, हमने नहीं करना। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एक तोहफा है और इसमें जो शिफा पोशीदा है इसका हमने ही ख्याल करना है। लिहाजा शहद की मक्खियों का और जो छत्ते हैं इनका ख्याल कीजिए, और जब देख लें कि छत्ता जो है वो भर चुका है, उसको टाइम पे उतार भी लें, वरना शहद की मक्खियाँ बड़ी जालिम होती हैं। ये वही अपना सारा शहद जो बनाती हैं बड़ी मेहनत से पी के भाग जाती हैं।
0: सवाल से मैं बात करूँगा, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया। छोटे होते हम एक घर में रहते थे और वहाँ पर छत्ता लगा भी था शहद की मक्खियों का, और मैं बहुत लकी हूँ इस हवाले से। मैंने ताज़ा जो शहद होता है ना,
1: बिल्कुल खालिस आप 100% ऑर्गेनिक
0: होता है, इतना मीठा, इतना मजे का हम जमा के खाते थे, और मुझे भी मक्खियों ने काटा हुआ है बहुत ज़्यादा। सो इस पे हम बात करते हैं बाद में, लेकिन आप शहद की बात करिए शहद मक्खियों के हवाले से। लेकिन यहाँ पर एक रिसर्च ये कहती है, बल्कि ये फैक्ट है कि शहद की मक्खियाँ सिर्फ शहद बनाने के हवाले से अहमियत की हामिल नहीं है, बल्कि जो 75% यानी कि 75% जो पोलिनेशन होती है पौधों में, मतलब ये शहद की मक्खियाँ ही सर अंजाम देती हैं।
1: बिल्कुल, उन्हें नेक्टर सक करना होता है और ये पोलिनेशन का जो एक अमल है ये इसी तरह से ही पॉसिबल होता है।
0: और तमाम जो सादा लोग सुनने वाले मेरे जैसे तमाम सामीन को बताते चले कि अगर पोलिनेशन नहीं होगी तो ये खेत खिलियान, फसलें, नए पौधे, नए जंगलात
1: नहीं होंगे की। बिल्कुल हाँ। सही। सो शहद की मक्खी जो है ये खास तौर पे आप कह लें कि अल्लाह ताला ने इसकी एक ड्यूटी लगाई हुई है, हमें जो तरह तरह के फूल, पौधे, फल जो नज़र आते हैं ये इन्हीं की वजह से है।
0: जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और इस पे जहाँ पे हम इसकी तारीफ की बात करते हैं, इसकी अहमियत की बात करते हैं, वहाँ पे हमने अपने किरदार के हवाले से भी देखना है कि हमने जंगलात का कटाव जो है जितना हो सकता है हमने रोकना है, ये नहीं होने देना। जो इनकी कुदरती ऐसी आमाजगाहें हैं उनका हमने ख्याल रखना है, और किसी भी तरह से कूड़ा जो कहते हैं वो जलाते हैं ना, उसकी वजह से भी जो है ये मक्खियाँ वहाँ पर नहीं आती, इलाके में नहीं आती। सो हमने इन तमाम जानदारों का, तमाम परिंदों का, तमाम हशरात का हमने ख्याल रखना है, अपनी जिम्मेदारी का सबूत देना है। इसके अलावा आज एक और दिन जो है वो मनाया जा रहा है, आप भी मैनेजमेंट की बंदी हैं, एचआर कभी बनी है, कभी इत्तेफाक हुआ है आपको?
1: एचआर डिपार्टमेंट में प्रॉपरली तो मुझे जॉब करने का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है।
0: कभी सामना हुआ आपका किसी एचआर?
1: अच्छा, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने ना इस वाले जो एक अजाब से मुझे काफी हद तक महफूज रखा हुआ है।
0: अच्छा, आपको कैसे पता है अजाब है?
1: क्योंकि देखें बहुत सारे नौजवान हैं जो यहाँ पर आते हैं, हमसे बात करते हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि बाहर सब कुछ क्या हो रहा है। ऑल्दो के जो रेडियो पाकिस्तान का इंतखाब करते हैं, चाहे वो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हों या वैसे अपने शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए वो यहाँ आना चाहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो यही तारीफ़ करते हैं कि मैडम यहाँ का सारा स्टाफ जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है। बजाय जब हम जाते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में और वहाँ जाकर जब हम बात करते हैं, मैडम वो लोग तो चक्कर ही बहुत लगवाते हैं।
0: ये हमारे
1: ये नौजवान नस्ल के, मैं आपको वर्ड टू वर्ड जो उनकी मतलब बातें होती हैं मैं आपको वो बता रही हूँ।
0: मैं खुद इस बात का शायद हूँ, मैंने बहुत कुछ फेस किया, मैंने बकायदा धक्के खाए हुए हैं। मतलब आपसे तमीज से बात नहीं करते हैं, कि वो ऐसे समझते हैं कि पता नहीं कहाँ से कोई मुंह उठा के आ गया।
1: बिल्कुल सही।
0: सो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इस पे आपने ये बात की है इंटर्नशिप के हवाले से, इस पे थोड़ा सा अगर आप गाइड कर सकती हैं आजकल जो कैंपेन चल रही है।
1: बिल्कुल, आप ये बल्कि एक अच्छा सिलसिला बन गया कि हम अपने इंटर्नशिप तमाम सुनने वालों को बताते चलें कि 16 जून 2026 से FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर एक इंटर्नशिप का प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला है। जी, 16 जून से यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम है ये, और ख़ास तौर पे इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है उनके वीएन को सामने रखते हुए, यूथ एम्पावरमेंट के उनके इनिशिएटिव्स को सामने रखते हुए इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा।
0: अच्छा,
1: है
0: ये उसी का हिस्सा है?
1: ये उसी का ही हिस्सा है। और इसमें जो एक ख़ास बात है वो ये होगी कि हम इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं और उसे इम्प्रूव करवाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल जो है اسے امپروو کروائیں گے. اوور آل وہ تمام لوگ جنہیں باتیں کرنا اچھا لگتا ہے لیکن ہچکچاتے ہیں, گھبراتے ہیں, اپنی بات کنوے نہیں کر پاتے, باڈی لینگویج جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے پاتی.

0: सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 माह की हमारी इंटर्नशिप होगी और जिसमें 16 सेशंस होंगे पर वीक, 2 सेशंस रखे जाएंगे और हम अपने सुनने वालों के बताते चलें कि हमारी भरपूर कोशिश होगी कि एट द एंड ऑफ दोज 2 मंथ्स हमारे जितने भी इंटर्नीज होंगे यकीनन वो अपनी तबीयत में, अपनी नेचर में ज़रूर बज़रूर फ़र्क महसूस करेंगे और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव्ड और बेटर फील करेंगे।
1: बिल्कुल ऐसा ही है।
0: सो जितने लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बता दूँ कि अगर आप समझते हैं कि आपकी आवाज़ अच्छी है और आपके पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे किसी भी वजह मतलब किसी भी वजह से,
1: हेजिटेशन है, आपकी मिजाज, आपकी तबीयत, आपकी पर्सनालिटी टाइप इंट्रोवर्ट हो सकती है, हो सकती
0: तो है। आप कोशिश कीजिए कि आप इस इंटर्नशिप का हिस्सा बने और एक चीज़ का ख्याल करें कि इसमें जो एक अहम नुक्ता है कि आपकी उम्र जो है वो 28 साल या 28 से कम होनी चाहिए।
1: अच्छा,
0: एज लिमिट इसमें है।
1: सही।
0: आप चाहे तालिबे इल्म है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी तालीमी इदारे से आपका ताल्लुक है या आप कुछ भी नहीं करते, आप किसी और प्रोफेशनल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो आप सबको हम वेलकम कहते हैं। यहाँ पर आप आइए, हमारे सोशल मीडिया पेजेस को विजिट करें, वहाँ पे आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। मज़ीद आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमारे नंबर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और इसके अलावा आप विजिट भी कर सकते हैं FM 101 लाहौर को। तो जनाब आपको गाइड करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं।
1: बिल्कुल जनाब, हम यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ये तमाम सुनने वालों को बता दें, मैं कहता हूँ कि मतलब आजकल के जो नौजवान हैं, आजकल के तमाम सुनने वाले बहुत लकी हैं। मतलब जब मैंने रेडियो स्टार्ट करना चाहा था तब ऐसा कोई मौका आता ही नहीं था। मतलब हम स्टूडियोज़ में जाते थे, चैनल्स में जाते थे और मुझे याद पड़ता है मैं इसी स्टेशन के बाहर भी 6 घंटे बैठा हूँ अब। सो मौके आते नहीं हैं, अब लोगों को हायर किया जाता नहीं है, उनको ऑडिशन के लिए, तैयारी के लिए मौका ही नहीं दिया जाता। अगर दिया जाता है उसके लिए पैसे मांगे जाते हैं। सो यहाँ की फ़ीस कितनी है?
0: ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है।
1: अरे वाह,
0: तमाम सुनने वालों को मैं एक दफ़ा फिर ये बात बता दूँ कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपने एक आके जो है आप कह लें कि काम करना है और वो सिर्फ ये कि आपने आ जाना है।
1: अरे क्या
0: बस
1: बात,
0: आपने सिर्फ आके इन सेशंस को ज्वाइन करना है और नॉट इवन अ सिंगल पैनी यू गाइज हैव टू स्पेंड ओवर हियर।
1: हाँ, मतलब मैंने इस फील्ड में, इस मामले में अपनी जेब से पैसे दिए हैं, बहुत पैसे दिए हैं मैंने।
0: बस मुस्तफ़ा, मैं हैरान हुआ हूँ कि उस वक्त आपको इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं सका, कोई ऐसा
1: नहीं। अभी भी हम आपके स्टूडेंट हैं और हम वैसे भी आते रहेंगे, ठीक है, हम भी ज्वाइन करें
0: जरूर जरूर।
1: चलिए, बहुत शुक्रिया। नंबर आप बता दें अगर आपको याद है तो।
0: नंबर जो हमारा यहाँ पे,
1: अच्छा ठीक है, 04-2111-0101। इसके अलावा
0: इस नंबर पर भी रابطہ करके हमसे जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप एड्रेस कर सकते हैं और आपको उसका सेटिस्फैक्ट्री किस्म का जवाब दिया जाएगा।
1: अरे जनाब बिल्कुल, ये पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर आपके पास मौका मौजूद है। सो आप हम तक अपनी रसाई को यकीनी बना सकते हैं और इस हवाले से जो भी बुनियादी मालूम हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको लाजमन मिलेगी। सो ये अच्छा हो गया कि आज हमने बात कर ली है। कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ एक और कूलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहां से?
2: हेलो हेलो
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
1: सर, तुसी बोल पाए हो, मैं कॉल कटन लगा सर जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कौन बात कर रहे हैं, कहां से?
3: मुझे रमजान अनवर गुजर कहते हैं, नाम तो सुना होगा। मामूल बन गया मेरा रातों को जागना।
1: अच्छा,
3: मामूल बन गया मेरा रातों को जागना, नींदे मेरे वजूद की एक शख्स ले गया। अच्छा, बहुत सी दुआओं के साथ नंबर वन फैमिली रेडियो स्टेशन फॉर द नेशन रेडियो पाकिस्तान हिट हार्ट कौमी फैमिली दोस्त रेडियो स्टेशन के सभी दोस्तों को रमजान गुजर आदाब तस्लीमात। गुड गुड गुड मॉर्निंग लाहौर, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान कहता है फन और इंफॉर्मेशन के सब रंग मोहम्मद मुस्तफा साहब और हमारी मैम खतीजा मराज साहबा के संग
1: प्रोड्यूसर बैठे ने ते मैं जरा मौके ते चौका मार दवा।
3: और मैं आपको बताता हूँ कि मैं 25 साल से जेल हो रहा हूँ, रोज देता हूँ एडमिशन और 25 साल से जेल हो रहा हूँ, बाकी मैं जेल ही रहूंगा क्योंकि मैंने मैट्रिक 3 साल में की है और मैंने बीए नहीं किया।
1: आप
3: कहते हैं कि रात को कब सोते हैं, तो ये करना चाहूंगा इसके बारे में
4: मेरी छुट्टी, मेरी छुट्टी तो छुट्टों में होती है, एक हफ्ता सुबह, एक हफ्ता दोपहर, एक हफ्ता शाम, कभी 12, कभी 16, कभी कभी 8 घंटे। मेरी तो जिंदगी की रूटीन नहीं है, 10 साल बाकी जरूरत रह गई है, अल्लाह अल्लाह करके उसे भी पूरी कर लूंगा, और फिर बाद में कोई पूछूंगा कि टीम किसे कहते हैं और डिसिप्लिन किसे कहते हैं। फिलहाल तो, फिलहाल तो बच्चों की रोजी रोटी में स्कूल हो और पूरी तवज्जो जब रात जब भी ओवर टाइम हो, मल्टीनेशनल कंपनी में अल्हम्दुलिल्लाह काम करता हूँ, शुक्र है अल्लाह का, मेरे बच्चे पढ़ते हैं और मेरे बच्चे अच्छा खाते हैं और इज्जत की रोटी और हलाल की रोटी मैं कमा के लाता हूँ और बहुत बहुत बहुत अच्छा तरीके से गुजर बसर होती है। और मैडम खतीजा मुराद साहब, आपके मिजाज कैसे हैं? मिजाज
0: अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
4: आपका शो एक लगता था मेरा ख्याल जुमरात को
1: सुन ले सुन ले आप ये जो है ना वो कहते हैं ना कि दाना दाना डाल के भाग जाना आपने वो काम किया तीनों
0: नहीं नहीं मुस्तफ़ा ऐसा नहीं है। मैं अपने तमाम सुनने वालों को बता दूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपना वो शो वापस लेकर आएंगे और आप सबकी समातों से एक दफा फिर हमारी आवाजें टकराएंगी।
4: हम इंतजार करेंगे और यकीन करें आपका लेवल है, आपके इखलाक का लेवल है और आपका आपकी तलीम का लेवल है, आपकी तरबियत का लेवल है, फन वन का लेवल है और ये हमारी एकेडमी है और जब तक हम जिंदा हैं इस एकेडमी के से सीखते रहेंगे और अपने बच्चों को भी बताएंगे कि पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान के रवायात से मोहब्बत, पाकिस्तान की जमीन से मोहब्बत करनी है, पाकिस्तान से के दारों से मोहब्बत करनी है और पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान, अल्लाह पाक आपका एक बार बुलंद करे, पाकिस्तान
0: जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
1: बहुत शुक्रिया सर। ओके 04-2111-0011 रबते का नंबर, वेल आपकी कॉल जो है सुबह की स्पेयर में इंटरटेन की जा रही है, सो कोशिश हम करेंगे कि मुख्तसिर बात करेंगे, अच्छी अच्छी बात करेंगे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से?
5: वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपके?
1: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कौन बात कर रही है, कैसी है?
5: आप पहचानी में कौन बात कर रही
1: हूँ? आप हनिया आमिर बात कर रही हैं?
5: अल्लाह नहीं, मैं लाहौर से रिमशा बात कर रही
1: हूँ। रिमशा बात कर रही हैं, रिमशा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं?
5: जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और जो आपके साथ आती हैं उनको भी मेरा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी। रिमशा क्या कहना चाहेंगे?
5: आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है।
0: थैंक यू रिमशा, बहुत शुक्रिया।
1: ये खुद भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, जितनी अच्छी ये दिखती हैं उतनी अच्छी इंसान भी हैं, ये मैं इनके सामने तारीफ नहीं कर रही, ये वाकई ऐसी हैं, आपको महसूस होगा, आपको वाइब आएंगी यकीनन।
0: थैंक यू मुस्तफा, बहुत शुक्रिया, आप खुद बहुत अच्छे हैं।
1: जी रिमशा क्या कहना चाहेंगी?
5: भाई मैं तो टॉपिक पर ये कहना चाहूंगी, आप नींद के बारे में पूछ रहे हैं, जल्दी सो जाते हैं?
0: जी जी यही सवाल है जी।
1: नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि आजकल के जो नौजवान हैं वो पूरी नींद नहीं ले पा रहे, इनका जो सर्कैडियन रिदम है और स्पेशली जो स्लीप साइकिल है बहुत डिस्टर्ब है, सो इसकी क्या वजह हो सकती है, आपकी क्या वजह है कि आप क्यों नहीं सो पाती?
5: मैं भी नहीं सो पाती और जल्दी मुझे है ना नींद, इंसान रात अल्लाह ताला ने बनाई हुई है सोने के लिए, लेकिन सारी रात नींद भी नहीं आती है, क्योंकि फिर आपको पता है ऐसी दौर ऐसा हो चुका है कि इसमें टेंशन है, डिप्रेशन हर वक्त बंदा रहता है और वो सोचता रहता है कि अब क्या होगा क्या होगा, इसकी वजह से भी सो नहीं पाता। और फिर ऐसा भी होता है अक्सर गुजार के किसी की यादों में भी सोया नहीं जाता, और जब किसी का प्यारा बिछड़ जाता है तो उनकी उससे भी याद कर करके बंदा फिर जागता रहता है, फिर इसका भी होता है,
0: एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आती। आपको मजे की बात बताऊं कि रातों को देर तक जागने से ही डिप्रेशन होता है, अगर हम अपने इसी हैबिट को ओवरकम कर लें, अगर हम रात को जल्दी सोना शुरू कर दें, तो यकीन करें कि आपके दिमाग में, आपके जिस्म में अल्लाह ताला ने इस तरह की केमिकल कंपोजिशन रखी होती है, आपका कॉर्टिसोल लेवल यानी जिसे हम आपका एंजाइटी का कहते हैं हार्मोन कहते हैं, वो बहुत तेजी स्ट्रेस हार्मोन वो बहुत तेजी से डाउन हो जाता है।
1: जी हाँ।
0: और जब हम रातों को देर तक जागते हैं तो ऑब्वियसली जब देर तक किसी भी मशीन से ज्यादा काम लिया जाए ना तो वो जल्दी खराब हो जाती है, तो ह्यूमन बॉडी जो है इट एक्ट्स जस्ट लाइक अ मशीन। तो इस वजह से हमारा जो इवन मैं मोबाइल फोन की आपको मिसाल दूंगी, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतनी जल्दी उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, फिर हम उसे चार्जिंग पे कनेक्ट करते हैं, हमारी मशीन्स को जैसे चार्जिंग की जरूरत होती है, सेम इज द केस विद ह्यूमन बॉडी। तो हमारे जिस्म को भी नींद जो है वो हमारा चार्जिंग वाला एक सिस्टम है और हमारा पूरा सिस्टम इसे रीसेट हो जाता है। कोशिश करें अगर आप वाकई ही डिप्रेशन को ओवरकम करना चाहते हैं तो अपनी स्लीप साइकिल को बेटर कर लें। तो जहाँ तक है, दूसरी बात आपने कही कि जी बहुत से प्यारे जो है वो हमसे दूर चले जाते हैं, वो जो एक खला है नो डाउट कि वो नहीं भर सकता, लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने ही हमें कहा है कि तो रब की रजा है, जो दुनिया में आया उसने जाना भी है, जो जहाँ अल्लाह ताला ने मिलाप लिखा है वहाँ जुदाई भी लिखी हुई है, तो ये चीज़ें भी इंसान को अल्लाह ताला ने ये टेंडेंसी दी हुई है कि वो ओवरकम कर सकता है। जाने वाला कभी लौट कर आ नहीं सकता, लेकिन जो सब्र है अल्लाह ताला से वो मांगा जाए तो अल्लाह पाक अता करते हैं।
5: बहुत अच्छी की है, लेकिन ना सोते हुए ना इंसान के, अगर इंसान अपने सब ज़हन से सब कुछ निकाल भी देता है फिर भी जो सोचे होती है ना उसे सोने बिल्कुल भी नहीं देती है।
1: रिमशा कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वो कहती है ना कि वक्त की सबसे अच्छी बात ये है कि ये गुजर जाता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा, ये वक्त की अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, लेकिन हमने अच्छा अखज करना है, अच्छा अच्छा सोचना, ठीक है। रेडियो नहीं सोने देता, और चले ये तो है वैसे, लेकिन रेडियो की अच्छी बात यह है कि रेडियो आपको आपके ऐसे ऐसे लम्हात में आपका साथ देता है ना, जैसा आप पे वक्त,
0: ये आपकी तन्हाई का साथी है,
1: तन्हाई का साथी है
5: बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम मैं सोई होती हूँ, देखिए मुस्तफा के, मुस्तफा भैया के लिए शौक के लिए मैं उठना पड़ता है मुझे।
0: क्या बात है,
1: अरे क्या बात है, सही सही। चले रिमशा बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू
5: भाई, आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू रिमशा फॉर कॉलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।
1: ओके जनाब, 10:46 हुए चाहते हैं, और ट्रैक बल्कि हम बैकग्राउंड पे लगा रहने देते हैं, कॉलर से बात कर लेते हैं। सही है जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
6: जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: जी सर, अल्लाह का शुक्र, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? नवी साहब आ गए, नवी साहब क्या कहना चाहेंगे, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, की कहना चाहोगे?
6: सर जी मैं कहना चाहूंगा कि पहले साड़ी मैडम दोनों हाथों के नाल पहले फ्लोर पर आए काम
0: करते। थैंक यू सो मच नवीद साहब, शुक्रिया
6: जी। वो वही बात हो रही थी ना कि आप जुमेरात वाले दिन शो करते थे तो हम भी शो
1: आज आप पकड़ी गई है, सही पकड़ी गई है।
0: बड़े शिकवे मिले आज मुझे नहीं नवीद साहब, इंशाल्लाह तमाम शिकवे शिकायत जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे और बहुत जल्द ये शो वापस आएगा।
6: जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो मैं समझता हूँ आप जो कह रही हैं ना कि हफ्ते में एक दिन हमें आना होता
0: है, जी
6: थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, कोई बात नहीं इंशाल्लाह, वो भी वक्त दोबारा आएगा इंशाल्लाह।
0: जी बिल्कुल इंशाल्लाह
1: आएगा। चलें सर बहुत शुक्रिया, और कुछ कहना चाहेंगे?
6: सर मैं यही कहना चाहूँगा कि देखें सोने की बात हो रही है तो सोना वक्त पे चाहिए, लेकिन ये सही बात है, लेकिन ये सबसे पहले देखे ना तो हम तो रेडियो सुनने वाले लोग हैं।
1: जी हाँ,
6: मैं तो रात को भी रिया भाई का शो लगा हुआ था।
1: अच्छा अच्छा, सही,
6: वो सुन के सोना पड़ता है, वो छोड़ भी नहीं सकते।
1: क्या बात है, क्या बात है सही है।
6: आज रात को सर भाई का शो लग गया 10 से 12, फिर रिया
0: जी बिल्कुल माशाल्लाह, पूरा शेड्यूल याद है।
1: क्या बात है, क्या बात है, कितने कितने हमारे लॉयल, जो कितने डेडिकेटेड लिसनर्स हैं।
0: बिल्कुल सही ना।
1: चलिए सर बहुत शुक्रिया,
6: 2 से 4 बजे तक फिर वो
0: बिल्कुल, फिर वसीम साहब का शो होगा 2 से 4।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
6: जब वो सुबह सुबह उनकी गजलें सुननी पड़ती हैं वो मजा आता है।
1: अच्छा सुननी पड़ती है, ऐसा क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल सही है सही है सही है, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है
6: सर, अल्लाह
1: हाफिज़।

दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ्फुज़ के अज़्म का इआदा किया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मौसर काविशों की बदौलत मादनी शोबे की बहाली और सरमायाकारी को फरोग मिला है। पाकिस्तान ने खिते में अमन इस्तेहकाम के हुसूल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया है। सिलेट में दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

तमाम धड़कते दिलों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे वजीहा आसिम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, और अगर नहीं भी अच्छा गुजर रहा तो मैं हाजिर हूं विद अ सुपर डुपर शो लेडीज लाउंज। आपका और मेरा साथ रहने वाला है 11 बजे से 1 बजे तक। प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपकी कॉल्स, कमेंट्स, मैसेजेस, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे।

सबसे पहले तो आज हमारे सुनने वाले जो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से एफएम 101 की पूरी टीम की तरफ से मेनी मेनी बेस्ट विशेस ऑफ द डे। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए ढेरों ढेरों दुआएं, क्योंकि जहां है तो जहां है।

आज है 20th May 2026। सो फाइनली वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंड ऑफ मे और अब काफ़ी हद तक जो है ना एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट ओवर। काफ़ी हद तक जो है ना जो एग्ज़ाम्स स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जहाँ भी चल रहे थे आपके सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम्स या फाइनल एग्ज़ाम्स जो हैं काफ़ी हद तक जो है ना ख़त्म हो चुके हैं या कुछ फ्राइडे तक ख़त्म हो जाएंगे या सैटरडे तक ख़त्म हो जाएंगे। तो वो जो सेशन था ना थोड़ा सा पढ़ाई का और वो जो थोड़ा जो मई का महीना होता है ना बहुत आपको अपने आप को मैनेज्ड रखना पड़ता है और डिसिप्लिन्ड रहना पड़ता है। पिछले शो में मैंने यही बात की थी कि अपने आप को डिसिप्लिन रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अब फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म होने को हैं और ईद उल अज़हा आने को है तो उसकी भी साथ साथ तैयारी है और साथ ही जहां पे छुट्टियां शुरू हो रही हैं सबके दिलो दिमाग में जो है ना समर वेकेशंस की तैयारी भी चल रही होगी क्योंकि इतनी मेहनत के बाद और इतनी गर्मी में ब्रेक तो बनती है। क्योंकि जब आप इतनी मेहनत करते हैं ना उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं तो जब आप वापस आते हैं ना तो आप एक टोटली यू आर अ न्यू पर्सन। तो आप दोबारा से ना आप एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, दोबारा से आपके अंदर ना वो जो कहते हैं ना उठ खड़ा होने की मेहनत करने की लगन जो है ना वो वापस आ जाती है। लेकिन आप उसी माहौल में अगर रहते हैं और वही आपकी रूटीन रहती है तो फिर वो एक मोनोटोनस पन भी हो जाता है और आपको कहते हैं ना एक सेम ही रूटीन में रह के ना दोबारा से एक नया स्टार्ट लेने का ना वो एक पॉइंट नहीं मिल रहा होता। तो इसलिए गर्मी की छुट्टियों में आपने कहाँ कहाँ जाने की प्लानिंग की है ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। कुछ ट्रैवल लिंक ट्रिप्स मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी सफ़र करते वक्त कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत से पैसे बचा सकते हैं जो आपको ज़रूर ज़रूर अपनी अपने ना साथ चीज़ें रखनी चाहिए इन एवरी केस। सो आई विल बी शेयरिंग दोज़ विद यू। और बात होगी आज आपकी किचन में क्या बन रहा है। साथ ही आई विल बी शेयरिंग विद यू बारबेक्यू रेसिपीज स्पेशली ऑफ मटन चॉप्स।

और साथ ही आपसे बात करना चाहूंगी फिल्म जो मूवी है माइकल के बारे में, जो कि माइकल जैक्सन की बायोपिक है. माइकल जैक्सन इज किंग ऑफ पॉप. माइकल जैक्सन का जो गाना है बिली जीन्स इज रॉकिंग एवरीवेयर. इट्स नंबर वन ऑन स्पॉटिफाई, नंबर वन ऑन ग्लोबल चार्ट्स. और देखिए, वो इंसान जो कि आज से 16-17 साल पहले इस दुनिया से जा चुका है, ही स्टिल रॉकिंग द चार्ट्स. ये बहुत बड़ी बात है, अपनी दुनिया से इतने साल हो गए उन्हें गुजरे हुए, फिर भी वो अपनी जगह बनाए हुए हैं. माइकल जैक्सन की जो मूवी है बायोपिक, उससे हमें बहुत कुछ जो है ना सीखने को मिलेगा. जो लोग जो आजकल के जो एरा के बच्चे हैं ना, जो नहीं जानते, उन्हें बहुत कुछ पता चलेगा. और मैं भी आज बात करूंगी आपसे कि कैसे अपने ऊपर जो है ना आपको ट्रस्ट होना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए. यहाँ पे मैं प्ले करने जा रही हूँ जबरदस्त ट्रैक माइकल जैक्सन बिली जीन्स दैट रॉकिंग द चार्ट्स वर्ल्ड वाइड.

वेलकम बैक. यहाँ पे मैं प्ले करने जा रही हूँ बिली जीन्स बाय माइकल जैक्सन बिकॉज ही इज रॉकिंग द चार्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. Michael Jackson is the only singer with top 10 hits across 6 decades. So here is Billie Jean.

Welcome back. This is your dose, your host, RJ Wajihah Asim. This song is on global Spotify for being streamed, you know, with 6.028 million streams. और ये गाना जो है ये 43 years पहले रिलीज हुआ था और अपने आप में ऐसी मिसाल है. कहते हैं ना, कुछ गीत जो होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं. और देखें, जो टैलेंट होता है ना इंसान में, देखें जब माइकल जैक्सन का जो ज़माना था ना, उसमें कुछ मतलब ये जितनी भी ऐप्स हम यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ें नहीं थी, और फिर भी उस इंसान ने अपनी जगह बनाई रखी. उसने इतनी पॉपुलैरिटी, इतना फेम हासिल किया विदाउट एनी सोशल मीडिया. बहुत बहुत बड़ी बात है. और ये वो ज़माना था कि जब जो है ब्लैक सिंगर्स को आगे आने नहीं दिया जाता था. ही वॉज द वेरी फर्स्ट वन जो कि आगे आया और अपनी जो है जैसे बहुत से लोगों के लिए रास्ते खोले.

जी, और साथ ही जहाँ पे ना एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे हैं, ईद उल अज़हा आ रही है, उसकी भी तैयारी है, और साथ ही ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो गर्मी में ना आपने अपने आप को डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना, बस हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें और जो कुदरती मशरूबात हैं वो इस्तेमाल करें। डब्बे वाले जूसेस, कैन जूसेस आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि आजकल जितनी नई नई बीमारियां हमें देखने में आ रही है ना, वो सिर्फ इन कैंड फूड और जितना भी हम लोग जंक फूड खाते हैं इसकी वजह से आ रही है। देखिए आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ये सब कुछ खाने का रुझान इतना ज़्यादा हो गया है, और इनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैदा, ठीक है, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए काफ़ी लोगों ने अब जो है ना राइस फ्लावर भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। वो चावलों को बहुत अच्छे तरीके से, फ़ाइन तरीके से उसको पीसा जाता है ताकि वो मैदे की जगह इस्तेमाल हो सके। अच्छा, और ज़िंदगी में ऐसे होता है ना, बहुत से लोग होते हैं वो ना सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनको अपने अलावा ना कोई नज़र नहीं आता, उनका मतलब, उनका फ़ायदा, क्या उनको अच्छा लग रहा है, क्या उनको बुरा लग रहा है, और वो ये भी चाहते हैं कि आप भी उसी हिसाब से ना मूव ऑन करते रहें, उसी हिसाब से चलते रहें। द मोमेंट जो है ना आप अपनी कोई चॉइस या अपना तजर्बा सामने रखते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करते हैं तो उनको वो बुरा लगता है। जब तक आप उनके हिसाब से चल रहे हैं, सब कुछ उनके मुताबिक हो रहा है तो ठीक है। जैसे ही आपने अपना नज़रिया उनके सामने रखा ना, तो वो उनको बुरा लगना शुरू हो जाता है। और मैं स्पेशली ख़वातीन की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें ये बचपन से सिखाया जाता है कि आपने जो है ना उनके हिसाब से चलना है, करना है। और यहाँ पे जो है बहुत सी जो लड़कियाँ हैं, ख़वातीन हैं, वो सिर्फ़ अपने ससुराल से प्रेशर, या ख़वातीन की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें ये बचपन से सिखाया जाता है कि आपने जो है ना उनके हिसाब से चलना है, करना है। और यहाँ पे जो है बहुत सी जो

पेरेंट्स एज वेल, उन्होंने शुरू से ही आपकी आपको आदत डाली होती है कि आपने बर्दाश्त करना है. जब आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है फिर आप कहते हैं ससुराल वाले ऐसे हैं. तो शुरू से ही आप उनको ऐसी आदत क्यों डालते हैं कि उनको आदत पड़ जाती है कि उन्होंने हर चीज़ में आपको दबाना है. आपका इस बारे में क्या ख्याल है ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ देखी हैं जो रियल लाइफ स्टोरीज़ मैंने देखी हैं कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके ससुराल वाले ही आपको कुछ कह रहे हैं. अगर लड़की जाके अपने माँ बाप को बताती है तो माँ बाप भी बहुत सपोर्टिंग नहीं होते. वो कहते हैं नहीं नहीं वही तुम्हारा घर है, वहीं तुमने रहना है और तुमने कोई बात नहीं, अच्छा अपने खावन से बात कर लो, उससे बात कर लो, या वो यही कहते हैं वक्त के साथ साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा. वक्त के साथ साथ कुछ बेहतर नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि आपको उसकी आदत पड़ जाती है. जिसमें आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी अबाउट फ्रॉग, ठीक है. अगर आप उसे एकदम से गर्म पानी में डालेंगे ना तो फौरन से वो ना छलांग मार के बाहर आ जाएगा कि बहुत गर्म है मैं सर्वाइव नहीं कर सकता. लेकिन आप उसे अगर ठंडे पानी में डालें और वो जो देज की या वो जो बर्तन है आप चूल्हे पर रख दें और आहिस्ता आहिस्ता उसकी हीट बढ़ाएं आप, तो कहेगा ये तो थोड़ा सा गर्म है कोई बात नहीं मैं बर्दाश्त कर लूँगा, ये तो बिल्कुल हल्का सा गर्म है कोई बात नहीं कोई बात नहीं. आहिस्ता आहिस्ता वो इतना गर्म हो जाएगा कि वो मर जाएगा, ठीक है ना. तो यही होता है कि आप बर्दाश्त करते रहते हैं आप एडजस्ट करते रहते हैं और इन द एंड आप गिव अप कर देते हैं, ठीक है ना. तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जो है ना सिखाती हैं कि हमने किस तरह से डील करना है. क्योंकि ख़वातीन को लड़कियों को शुरू से सिखाया जाता है आपने दूसरों के हिसाब से चलना है, दूसरों के मुताबिक चलना है. और यही बात मैंने पहले भी की थी, इसीलिए लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना पसंद नहीं किया जाता कि वो जो है ना कि अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ना बना लें या अपना उनका एक जो कहते हैं ना नज़रिया ना बन जाए. ज़्यादा लड़की पढ़ लिख जाए तो कहते हैं ना ये तो हाथ से निकल गई है. आपका इस बारे में क्या ख्याल है ज़रूर हमारे साथ शेयर करें. और बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि लड़कियां जाके अपने पेरेंट्स को बताती हैं कि जी ये हुआ या ये उन्होंने कहा, कि तो कहते कोई बात नहीं कोई बस ससा कह दिया उन्हें या ससुर ऐसे होते हैं कोई बात नहीं ससुराल में तो करना ही पड़ता है ससुराल में तो कर, ठीक है एक लिमिट होती है. लेकिन बात यह है कि कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपको ये सिखाया जाता है कि यू आर द वन हु हैज़ टू एडजस्ट ऑलवेज नो मैटर व्हाट.

जी, और आज के प्रोग्राम की जो पोस्ट है ना, हमारे ऑफिशियल पेज FM 101 के पेज पे अपलोड कर दी गई है. डू लाइक, कमेंट एंड शेयर. यहाँ अली जफर की आवाज़ में एक ज़बरदस्त ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ. कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

Welcome back. This is your dost, your host, RJ Wajih Asif. जो ज़िंदगी में सबसे पहले अगर आप चाहते हैं ना कि लोग आपकी इज्जत करें, आपका कोई नाम हो, तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करना आनी चाहिए। बहुत वह है कि आपके अंदर ही आप ये सोच रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, या ये नहीं हो पाएगा। दिस इज़ समथिंग दैट वी आर ब्रॉट अप इन आवर एनवायरनमेंट एज वेल, कि हमने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनी होती हैं, या हमारे एक नेचुरली माशरे में ये चीज़ है कि आपको बहुत सी चीज़ों के लिए डीमोटिवेट किया जाता है। अब अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है, कि बच्चों को भी हर छोटी चीज़ पे अप्रिशिएट किया जाता है, क्योंकि आजकल स्कूल्स में भी ये सिखाया जाता है कि बच्चों को जो है स्पेशली जब तक वो 7-8 साल के होते हैं, उनका ब्रेन जो है बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा होता है। द मेजर ब्रेन डेवलपमेंट टेक प्लेस व्हेन यू आर टिल 8 ईयर्स ऑफ योर लाइफ। तो इसलिए बच्चों को ना तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। एक वो छोटा सा भी काम करें तो आपने देखा है कि सब लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, वाओ आपने कितना अच्छा किया। लेकिन ये मोटिवेशन की ज़रूरत आपको सारी ज़िंदगी होती है। और बहुत जो बड़े आर्टिस्ट हैं, लेजेंड्स हैं, सिंगर्स हैं, या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या जो भी लोग जो आपको नज़र आएंगे जो बहुत सक्सेसफुल हैं ज़िंदगी में, उनमें ये चीज़ आपको बहुत कॉमन नज़र आएगी कि पहले उन्होंने अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू किया। अच्छा, अगर आप ये मूवी भी देखें ना, बायोपिक देखें, अगर आप माइकल जैक्सन की वो जो है माइकल, तो उसमें भी आप देखेंगे वो हर गाने से पहले ना बोलता है, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, आई कैन डू दैट। आपने भी ये एक नेचुरल मैनिफेस्टेशन है। देखिए, उस ज़माने में उन लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, उन लोगों के पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जैसे अब हमारे लिए इन्फॉर्मेशन इज़ जस्ट अ क्लिक अवे। हम कुछ भी बोलेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा, हम कुछ भी एक वर्ड टाइप करेंगे उसकी पूरी हिस्ट्री जो है हमारे सामने आ जाएगी। बट दोज वर द पीपल हु रोज अप ऑन देयर ओन, उन्हें खुद से स्ट्रगल की, खुद से रिसर्च की, और ख़ुद से समझा कि उनके वालिदैन भी बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, जैसे हमारे वालिदैन भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस ज़माने में इतना ट्रेंड ही नहीं था। तो आपने भी एक छोटा सा अमल दोहराना है रोज़ अपने साथ, ठीक है? आपने अपने आप को सिर्फ इतना कहना है कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू दैट। और जो चीज़ आप चाहते हैं ना कि आपको मिल जाए, तो आपने वो कहना है वो मुझे मिल गई है, ठीक है ना? जब आप उस चीज़ पे यकीन करना शुरू करते हैं ना, तो वाकई ऐसा हो जाता है। इसे कहते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। डू ट्राई एंड लेट मी नो।

ज़िंदगी में जहाँ आप बहुत सी चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं, ये भी आपने ज़रूर ट्राई करना है, एक दफ़ा अपने ऊपर एतबार तो करके देखो। देखना कैसी सारी ज़िंदगी जो है ना, और सारी दुनिया जो है ना, आपके साथ चलना शुरू हो जाएगी।

Welcome back. This is your host, RJ Wajih Hasan. जी मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, जो पोस्ट है अभी अपलोड हो जाएगी. थोड़ा सा जो है ना इंटरनेट हमारा इट्स इन प्रोग्रेस वर्किंग टू अपलोड द पोस्ट. जी तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर हमारे साथ शेयर करें. यू कैन ऑल्सो मैसेज अस एट 4471. पर यकीन रखना ना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने पर यकीन नहीं रखते ना तो बस यही देख के दुनिया खुश हो जाती है, ठीक है ना. उन्हें खुश करने के लिए बस इतना ही बहुत होता है. और यहाँ तक कि ना अगर आपको कुछ लड़कियाँ अगर थोड़ा सा तैयार श्यार होकर कुछ खाने पीने चली जाएँ या कुछ शॉपिंग चली जाएँ कुछ भी, तो मर्द क्या घर के जो ख़वातीन होती हैं ना वो भी देख के अपसेट हो रही होती हैं कि ये क्यों मिल के खुश होके कहीं जा रही हैं या खुश होके कुछ खाने चली गई हैं. तो ये घर के मर्दों से क्या या और भी आपकी फैमिली में या जो भी लोग आपको आउटसाइडर्स भी देखें उनसे क्या औरतों से भी ही बर्दाश्त नहीं होता. तो नो डाउट ये भी एक बात है कि आपकी सक्सेस जो है ना लोगों से ईज़िली हज़म नहीं होती, इसलिए आप जो है ना अनसक्सेसफुल होना तो दूर की बात, अगर आप थोड़े से नाखुश हो जाएँ या थोड़े से प्रेस हो जाएं तो यही लोगों के लिए बहुत होता है. सो इसलिए कीप योरसेल्फ लिफ्टिंग अप. और ये बात ना सोचना छोड़ दीजिए कि कोई आएगा, और जो स्पेशली जो लड़कियां सोच रही होती हैं ना कि कोई सपनों का शहजादा आएगा और उनको बिठा के किसी और दुनिया में ले जाएगा, तो ये जो है ना ये तो सोचना बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दें. कोई आएगा, कोई आपको समझाएगा, कोई आए और आपको पूछे. देखिए अपनी जो आपकी अपनी खुशियां हैं ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को मत दीजिए. योर लाइफ इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर हैप्पीनेस इज ऑल्सो योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इसलिए अगर आप ये कहते हैं ना कि जी उसने ये नहीं किया, उसकी वजह से मेरा ये हुआ वो हुआ, तो जी आपने उसे इतना इख्तियार ही क्यों दिया है. तो इसलिए किसी अगले इंसान पे ना अपनी खुशियों का बोझ डालना ये बिल्कुल गलत है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो. अब मुझे लगता है आजकल की जो लड़कियां हैं ख़वातीन हैं वो भी इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि वो भी बहुत सी चीज़ों को समझ सकती हैं. नो डाउट जैसे कि मैं कह रही थी, हमने ऐसे ही फजूल में हर टाइम ससुराल वालों को इतना बुरा बनाया होता है या हस्बैंड को, वो बेसिकली हमारी ट्रेनिंग बचपन से चली आ रही होती है. या शादी के बाद भी अगर कोई आपको बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आपके सबसे पहले कि इससे पहले सास ससुर कुछ कहें आपके अपने माँ बाप ही कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, बर्दाश्त करो, ऐसा तो होता ही है शादी के बाद, ऐसा तो होता ही है, ठीक है ना. तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हमने शुरू से सीखी होती हैं. दे आर लाइंग इन अ माइंड समवेयर इन कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड.

तो ज़िंदगी में आपने कैसे इन सब चीज़ों को कैसे गुजारा है और कैसे फेस किया है, ज़रूर ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। और गर्मियों में ना आपका फेवरेट नेचुरल जो है ना, आपने मुझे मशरूबात में से बताना है कौन सा आपको पसंद है। जैसे इमली आलू बुखारे का शरबत, सत्तू स्कंजबीन है, संदल का शरबत ऐसे मुझे बहुत पसंद है। और पहले वो संदल का शरबत आता था ना जिसके अंदर वो चांदी के वर्क होते थे, क्या ही बात है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था। अब पता नहीं, मुझे काफ़ी अरसे से कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन बहुत अरसा पहले जो है हम हकीम से मंगवाते थे, तो मुझे संदल का शरबत और सत्तू वैसे बहुत पसंद है। आपको कौन सा ड्रिंक जो है गर्मियों में पसंद है लेना, ज़रूर शेयर करें। और फालसों को नहीं अवॉइड करना, इग्नोर नहीं करना, फालसे को बुरा लग जाएगा, ठीक है। फालसे का जूस भी बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा बनता है, और यहाँ तक कि जो आलू बुखारे का है जो आप जूस बनाते हैं वो भी बहुत मज़े का बनता है, ठंडा होता है, आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो ज़रूर ज़रूर आपने ये जो है ना आप रूटीन बना लें, दो तीन दिन अगर आपने ज़्यादा फालसे खरीदे हैं, और बल्कि जब फालसों का मौसम चला जाता है ना तो आपने फ्रीज करके भी रखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं। और आपकी बॉडी को, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हर किस्म के विटामिन्स की ज़रूरत होती है, तो जो डब्बे के जूसेस से बेहतर है कि आप ये सब इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी आवाज़ प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 111-000-101। मज़ीद गपशप आपके साथ चलती रहेगी, और आपके जो है ना अभी पोस्ट जो है अभी अपलोड नहीं हो रही, कुछ हमारा इंटरनेट इशू चल रहा है, तो आई विल बी अपलोडिंग द पोस्ट एज सून एज इट्स रिजॉल्व्ड।

Welcome back. This is your dose, your host, RJ Wajiha Asim. Program hai Ladies Lounge. आपका मेरा साथ रहने वाला है एक बजे तक. प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपकी कॉल्स, मैसेजेस. आज के प्रोग्राम की जो पोस्ट है अपलोड कर दी गई है, सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर. अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं. किसी को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं. हम यहाँ बैठे हैं दिलों को दिलों से मिलाने के लिए, आपके दिल की बात सुनने के लिए. तो आज मैंने बातें की हैं, ज़रूर आपने सुनी होंगी, और आपने जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर बताना है. आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो माइकल जैक्सन के जो गाने हैं वो तकरीबन 670 मिलियन वीकली स्ट्रीम्स के साथ टॉप पे आ चुके हैं ग्लोबली. माइकल जैक्सन के 8 गाने जो हैं आर चार्टिंग ग्लोबली इन वन डे. और देखिए, अपनी रिलीज के जो इतने सालों बाद भी टॉप 10 में रहना बहुत बहुत बड़ी बात है. ही इज अ लेजेंड कहते हैं ना, जिन लोगों में टैलेंट होता है ना वो हमेशा हमेशा जो अपनी रोशनी जो है ना बखेरता ही रहता है और कभी मांद नहीं पड़ता. तो यहाँ पे एक जबरदस्त ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ माइकल जैक्सन की आवाज़ में. डू एंजॉय द ट्रैक एंड कम बैक.

माइकल जैक्सन की जो एल्बम है थ्रिलर, वो उन्होंने 1982 में रिलीज की और ये एल्बम बन गई बेस्ट सेलिंग एल्बम ऑफ

0: अच्छा, हमने अक्सर माइकल जैक्सन को देखा है, उनके जितने भी पोस्टर्स हैं, उनके जितने भी म्यूजिक वीडियोस हैं, वो हमेशा एक मिलिट्री जैकेट्स पहनते थे अपने कॉन्सर्ट्स में. उनके जो कॉन्सर्ट्स होते थे उस वहाँ पे हमेशा जो है ना एक्स्ट्रा एम्बुलेंसेज जो हैं वहाँ पे अवेलेबल रहती थी उनके शोज़ के बाहर. फर्स्ट एड जो है ज़्यादा वहाँ पे रहता था ताकि लोग जो हैं उनके कॉन्सर्ट्स के दौरान, उनके शोज़ के दरमियान अक्सर बेहोश हो जाया करते थे और उनको फौरन, उनकी ऐसी हालत होती थी कि उनको मेडिकल जो है ना असिस्टेंस की ज़रूरत होती थी फौरन. तो इसलिए माइकल जैक्सन इज़ वन ऑफ द किंग दैट विल लास्ट फॉर एवर. जी, हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी हैं, उनको साथ साथ शो में शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं फरीज बोजी लाहौर.
0: वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो. कैसी हैं आप?
1: आपने तो मजबूर कर दिया डांस करने पे.
0: देखिए, म्यूजिक और मस्ती तो फुल ऑन होनी चाहिए ना.
1: वो थोड़ा पसीना कम हो गया है, आया हुआ था तो वो डांस करना शुरू कर दिया है, तो खाना जल्दी बन रहा है.
0: क्या बात है, क्या बात है, यही तो म्यूजिक की का कमाल है.
1: आज फ्राई कर रही हूँ, चिकन फ्राई खा रही हूँ.
0: चिकन फ्राई कर रही हैं आप? क्या बनाएंगे?
1: पसंदे.
0: क्या ही बात है, क्या ही बात है. ठीक है,
1: आ रही है ना तो बड़ा गोश्त का ना, वो जो चापे वाले गोश्त होता है ना, चापर गोश्त जिसको कहते हैं.
0: जी जी जी.
1: ना लेके ना तो बारीक बारीक ना,
0: कौन सा वाला गोश्त कह रही है?
1: रान का गोश्त जो होता है ना, गाय का गोश्त जो.
0: जी जी
1: जी होता
0: जी, जी जी, रान का गोश्त. ठीक है,
1: नहीं है ना तो वो गोल बोटी का गोश्त लेके ना, तो वो हैमर होता है लकड़ी का जो किचन में इस्तेमाल होता है, तो उससे ना उसको थोड़ा थोड़ा कर ले.
0: ठीक है,
1: उसके ऊपर ना थोड़ी सी नमक मिर्च लगा ले, थोड़ी हल्दी लगा ले, जीरा पाउडर और सूखा धनिया.
0: ठीक,
1: उसके ऊपर थोड़ा सा ना आप चाट मसाला लगा के ना दोनों तरफ से ना टर्न करके ना दोनों को हाथों की वजह से मल ले. आधा किलो गोश्त ले लेना.
0: ठीक है, ठीक है.
1: और ना मैरिनेट करने के लिए ना आधे घंटे के लिए रख दे. थोड़ी सी ना प्याज ले ले, उसको पेस्ट बनाना है. लहसुन अदरक टमाटर और हरी मिर्चें इकट्ठी पेस्ट बना के ना, तो उसको चूल्हे पे चढ़ा दे. थोड़ा सा घी डाले, नमक मिर्ची अपनी मर्जी की डालनी है. जब ये मैरिनेट हो जाएगा ना, थोड़ा सा गोश्त जो है ना इसके अंदर मसाला मिक्स हो जाएगा, तो इस वो जो मैरिनेट किया हुआ है ना गोश्त उसके अंदर भून ले. भून के ना तो आधा किलो दही लेके ना, या एक पाव दही लेके ना, तो उसके अंदर मिक्स करके ना, तो इसको ना घी भी डाल दे, तो इसको ना ढक्कन लगा के ना रख दे. थोड़ी सी हल्दी आंच करे कि ये अपने पानी से और दही के पानी से ना गोश्त गल जाएगा.
0: ठीक है,
1: अच्छी तरह गल जाएगा ना, तो ये आपके पसंदे तैयार है.
0: मतलब दही इसमें ज्यादा डालनी है?
1: नहीं, ज्यादा डाल खट्टा करने के लिए डालनी है ना.
0: ठीक है, ठीक है, ठीक है.
1: टमाटर की पेस्ट डाली है तो ना वो गल जाएगा अच्छी तरह ना, मिक्स हो जाएगा. तो ये आपके पसंदे ईद की डिश है.
0: बिल्कुल,
1: तो बिल्कुल. है, वो चांपे हैं, वो अंडा लगा के बनानी है. तो थोड़ी सी ना आधा किलो चांपे ले ले बकरे की.
0: ठीक
1: तो
0: है,
1: उसको ना धो के ना तो प्रेशर कुकर में डाल दें. दो तीन प्याज डाल दें, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है. पेस्ट डाल के थोड़ा सा गर्म मसाला डालना है, तो थोड़ा सा नमक डाल के ना, तो इसको ना यखनी की तरह ना निकाल लें. पांच मिनट की ना सीटी लगा देंगे तो वो यखनी निकल आएगी. बाद में ना ये यखनी जो है ना उधर ही प्रेशर कुकर में रहने दें, तो वो चांपे है ना निकाल ले बाहर.
0: ठीक है,
1: ऊपर ना खाली चाट मसाला लगाना है. चाट मसाला अच्छा, दोनों तरफ लगा के, क्योंकि वो गोश्त तो गल गया है, खाली फ्राई कर रहा है आपने, तो दोनों तरफ चाट मसाला लगा के ना, अगर मिर्ची टेस्ट ज्यादा करना चाहते थोड़ी सी लाल मिर्च डाल ले. तो एक अंडा ले ले, उसको ना तोड़ के फेंट के ना, तो उसके अंदर ना डिप करके ना, तो इसको ना नॉन स्टिक पैन में डाल के तो फ्राई कर ले थोड़ा सा घी डाल के.
0: ठीक हो गया. अच्छा, कुछ लोग अंडे में मैदा भी ऐड कर लेते हैं ना?
1: मैदे वाला वो लैदा है, वो आप मैदा थोड़ा सा दो चम्मच बेसन के, दो चम्मच चावलों का आटा, थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के ना, तो वो मिक्सर बना के ना उसके अंदर भी डिप करके आधा आप अंडे वाला बना ले. तीन चार चम्पे अंडे वाले बना ले, वो मैदे वाली और बेसन वाली बना ले.
0: वो भी बहुत अच्छी लगती है. बिल्कुल,
1: आपके लिए तो ज्यादा जूस बनाए, फालसे का जूस बना ले, आम आ गए मजे मजे के आम.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
1: अच्छी तरह साफ कर ले. छोटे तारे के लिए तो दोनों फ्रिज भी साफ कर ली, अपनी अम्मी का भी और अपने अब्बू का. वो
0: شکریہ شکریہ بہت بہت وعلیکم السلام جی بہت بہت شکریہ یہ تھی فری آپ ہی ہمیشہ بہت زبردست ہمارے ساتھ ریسیپیز شیئر کرتی ہیں اور واقعی جو عید پہ نا تو زیادہ وہ جو ہے نا اس کا بھی بہت مزہ آتا ہے باربیکیو کرنے کا جی السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ اللہ خیر آپ کیسے ہیں
2: شکر الحمد للہ
0: اچھا اچھا ہاں جی میں بھی آپ سب کے کامنٹس پروگرام میں شامل کر دیتی ہوں کتنے شو
2: تین
0: چلے جی ان شاء اللہ ضرور ضرور ہمارا بس چلے تو ہم روز آپ کے لیے آن ایئر آ جائیں ٹھیک ہے نا
2: نہیں آپ
0: اچھا اچھا چلے ان شاء اللہ ضرور ضرور ہمارے لسنرز کے لیے اینی تھنگ اور آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمیشہ بہت مثبت باتیں کرتے ہیں اور بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں
2: تھینک یو بڑی مہربانی آپ کی آپ کو پتا ہے کہ بڑا عید بھی آنے والا ہے
0: جی جی
2: چھ دن کے بعد اس کے ہم جو ہے خواتین بھی بہت زیادہ مصروف ہے اور اپنے کچن کو اچھی طرح صاف کرے گا اپنے کمرے کو صاف کرے گا دم پر یہ چیزیں وغیرہ لگائے گا اچھی طرح
0: صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اور وہ کہتے ہیں نا بہت زور و شور سے عید منانی ہوتی ہے ہم نے تو ہے نا چلے جی تھینک یو
2: جانور وغیرہ میں مصروف رہتی
0: اچھا اچھا اچھا اچھا آپ لے آئے ہیں جانور
2: نہیں ہمارا ابو نے لیا پانچ بکرے لیا پانچ
0: اچھا اچھا اچھا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے تو پھر قربانی کے بعد آپ اچھا باربیکیو انجوائے کریں گے ٹھیک ہے نا چلے جی آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ جو آواز ہے نا بیچ میں کٹ رہی ہے یہ تھے حمد اللہ ملا خیل اور ساتھ ہم کچھ اپنے میسیجز بھی پروگرام میں شامل کر دیں ایم رضا چودھری نے ہمیں میسیج کیا ہے کچھ تعلق بھی نہیں پھر بھی خفا ہوں تجھ سے نہیں نہیں خفا کیوں ہونا ہے آپ نے جو ہے نا جو سلسلہ خفا ہونے کا ہے اسے توڑ دیں ٹھیک ہے نا اور جانے کس مان پہ میں روٹ گیا ہوں تجھ سے نہیں جناب روٹنا کیوں ہے ایف ایم 101 آپ کا اپنا چینل ہے تو کچھ بھی روٹنے روٹھانے کا چکر نا یہاں پہ نہیں ہونا ٹھیک ہے نا اور بہت لمبی سی نظم بھیجی ہے بہت بہت شکریہ کہتے ہیں اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں الفاظ احساسات خواہشات اور لوگ مگر چائے کا کب ہمیشہ بڑا رکھے کیا ہی بات ہے چائے تو دیکھیں جتنی مرضی گرمی ہونا ہم لاہوری ہمیشہ تیار رہتے ہیں چائے پینے کے لیے کیونکہ یہ سب الفاظ چائے میں بسکٹ کی طرح ہوتے ہیں اچھا جی چائے تو نا ہم سب کو ویسے ہی بہت پسند ہے السلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ
3: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ویلکم ٹو دی شو
3: اوکے تھینکس موسٹ ویلکم
0: جی جی کون بات کریں کہاں سے
3: لاہور شاہ باغ سے محمد نوید بات کر رہا ہوں
0: محمد
3: نوید جی
0: نوید جی جی آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کال کی تھی ہے نا
3: جی جی
0: جی کیا کہنا چاہیں گے
3: جی میں تو سب سے پہلے تو جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں ان کو سب کو السلام علیکم کرنا چاہتا ہوں
0: وعلیکم السلام
3: اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں پیغام تو میرا مطلب یہی ہے کہ دیکھیں آگے ماشاء اللہ اتنا بڑا تہوار آ رہا ہے ٹھیک ہے نا
0: جی جی جی
3: تو خدا کی قسم یا آپ ایسے نہ کریں کہ جن کا حق ہے جنہوں نے نئی قربانی وغیرہ کی ہوتی ان تک پہنچائیں تو ان کا بنتا بھی ہے
0: بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل بہت اچھا میسج دیا آپ نے اور جلدی جلدی سے بات کرنی ہے بہت سے کالج ہیں پھر ہمارے کالج جو ہے آپ سے روٹ جاتے ہیں تو یہ بہت ٹینشن والی بات ہے
3: ہاں ابھی پلا کیا مسئلہ ہوتا ہے دیکھے نا ہمارے پاس یہاں پہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جس نے ہمارے گھر بھیجا ہم نے تو اسی کے گھر بھیجنا تو یہ لیکن وہ غلط بات ہے نا جو نہیں کرتے بےچارے وہ سارا سارا دن دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے آئے گا تو ہم تو بتائیں گے
0: بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل صحیح بات ہے صحیح بات ہے بہت اچھی بات آپ نے شیئر کی ٹاپک کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ
3: جی بہت مہربانی
0: چلے تھینک یو ویری مچ جی بہت اچھی بات آپ نے شیئر کی کہ ہمیں جو ہے نا جو مستحق لوگ ہیں ان تک ضرور گوشت پہنچانا چاہیے اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں واقعی عید الاضحیٰ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آئے گی تو ہم گوشت کھائیں گے اور وہ بہت ایک دو مہینے کا سیو کر کے بھی رکھ لیتے ہیں اور ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے السلام علیکم
4: बड़े अदबर हैं आराम से आपको तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात।
0: वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम है मोइज राजपूत फ्रॉम लाहौर।
0: ठीक है मोइज राजपूत, आपको वेलकम कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
4: थैंक यू सो मच। ये मेरी तीसरी चौथी कॉल है एफएम पे, ठीक है, थोड़ा सा नर्वस हूँ। और जी
0: कोई बात नहीं, नर्वस होने की क्या बात है, आपका अपना चैनल है।
4: तीसरी चौथी कॉल है, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस कहते हैं वो अभी हमें नहीं आया, तो कोशिश है बात करने की। तो आज का मौसम क्या मैम, मैं जानना चाहता हूँ।
0: नहीं, आज हम यही बात कर रहे थे कि जैसे ख्वातीन को जो है ना बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता है, ज़रूरी नहीं उनके ससुराल वालों की तरफ से, उनके माँ बाप भी कह रहे होते हैं कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो, तो ये एक नॉर्मल सा हमारा कल्चर है। थोड़ा सा ना उन्हें माँ बाप की तरफ से भी इतनी सपोर्ट या मोटिवेशन नहीं होती, वो भी यही कहते हैं कि कोई बात नहीं ससुराल वालों में बर्दाश्त करो, और इस तरह से ना।
4: जी मैं आपकी बात अभी समझ गया हूँ। इस बारे में ये कहना चाहूँगा, जब आपकी मतलब एक औरत की शादी कर दी जाती है, ठीक है, तो बात आके खत्म हो जाती डिवोर्स के ऊपर। डिवोर्स होगी तो आपका वो शोहर नहीं है, ठीक है। अगर डिवोर्स उसने नहीं ली है, ठीक है, लेकिन वो एक औरत उसे दिल से अपना शोहर मानती नहीं है, यानी कि उस रिश्ते मोहब्बत से बनते हैं, फोर्स करके नहीं। जब तक उसे फोर्स किया जा रहा था, वो दिल से हाँ एक ताल्लुक तो निभा रही है,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
4: सहमत नहीं है कि ये मेरा शोहर है। तो मेरा ख्याल है कि इस बात का अगर एंड किया जाए ना, तो बात हर किसी का एक माइंड सेट होगा इस बारे में राय।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर एक का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बिल्कुल
4: जी, हर किसी का अपना एक माइंड सेट अपनी राय होगी, लेकिन मेरी राय यहाँ पे आके खत्म होती है कि मतलब बाहरी बात है, हर इंसान के ऊपर मुश्किल वक्त आता है।
0: दिल से तो, दिल से रिश्ते निभाना चाहिए, अब ये कहना चाह रहे हैं।
4: वो औरत है, अगर उसे घर से मोटिवेट नहीं किया जा रहा है यहाँ पे ससुराल की वजह से, तो सभी करे, ठीक है, जाहिर बात है कि मुसलमान है, कि अल्लाह पाक मेरे हक में बेहतर हो, फिर अल्लाह पाक उनके लिए बेहतर रास्ते बनाएंगे। और मैं मैम अपने दिल की बात करना चाहता हूँ।
0: हाँ, हाँ, जल्दी से, टाइम बहुत कम है।
4: हम जिंदगी में ना अपनी मर्जी से गुफ्तगू भी करते हैं, अपना जॉब वगैरह भी करते हैं, सारे मामला लेके चलते हैं, लेकिन हम एक कदम भी ना अल्लाह की इजाजत के बिना नहीं ले सकते,
0: नहीं ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो हमें अपनी गुफ्तगू में और अपनी लाइफ स्टाइल में,
0: जी जी,
4: हम मुसलमान हैं, ठीक है, कुरान पाक हमें तालीम देता है कि आपको अच्छे बुरे का फैसला

0: अगर मतलब ये सबसे बेस्ट है कि आरजे ऐसा होना चाहिए,
1: नॉइज राजपूत आप भी बेस्ट हैं यार, फिक्र ना करो तुम, और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना?
0: अपना ख्याल रखिएगा और तमाम लोगों से इजाजत चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम, बाय। ठीक है जी, कॉन्फिडेंस जो है ना वो इंसान में वक्त के साथ साथ आ जाता है, बस तुमने हार नहीं माननी, ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
2: जी अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
2: अभी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब्दुल हमीद बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद हथकंड गांव से।
1: जी जी जी जी।
2: अभी मुख्तसर गल करूंगा, इन लंबी गल नहीं करना चाहता।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: हाँ, क्योंकि बहुत कालर पीछे लगे। अभी देखो, बेटी मेरी 20 साल मेरे घर भरी है।
1: बिल्कुल
2: इंशाल्लाह चंद दिन जो अल्लाह पाक बेहतर कर देता
1: है।
2: जिवें तुहाडा प्रोग्राम साडा ना, गाने भी साडे लाया करे बाजी, मैं यही कहना सी।
1: लेकिन क्योंकि अभी मई के महीने में माइकल जैक्सन इज रॉकिंग द चार्ट्स ग्लोबली, पूरी दुनिया में उनके गाने नंबर 1 पे आ रहे हैं और उनकी जो बायोपिक है उसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं अपने फर्स्ट वीक में ही, इसलिए मैंने सोचा ऐसे प्रोग्राम में शामिल जरूर करना चाहिए। जी, और हमारे साथ एक और कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हो?
3: मैं भी ठीक ठाक, जबरदस्त शो, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं।
1: थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहोगी टॉपिक के हवाले से?
3: आप तो सच बताओ, आपने टॉपिक का जिस बात की बहुत अच्छा है।
1: अच्छा।
3: इस टॉपिक के ना हमारे माशरे को ज्यादा जरूरत है, खासकर उन बच्चियों को, उन लड़कियों को, आप ये उनके लिए बहुत अच्छा कर रही है। और ये टॉपिक रख के ना आज तक बहुत ज्यादा ये चल रहा है, जो बेटियां बना के लेके जाते पहले हफ्ते बाद में कुछ होते हैं।
1: हाँ, नहीं ये बात नहीं, बात ये यही मैं कह रही हूँ, हर वक्त ना ससुराल वालों को कोसना नहीं चाहिए। ये ना हमारी ब्रॉटअप भी ऐसे ही है कि माँ बाप पहले से सिखा के भेजते हैं, तूने ही बर्दाश्त करना है, तूने ही सब्र शुक्र करके रहना है, ठीक है ना? तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है, ठीक है? तो अब शुरू से ही जब बर्दाश्त करना टू मच सीख जाते हैं ना, पर जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना तो आप कहते हैं ये क्या हो रहा है, ठीक है? और क्या कहना चाहोगी?
3: और जब लड़की जाती है ना, वो शुरू से तो पहले बहुत वो टेंशन में होती है।
1: हाँ,
3: तो उसे समझने में घर पे जाहिर एक घर छोड़ के जाती है।
1: हाँ,
3: दूसरी जगह जाती है।
1: बिल्कुल।
3: उसका वो दूसरा जन्मदिन होता है,
1: बिल्कुल
3: दूसरा उसका होता है वो घर का, तो उसे समझने में टाइम लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: प्यार से समझाते तो क्या हो जाए, ये यानी ना वो प्यार से समझाते ससुराल वाले शुरू कर देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो माँ बाप को भी नहीं बताती घर का खराब होता है, वो दिल मरीज बन जाती है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है।
3: ज्यादा ना लड़कियाँ परेशान है, वो जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज आ रही है, सब ससुराल वालों को कहूंगी आप बच्चियों पे लड़कियों पे इतना
1: जी। और जहाँ तक एक और बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी कि माँ बाप की तरफ से एक जो होता है ना आप पे इमोशनल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना? कि देखें कि हमने तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम्हारी परवरिश की, इतना कुछ तुम्हारे लिए किया, और अब तुम ऐसे करो, अगर आप अपनी मर्जी से कुछ करना चाहें या अगर आप कोई फैसला ले रहे हैं तो अब तुम ऐसे कर रहे हो, हमने इस दिन के लिए तुम्हें खिलाया था पिलाया, तो ये एक माँ बाप का जो इमोशनल प्रेशर आपके ऊपर होता है ना, तो देखिए सबसे बड़ी बात कि देखें आपने आपकी चॉइस थी, ठीक है, कि आप चाहते थे आपकी फैमिली आगे बढ़े, ठीक है ना? वो अपनी मर्ज़ी से तो एक तो दुनिया में नहीं आया, दूसरा देखिए आप उसके ऊपर फिर इतना प्रेशर डाल रहे हैं, अगर आपने खिलाया पिलाया तो आपने अपनी मर्ज़ी से खिलाया पिलाया, अगर आपने दी इसमें, हम तो एक गैर को भी कह देते हैं यार अगर तुमने एहसान जताना था बाद में तो किया ही क्यों, ठीक है ना? तो जो माँ बाप भी आपको बाद में इतना कुछ करके आप पे फिर प्रेशर डालते हैं कि जी ये किया, तो देखिए वो आपने अपनी मर्जी से किया, आप करते ना करते यू हैड अ चॉइस, ठीक है ना? लेकिन करने के बाद

0: बाद आप इस दिन के इंतजार में होंगे जब मौका आएगा तो हम प्रेशर डालेंगे, ये बात भी सही नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
1: वालेकुम सलाम, आप जी की हाल ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: बोधी जाट गल कर रहे हैं।
0: जी जी जी जी, क्या कहना चाहेंगे?
1: माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक आपको सलामती और सेहत वाली जिंदगी अता करेगी।
0: शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत आपको शो पसंद आया। और टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे
1: आप? ये टॉपिक के हवाले से यही कहूँगा कि खवातीन जो होती है कोई इंसान गलती का पुतला होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: मैरिज करना चाहिए और
0: अपने बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉल्यूम जो है रेडियो का आहिस्ता कर दे। जी जी, अब बोले।
1: अच्छा आप जी का ठीक है,
0: चले जी। थैंक यू वेरी मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया।
1: हाँ जी, थोड़ी भी खैर हो, अल्लाह पाक थोड़ी पूरी टीम जो सलामती दुआ, अल्लाह पाक थोड़ी जो ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਐ ਮੇਰੇ ਅਭੀਰ ਭਾਈ ਐ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਨੀਲਾ ਆਪੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਰਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਰਜ਼ੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਜੇ, ਡੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਖਸੂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਆਰਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਜਵੇਦ ਅੱਜ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣਗੇ ਸਰਗੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰਜੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕ
0: ਤੁਹਾਨੂੰ
1: ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਰੀ ਆਪ ਮੇਰੀ ਆਇਆ ਸਨ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰੈਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ।
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਆਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ?
1: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।
0: ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ जी, बहुत ही गपशप होगी, आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी साथ साथ प्रोग्राम में शामिल कर देती हूँ। इसके बाद प्ले करेंगे एक सॉन्ग। आरजे वसीम अहमद ने मैसेज किया है, बहुत आला, थैंक यू वेरी मच, मींस अ लॉट फॉर मी। अली फरमान ने मैसेज किया है, कहते हैं वेलकम जी, थैंक्स अ लॉट। मोहम्मद हमजा ने कहा है फ्रॉम मूसा वाली, आपने मैं इतनी दूर से ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। कंवल नाज ने मैसेज किया है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नज़ीर खुसरो ने मैसेज किया है हमें, थैंक यू। रमज़ान गुजर ने कहा है बहुत सी मैम, बहुत देर बाद आपका शो की पोस्ट मिली। जी बिल्कुल, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो था तो यू नो ऐसे चलता रहता है। और शफकत अली ख़ान में उन्होंने मैसेज किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं शफकत अली हूँ, और कहते हैं कि शौकत अली को, मुश्ताक ख़ान को, मास्टर सलीम को, सबको उन्होंने इस्लाम भेजा है, वालेकुम अस्सलाम। रज़ा चौधरी आ चुके हैं शो में, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। और रमज़ान गुजर हैं, कहते हैं बहुत सी दुआओं के साथ नंबर वन फैमिली रेडियो स्टेशन हिट FM 101 पर वेलकम कहते हैं। और मैडम मुजीहा आसिम, आपकी सेहत तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और आरजे वसीम अहमद ने कहा है ज़बरदस्त कॉन्टेंट, थैंक यू वेरी वेरी मच। और रज़ा चौधरी ने कहा है बसिलसिला इश्क का है आज भी अरूज पर, कोई जाके टूटना है, कोई चाहता है टूट कर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
2: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: जी जी, वालेकुम अस्सलाम।
2: मोहम्मद शहजाद शाहबाग से बात कर रहा हूँ।
0: जी जी मोहम्मद शहजाद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? वेलकम टू द शो।
2: मेहरबानी, शुक्रिया आपका। ये बेटियों के बारे बात हो रही है, देखे जी मैंने तो माशाल्लाह तीन बेटी की शादी की है।
0: अच्छा अच्छा, वाह जी वाह।
2: और अल्लाह की मेहरबानी से अपनी बेटी को हम समझाते हैं, वो जब आती है ना तो उनको यही समझाते हैं, बेटा वो अपना घर समझना है और साथ के साथ ना जो बात ऐसी नहीं करनी जहाँ से वो गुस्से हुए
0: हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो ये आपने अपने माँ बाप की इज्जत जो है ना वो बरकरार रखनी है, कि आप अच्छे माँ बाप की बेटी हैं तो अच्छी तरह आपने उनको उनके साथ काम करना करका और सब आपको अच्छा समझेगा तो हमारी जो हमें शाबाशी होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: ये यही होता है, जो बेटियों को समझाना भी पड़ता है। देखे ये जब हम ना समझाएंगे तो मामला बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया, कॉल बहुत लंबी हो गई है, ठीक है।
2: बहुत बहुत आपकी भी मेहरबानी, बहुत अच्छा शो होता है और जितने आरजे आते हैं सबको मेरा सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: आरजे डॉग जितने भी मेरे प्यारे आपको भी दिल से सलाम जी, बहुत बहुत मेहरबानी,
0: शुक्रिया, अल्लाह
2: हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़
0: जी। यहाँ प्ले करने जा रही हूँ एक जबरदस्त ट्रैक, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

See listeners, welcome back. Program hai Ladies Lounge. This is your dose, your host, RJ Vajhia Sim. Assalamu alaikum. Kaun hai hamare saath? Waalaikum assalam. Kaun baat kar rahi hai? Kahan se? Ji. Apna naam bataiye, bataiye. Hamna, kya kehna chahogi Hamna? बस एक साल से क्या करती हो यार, चले जी चले जी, फिर तो तुम्हें मुझे ना कोई अवार्ड देना चाहिए है कि मैंने एक साल बाद तुम्हारी कॉल जो है ना उठा लिए। I'm so sorry, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। आप दोबारा कॉल करती हैं तो जरूर जरूर मैं आपकी कॉल लेती हूँ और मेरा खुद बहुत दिल था मैं आपके साथ बात करूं, लेकिन आई थिंक देयर सम सिग्नल्स इशू एट योर साइड। अच्छा, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक जो होता है ना, व्हेन यू आर ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है, तो पीपल जो है आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं और आपका वो इम्पैक्ट भी नहीं रहता। और एक बात हमेशा याद रखिए, प्रेजेंस अट्रैक्ट्स अटेंशन एंड एब्सेंस क्रिएट्स ऑब्सेशन।

0: This is FM 101.
1: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.

0: relax in the dark.
1: Zeus.

0: nuestro.
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: किड़ किड़ किड़ किड़ कैन किणा कण कैन किणा कण किगरा किड़ किड़ किड़ किड़।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: This is FM 101.1.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: 101.1 Kia.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ़ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: सुनते रहिए FM 101.1।
1: अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: This is FM 101.1.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: And now, you are tuned into
6: FM 101.
7: सुनते रहिए FM 101.
8: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
9: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बे फॉर्म, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
10: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सुनते रहिए FM 101।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: अस्सलाम वालेकुम, रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ समीना वकार
2: और अयास असलम।
1: पहले अहम खबरों का खुलासा।
2: वज़ीर-ए-आज़म ने सीपैक के अगले मरहले की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है।
1: चीन ने कहा है कि वो मुश्तरका मुस्तकबिल पर मबनी चीन पाकिस्तान कम्युनिटी के क़याम के लिए पाकिस्तान के साथ करीबी तआवुन जारी रखेगा।
2: नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पायदार इदाराजाती तआवुन और अवामी रवाबित पर जोर दिया है।
1: सेनेट और कौमी असेंबली ने आज पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में करारदादें मंजूर की।
2: वज़ीर मवासलात ने पाक फजाइया के तआवुन से मोटरवेज पर एयर एम्बुलेंस सर्विस के क़याम का ऐलान किया है।
1: बहरी उमूर के वजीर ने कजाकिस्तान के सरमायाकारों को पाकिस्तानी बंदरगाहों पर मुश्तरका मंसूबे शुरू करने की दावत दी है।
2: वस्ती कुरम में भत्ताखोरी के तनाजे पर मुसल्ला तसातुम के दौरान फितनाउल खारिज के दो हरीफ ग्रुपों से ताल्लुक रखने वाले 19 दहशतगर्द हलाक हो गए।
1: पंजाब हुकूमत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कर दिया है।
2: कंट्रोल लाइन के दोनों जानब के कश्मीरी कल हुर्रियत रहनुमा मीरवाज़ उमर मौलवी मोहम्मद फारूक की 36वीं बरसी मनाएंगे।
1: पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मोरा जट कल चीन भर के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी।
3: This is FM 101.
4: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.

0: पीछे पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
3: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
4: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
3: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
5: This is FM 101.
6: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में क्या,

0: पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
3: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
4: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
3: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
5: दिस इज FM 101.1।
6: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: कुक स्टूडियो सीजन 14।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: पीछे पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
1: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
1: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: This is FM 101.1.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
7: Coming up next, RJ Talks. On your radio dial, keep it locked.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

Alright जी, Assalamualaikum। आवाज़ किस दुनिया में जिन सब बातों से मेरे अल्फाज टकराते हैं, यकीन के साथ कि आज का दिन आपने बहुत ही आसान तरीके से मुकम्मल किया होगा। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, और आपका मेरा साथ होता है जी बुध जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट। पिछले हफ्ते मैं कुछ जल्दी जल्दी आ गया, इस हफ्ते फिर वही हाय हाय गमे रोजगार के मसाइल ही बड़े अजीब होते हैं। बहरहाल सॉरी वंस अगेन जी, ना आने से आना बेहतर होता है। हर वक्त हो चुका है 10:35, 20 मई 2026 का सन है, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों की अय्याशी का टाइम हुआ जाता है, उनको छुट्टियां होने वाली हैं। एंड दिस इज़ आल्सो अनदर ब्यूटीफुल ब्लेसिंग इन दिस लाइफ ऑफ एजुकेशन के आपको ये 3 महीने की छुट्टियां मिलती हैं, फिर विंटर में हॉलीडेज आती हैं, फिर उसके अलावा और भी किस्म के मामला चल रहे होते हैं कि छुट्टी आती है, और ये छुट्टियाँ जो आती हैं इनमें फ़िक्र कोई नहीं होती, इनमें टेंशन कोई नहीं होती, क्योंकि आप पे कुछ ज़िम्मेदारी नहीं है, आप चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं, आपकी लाइफ इंजॉय करने वाली है। आपके शऊर ने चीज़ों को समझना ज़रूर शुरू किया, लेकिन अभी ज़िम्मेदारियाँ कंधे पे नहीं पड़ती। जब आप इससे आगे निकल जाते हैं तो एहसास ज़िम्मेदारी जो आता है उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदल जाती हैं। मेरी ज़िंदगी में बदल गई, और भी मेरे सुनने वाले कई लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में एहसास ज़िम्मेदारी ने बहुत कुछ बदल दिया। एहसास ज़िम्मेदारी से फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता, एहसास ज़िम्मेदारी बहुत सारी चीज़ों से आता है। बाहैसियत पाकिस्तानी, बाहैसियत मुसलमान, बाहैसियत इंसान, फिर रिश्ते में हैं तो उस रिश्ते का एहसास, फिर दोस्ती का एहसास, फिर माशरे का एहसास, फिर लोगों की रवायतों का, रवाजों का एहसास, ना जाने कौन कौन से एहसास जाग जाते हैं। जहाँ आपका बहुत कुछ करने का दिल चाहता है लेकिन आप कुछ नहीं करते, सिर्फ यही सोचते हुए कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसकी वजह से माशरे में खूबसूरती भी रहती है, चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। जहाँ एहसास ज़िम्मेदारी निकल जाए वहाँ बिगाड़ पैदा होता है। बाहर तो चले बाद में होगा, पहले इंसान की अपने अंदर बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता, और अपने अंदर जब बिगाड़ पैदा शुरू होना मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की शक्ल में ज़ाहिर होता, कभी बे इंतहा नेगेटिविटी की शक्ल में ज़ाहिर होगा, कभी बिला वजह के चिड़चिड़ापन की शक्ल में ज़ाहिर होगा, कभी खुद पसंदी की शक्ल में ज़ाहिर होगा, कभी खुद गर्जी की शक्ल में ज़ाहिर होगा, लालच तमा हर्स हवस। तो खुदा ने कितना खूबसूरत सा निज़ाम बनाया ना हमारे अंदर, ये अक्ल शऊर और हवा से खमसा देकर। तो जितना भी चीज़ों को देखता जाता हूँ मैं तो हैरान होता हूँ कि यार कितनी खूबसूरती है ना हमारी अक्ल से लेकर शऊर, शऊर से लाशऊर, फिर लाशऊर से तहत शऊर, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे सफ़र करती हुई एक ख्याल की लहर जो है जाती है, और कहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन उठा के लाती है। तजर्बे हैं आपके और तजर्बात में एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर्स, ना जाने क्या क्या। डिज़ायर से याद आया, मेरे कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है, बड़ी देर से नहीं पी मैंने। तो खुदा का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, मैं भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, आप भी खुदा का शुक्र अदा करें कि आप और मैं, ये एहसास ज़िम्मेदारी है जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात में दरगुजर करते हैं, कभी अपनी ज़ात पर, कभी किसी के हवाले से, और बहुत सारे लोग हम पे भी हमारे मामलात में दरगुजर कर जाते हैं। और अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे कि बाहैसियत पाकिस्तानी, बाहैसियत मुसलमान और बाहैसियत इंसान हम अपने अंदर इस एहसास ज़िम्मेदारी को जगाए रखें, और हम एक दूसरे के काम आएं। एंड मेरा सलाम अकीदत है वतन के तमाम मुहाफिजों के लिए,
और जो जो भी जहाँ जहाँ पर भी है इस वक्त ड्यूटी के फ़राइज सर अंजाम देते हैं, मेरे तमाम फौजी अफसरान जवान सबको बहुत सारा सलाम अकीदत है, और खालिक से दुआ है कि आपकी मौजूदगी से आपके घर वालों की निगाहें इसी तरह से ठंडी रहे। वक्त हो चुका है 10:40, खुदा का शुक्र अदा करने के बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह दिल करे कर लें, लेकिन आदत बनाएं कम से कम एक दफ़ा इंटेंशनली बैठ के तसल्ली से सोने से पहले। मेरी आदत यह है, मैं आजकल कोशिश करता रहता हूँ रात को भी शुक्र करके सो जाऊं, सुबह उठ के मोबाइल को बाद में पकड़ना है, पहले उठ के बैठता हूँ, पहले जिक्र करता हूँ और याद करता हूँ अपने खालिक को, वो कलमा पढ़ लिया, जिक्र किया, उसके बाद फिर उठ के दिन का आगाज किया, ये सोच के कि पता नहीं क्या करना है मैंने, और सोने से पहले भी यही किया पता नहीं कल उठना है भी कि नहीं मैंने। आज डॉक्स वाइफ थैंक यू वेरी मच, आपने कहा कोई बात नहीं हमें आदत हो गई। सलमा राशिद साहिबा मैडम कैसी हैं आप, वेलकम किया फिर लेट, आप कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मजबूर नौकर आदमी जी मैडम। आरजे जुबिया शफीक थैंक यू वेरी मच, हेर यू गो जी, अभी फुल नंबर बाय हसन बसरी, इश्क द सागर, आई जस्ट लव इट, डोंट गो एनीवेयर, आई विल कैच यू बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल कलाम, बाबा बुल्ले शाह साहब का तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा ही खूबसूरत गाया।

अरे जी वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:45 और आज है जी 20 मई 2026 का सन FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉग सैन। थैंक यू वेरी मच जी, मेरी लाइफ पे ज्वाइन किया है मुझे सलमा साहिबा ने और बाकियों के मैसेजेस पढ़े मैंने आज। जुबिया शफीक हैं आज डॉग्स वाइब्स। फैन पेज है जी मेरा रॉबिन सिंह हमें सुन रहे हैं इंडिया से। पाजी बड़ी मेहरबानी। अच्छा इतने तो बहुत गर्मी है जी, अज इतना भी बड़ी गर्मी रही पाई थी अज ते इट वॉज अराउंड 40 and above इट वॉज। और हरियाणा से सुन रहे हैं बड़ी मेहरबानी। और जासिर आए हैं, जासिर हमें सुनते हैं श्रीनगर से सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जासिर। कोई लड़की शड़की ढूंढी कोई शादी के लिए? जासिर कहते हैं मेरी सिफारिश करें शादी के लिए फिजा को। ज़रूरी हो गया, कर देते हैं यार सिफारिश। ठीक है आप आ जाओ फिर मेरे शो का। वैसे भी यहाँ पे किसी ने कहा था आप अपना जो है ना मैच मेकिंग जो कराना शुरू कर दिया ना मैच मेकिंग शो रख लें, कुछ इसी तरह के सीन बना लेते हैं फिर इसका। और एम उस्मान ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी आज के दिन आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग। रिवर्स में जाके बात करते हैं चीज़ों के बारे में ना, तो मैं सीखना चाहता हूँ कुछ। मैं कोई वो देख रहा था ना, कंटेंट देख रहा था, अक्सर कंटेंट देखने को मिल जाता है। कंटेंट से याद आया पिछले ये पूरा हफ्ता काफ़ी मेरे लिए हैपनिंग रहा। यूनिवर्सिटीज़ में गया और वहाँ पे हम एक तो टॉक इट वॉज अबाउट कम्युनिकेशन एंड अदर थिंग्स, क्योंकि हम आजकल ज़रा लगे हैं प्रमोट करने। वालेकुम अस्सलाम आजमीन, आप इस सरताश आई हैं, थैंक यू वेरी मच। हम जी लाहौर में इधर काम कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यहाँ पे लाहौर वाले स्टेशन में। इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज़ ऑल अबाउट ब्रॉडकास्टिंग। इस इंटर्नशिप में हम ट्रेनिंग देंगे ब्रॉडकास्टिंग की, और ब्रॉडकास्टिंग नॉट ओनली ऑन FM RJ नहीं, आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी जाते हैं आपने बोलना है। और बोलना क्या है, कैसे बोलना है, किस तरह से गुफ्तगू करनी है और किस तरह से इंगेजमेंट रखनी है और क्या तरीकाकार होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जी और आएंगे वो सिखाएंगे। इसके लिए हमने एक फॉर्म भी मेरा ख्याल है आज या कल अपलोड हो जाएगा जी हमारे फेसबुक FM 101 लाहौर के पेज पे, वहाँ से आप उसको

वो फिल करके उधर ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो इसका कोई एज का क्राइटेरिया रखा है 18 से 28 साल, और यहाँ यूनिवर्सिटी में इनरोल होना चाहिए। आप इनरोल स्टूडेंट हों या कम से कम आपने बैचलर किया हो। हेमन लगारी, इस्लाम वालेकुम। असलाम भाई, क्या हाल है? आपकी साइड पे सुना है कैसा मौसम है इस्लामाबाद में, कैसा है माजमीन? लाहौर में तो बड़ा बुरा हाल है हेमन भाई, बताएं आपकी साइड पे। और बाय द वे, आई एम यूजिंग बेल्ट। अच्छा, मैं बैठता हूँ मुझे याद आ जाता है। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है जी, डू ज्वाइन अस। जिन जिनको इंटरेस्ट है किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, हम इसके हवाले से, मैं UCP गया हूँ और इसके अलावा ये अभी लाहौर ग्रामर यूनिवर्सिटी भी गया हूँ, उसके अलावा एक और यहाँ पे हमारे पास कुपर रोड कॉलेज है, वहाँ पे भी गया हूँ। बड़ा अच्छा एक्सपोजर आया, अपन टू सी द कैट्स एंड स्टूडेंट्स, बड़े बड़े शार्प हैं, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बड़े खामोश भी हो जाते हैं। अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। तो इसी दौरान आज फिर एक पैनल डिस्कशन थी कासिम अली शाह साहब जो हैं उनकी फाउंडेशन में, कासिम अली शाह फाउंडेशन, वहाँ पे भी ये रेडियो डिजिटल मीडिया टीवी एंड इसके हवाले से, मैं थोड़ा थोड़ा सा ज़रा एक्टिव होने की कोशिश करते हैं, जाते हैं, शायद हमें भी लिफ्ट करा ले, कोई बातचीत हो जाए। हमरजाक साहब ने सलाम किया, वालेकुम असलाम, थैंक यू वेरी मच। आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग। आज का सवाल मेरा ये है, बेवफाई करने के तरीके बताने हैं आपने मुझे, और ये मैं सीखना चाहता हूँ कि बेवफाई करने के कितने तरीके हैं और किस किस तरह से बेवफाई की जा सकती है। पिछले दिनों मेरे आगे टिकटॉक से एक कॉन्टेंट आया, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, वहाँ पे खातून बैठी थी, वो लगी हुई है कि मर्द का दिल दुखाने के लिए, उसको भगाने के लिए बेवफाई करना ज़रूरी नहीं होता। उसके अलावा फिर आगे खातून ने एक तमहीद बांध दी ना, वो एक अलहदा चीज़ है। बट आई रियली वॉन्ट टू लर्न कि बेवफाई करने के क्या तरीके होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं। एक आप मतलब किसी और बंदे के साथ या बंदी के साथ लग जाना, या इसके अलावा भी कुछ और होता है, ये आज थोड़ा सा आप मुझे गाइड करेंगे। जासर सर, पंखे चल रहे हैं इधर, बड़ी बात है, यहाँ पे तो AC चल रहे हैं भाई, मौसम उनके आने से अच्छा हो जाता है, वैसे बहुत शदीद गर्म। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, कौन है वो महजबीन? अच्छा जी, आज डॉक्स वाइफ, मैंने भी ज्वाइन करना है, थैंक यू, ज़बरदस्त, ज्वाइन करें सर। मैं आपको कश्मीरी ज़ुबान सिखाता, मुझे भी सिखाएं ज़ुबान, मुझे सिखाएं। हेमन भाई थैंक यू वेरी मच, ठंडा यार, ब्लेस्ड है ना, चिल कर रहे, इंजॉय कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ लगाते हैं जी, और उसके बाद फिर वापस आते हैं, फिर आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आप लोग मुझे कॉल्स करेंगे 042-111-000-101, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अब अगर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ आ रही है, मेरे तमाम सुनने वालों से गुजारिश ये है, अगर आपके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं, कोई मसला नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने SMS कर देना मुझे, लेट मी नो यू गाइस आर लिसनिंग, आप मुझे सुन रहे हैं। तो आपने अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है, और इसको भेज देना है 4471 पर, और ये मेरे तक पैगाम आ जाएगा। इसके अलावा फेसबुक पे आप मेरी लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन कर सकते हैं, RJ DOX, वहाँ पे मेरी लाइव स्ट्रीम पे भी आके कमेंट्स करें, भरमार कर दें कमेंट्स की। ऐसा नली आए हैं, इस्लाम सर क्या हाल है, वालेकुम सलाम। तो आज मेरा बड़ा मासूमाना सा सवाल है, मुझे बेवफाई के तरीके सिखा दें प्लीज़, किस तरह से की जाती है। अमन ये नहीं है कि आप इर्द गिर्द के तजर्बात या तहरीरें उठाएं, कोई थोड़ा सा सोचें, अपने अंदर झांकें, मुझे थोड़ा सा गाइड करें इस पर। अब मैं यहां पे लगाता हूं आपके लिए गाना, सर मेरा ख्याल है आपको पसंद आएगा, ना आए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नए अंदाज में, नए टेम्पो में, और आई होप यू गाइस गोना लाइक इट, मुझे तो बड़ा मजा आया, क्योंकि बात चल निकली है वफा की, और वफा से फिर ख्याल यार ना आए मुमकिन नहीं है।
ख्याल यार के आते ही निगाह भर ना आए मुमकिन नहीं है। Here we go, where it is.

सॉरी जी, मैं ढूंढने में टाइम लगा एक्चुअली, थोड़ा सा ज़रा मज़ेदार है ना चीज़ मेरी पसंद की, मैं ज़रा ढूंढ रहा था वही वाला वर्जन लगाऊँ मैं जो मैं चाह रहा हूँ, तो आपने जाना नहीं है। आई वॉन्ट यू टू एंजॉय दिस विद मी, बिल्कुल नए अंदाज में एक कंपोजिशन है। बहुत सुना आपने, पिछले दिनों बहुत चला। मुझे तो लगता है इसमें भी कहीं ना कहीं बेवफाई का गिला है। उनके अंदाजे करम उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, जिंदगी गुजरी मगर दर्द ना जाना दिल का। वो जमाना दिल का, हा दिल लगी दिल की लगी बन के मिटा देती है, रोग दुश्मन को भी यार अपना लगाना दिल का। वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का।

0: उनकी महफिल में नसीर, उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। क्या बात, हाय हाय हाय हाय। वक्त हो चुका है 11:02 और FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और आज है जी 20 मई 2026 का सन है और आपका मेरा साथ है 12 बजे तक। और कल का प्रोग्राम तो ऑफ कोर्स हम करेंगे जुमेरात का, जो अब हमने नया सेगमेंट स्टार्ट किया, इट इज़ अबाउट कलर्स इन साइकोलॉजी ऑफ कलर्स, और किस कलर का किसके साथ मैच बनता है। एंड ऑफ कोर्स दो सवाल और उन पे फिर ₹1000 का हम वो आपको लोड भी देते हैं। एंड दैट इज़ अ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बाय वेलवीरा स्किन केयर। एनीवेज आई एम आस्किंग यू के बेवफाई के तरीके आपने मुझे बताना है। नॉर्मली तो इसके बारे में यही समझा जाता है कि बेवफाई किसी और को चुन लेना, बेवफाई किसी और को चुन लेना। फलसफा पता क्या कहता है इसके बारे में? फलसफा कहता है कि बेवफाई किसी और को चुन लेना ही नहीं होता, किसी के जज्बात को हल्का समझ लेना भी बेवफाई समझा जाता है। और अक्सर बेवफाई किसी के साथ झूठ बोलना नहीं होता, किसी को अधूरा और आधा सच बताना भी बेवफाई होता है। आजकल खैर इसके बहुत सारे तौर तरीके हैं, मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज बदल चुकी हैं बेवफाई के हवाले से। बेवफाई ने न जाने कौन कौन से रंग इख्तियार कर लिए हुए हैं। बेवफाई कहाँ से चली और कहाँ पे आ गई, इस पर मैंने एक दफ़ा किया भी था। गोस्टिंग भी होता है, फिर वो गोस्टिंग के अलावा ब्रेड क्रम्बिंग जिसे कहते हैं, गोस्टिंग होता है कि आप एकदम अचानक से गायब हो गए, उसे भी बेवफाई कंसिडर किया जाता है। बातचीत चली गायब हो गए, और ये बड़ा पुराना चला आ रहा है। टर्मिनोलॉजीज तो अब आके इवॉल्व होती रहती हैं ना जी, इससे पहले का ये मामला चला आ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके दोस्त भी होते हैं। लाजमी नहीं है बेवफाई आपके साथ आपके कोई जिधर लव अफेयर है, आपके दोस्त भी बेवफाइयाँ कर जाते हैं, आपके बहुत सारे रिश्तेदार भी बेवफाइयाँ कर जाते हैं। तो बेवफाई होती है, गोस्टिंग भी कर देते हैं। बाज़ औक़ात होता ही है जब आप किसी से मिलते हैं तो वो कहता है हाँ भाई बड़ा अरसा हो गया यार तुमने फ़ोन ही नहीं किया। तो मेरे जहन में ऐसा उसी वक्त एक चीज़ जहन में ये आती है कि भाईजान जब मैं नहीं कीता तुसी भी नहीं कीता। सो लेकिन फिर बाद में सोचता हूँ अच्छा चलो इसने नहीं किया मैं कर लेता। सो आई एम टेलिंग यू जासर मुझे नहीं पता यार, अभी मैं देखता हूँ इधर तो नहीं, इस जेब में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। मेरी किसी जेब में नहीं है। फिजा कहाँ है? आई हैव नो आइडिया। आसमा कौसर थैंक यू वेरी मच। मदर नवाज साहब थैंक यू वेरी मच, आपने मुल्तान से ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह मलखेल है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जी। और माजबीन कहती हैं कुछ कुछ तो हम सभी बेवफा हैं, किसी के महबूब हैं किसी के साथ बेवफाई है। हाय हाय, ये उसी सूरत में है जब आप अगले को बताते नहीं हैं। और वही टर्मिनोलॉजी आज ब्रेड क्रम्बिंग होती है ना जी, आप मतलब छोड़ते भी नहीं हैं और अपनाते भी नहीं हैं, इस तरह करके आप टेंशन भी दिए रखते हैं और कि अगला बंदा जुड़ा रहे और जान भी नहीं देंदे। और फिर उसके अलावा कभी कभी आप रज के टेंशन दे देते हैं ना, लव बॉम्बिंग कर देते हैं, अगला बंदा परेशान हो जाता है, फिर एकदम से गायब हो जाते हैं, बंदा लभदा ही रहता है गया किधर। फिर इमोशनल चीटिंग जो है, ये मैं आपसे मॉडर्न टर्मिनोलॉजी शेयर कर रहा हूँ। फिर इसके अलावा आपने इमोशनल चीटिंग है वो भी चल रही होती है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आज के दौर में चल रही हैं, लेकिन ये बड़ा पुराना मामला चला आ रहा है। बट आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि आपकी नज़र में बेवफाई क्या है, क्या महज फ़कत किसी और को चुन लेना महज वो बेवफाई है, और बेवफाई के तरीके क्या हैं। यही तरीके हैं वैसे, लेकिन इनमें मैं तो वो बातें कर रहा हूँ ना जो चंद एक मुझे पता है, मैं वो सीखना चाहता हूँ जो मुझे नहीं पता। बेवफाई के कौन कौन से तरीके हैं और किस किस तरह से की जाती है। एक साहब ने मुझे मैसेज किया हुआ 4471 पे कहते हैं दानियाल हैं। इस्लाम सर, वालेकुम अस्सलाम सर, मैं दानियाल हूँ, मैं आपको कराची से सुन रहा हूँ बहुत दूर से, मेरे लिए कोई पोइट्री सुना दे। अभी मैंने पूरी गज़ल लगाई थी बड़े फिट करके अंदाज में, ना अच्छे से अंदाज में। असद शेराज फैसलाबाद से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इग्नोर करना भी सर एक बेवफाई है। इग्नोर करना भी मतलब अगर मैं किसी से बेवफाई करना चाहता हूँ, मैं उसको इग्नोर करना शुरू कर दूँ, मेरे पे टाइटल भी नहीं आएगा कि बेवफा हो गया, मैं बहाने भी मार लूँगा और मैं निकल नुगल भी जाऊँगा। यार बड़ा अच्छा ट्रिक बताया। मेहर ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेहर। अब्दुल नूर हाशमी साहब रिवाज गार्डन से आदाब तस्लीम जी। अमल दारा उसे कहना यार ताड़ा वो कौन है जिसे आप उसे कहती रहती हैं, कौन है मुझे पहले दिखाएं मैं फिर उसे कहूँगा। उसे कहना देखते थे ख्वाब कभी जुदा ना होंगे हम से, हम तुम से हम, मगर मिली मोहब्बत तुम से क्या जुदा हो गए। हाय हाय इतरत है लालियां से सुन रही हैं हमको बेवफाई करने के लिए, नए लोगों का होना ज़रूरी होता है, जब एक नया शख्स मिल जाता है बेवफाई खुद ही हो जाती है। तो नया शख्स जब मिलता है बेवफाई तब होती है या ख्याल के आ जाने से ही बेवफाई हो जाती है। मेरे उस्ताद मोहतरम जो है ना मोहब्बत पे जब कभी बैठ के बताया करते थे ना, हमसे बात करते थे मोहब्बत के बारे में, तो वो हमें एक चीज़ समझाया करते थे। वो कहा करते थे बेवफाई और इश्क में बेवफाई ये नहीं कि तुम किसी और के साथ उठो और चले जाओ, इश्क में बेवफाई ये है कि तुम्हें किसी और का ख्याल भी गुजर गया तो तुम बेवफा ठहरे। ये तो वो कहते थे, आप क्या कहते हैं आप मुझे बताइए। कॉल कीजिए 04-2111-0101। महज देखने में बड़ा आम सा सतही सा मौजू है लेकिन यकीन जाने हर जगह यही मामला चलते हैं। मेरा कारोबार में लॉस हो गया क्यों, ओ यार मेरा पार्टनर ठीक नहीं था, उसने मेरे साथ दगा कर दिया। दगा, ओके दगा हो गया, मेरी लाइफ में सुकून नहीं है क्योंकि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता, मैं इंस्टीट्यूट में अकेली फिरती हूँ क्योंकि मुझे ट्रस्ट इश्यूज हैं। ट्रस्ट इश्यूज क्यों हैं, क्योंकि मैं कोई बात किसी से शेयर करती हूँ तो बात उस तक नहीं रहती, आगे निकल जाती है। सागर खत्री पाजी वेलकम, बरनाला पंजाब इंडिया पाजी, कैसे हो पाजी, ठीक ठाक हो, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। मेरे जिन्ने भाई ने जी इंडिया तो सुन रहे ने, बड़ी मेहरबानी। मेरा भाई एक मुझे श्रीनगर से सुन रहा है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी मुझे बताइए क्योंकि दुनिया तो गोल है ना जी, और फंडामेंटल जो होते हैं ना जी थॉट्स वो एक जैसे, फीलिंग्स एक जैसी होती हैं। आप दुनिया के किसी खित्ते में, उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, जज्बात जो होते हैं ना जी, जज्बात की उम्र नहीं हुआ करती, जज्बात एक जैसे होते हैं। सो आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि बेवफाई करने के तरीके क्या हैं। मैं बहुत कुछ होता है। बिनते खतीजा ने भी ज्वाइन किया था, सलाम किया था, वालेकुम अस्सलाम जी। बिनते सिद्दीक आई हैं, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, बहुत सारी दुआएं दी। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी बड़ी मेहरबानी पाजी, सागर पाजी बड़ी मेहरबानी, ताड़ी मोहब्बत है जी, ताड़े आस्ते बहुत सारा प्यार दुआ, आबाद रहो। तो आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि बेवफाई कैसे कैसे होती है। मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज तो बहुत सारी हैं, ये बहुत देर से चली आती हैं ना। आपके पास इस दुनिया में इस तरह के लोग भी होते हैं जो आपको मिलेंगे तो आपको अपना होने का एहसास ऐसे देंगे जैसे सदियों से आप उसे जानते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद जब आप मिलेंगे तो हैरान होंगे, क्या हम एक दूसरे को जानते भी थे, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। शाहजी काफ़ी और आएगी, सो टेल मी, आई एम गोना टेक द फर्स्ट कॉल देन उसके बाद कुछ प्ले करते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम,
1: सलमा बात कर रही हूँ।
0: अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक हैं, मिजाज अच्छे हैं,
1: बिल्कुल फर्स्ट क्लास।
0: सुनाइए मैडम कैसे चल रहे हैं मामला।
1: मामला बिल्कुल ठीक चल रहे हैं।
0: जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया,
1: ठीक ठाक। लाहौर का मौसम है,
0: मैं कह रहा हूँ ऐसा ठीक ठाक है, टका के जो है ना स्वेटर हो रही है। आज मैं मुझे आज एक्चुअली जाना था उधर पैनल डिस्कशन के लिए, तो सुबह सुबह मुझे उठना पड़ा, उसके लिए रेडी होना पड़ा। तो जो फिर उसके बाद चाल सो चाली है, हम इधर इंटर्नशिप पे भी थोड़ा सा काम कर रहे हैं, उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला ना सुबह से अभी तक कंटिन्यूअसली। बाहर भी आना जाना पड़ा यकीन करें, और उससे फिर मुझे पता चला, फिर मुझे यार बहुत गर्मी है भाई, लग पता गया पंजाबी कही था। हाँ जी जी मैडम, क्या गाइड करेंगी हमें?
1: अच्छा
0: आप?
1: मैं गाइड ये करूंगी कि आपने एक शेर सुना हुआ ना, हम बेवफा हर किस न थे पर हम वफा हम करना थे।
0: हाय अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
1: हम बेवफा नहीं हर किस न थे पर हम वफा करना थे। हां हां, तो दिस इज आल्सो फॉर्म ऑफ बेवफाई, कि तुम वफा कर भी, जो तुम वफा नहीं कर सकते हो तो और बेवफाई क्यों?
0: बिल्कुल ठीक है। अब इसके रीजंस क्या हैं? व्हाट यू थिंक? ये क्लेम होता है, ये एक बहुत बड़ा क्लेम है। आपने ये जो चीज अभी हाईलाइट की है, इट इज अ वेरी बिग क्लेम। और आई वाज राइटिंग अ नॉवल, मैं एक नॉवल लिख रहा था जिसके मिड में पहुंच के मैंने छोड़ दिया लिखना, फॉर सम रीजन मैं नहीं कर पाया। और मेरे वालिद साहब का क्योंकि उसी दौरान इंतकाल हो गया, तो फिर मेरे से नहीं हुआ। जहाँ पे पहुँच के हाँ, वो फिर मैं नहीं कर पाया, मैं लिख भी नहीं पाया। उसके बाद से वो पढ़ने की मेरी तरतीब भी नहीं बनी, ना लिखने की। वो अफसाने भी कभी थोड़े बहुत लिखता था, वो भी छोड़ दिए। एक दो मैंने पब्लिश करवाया, फिर मैं आया छड्डो जी। तो उसमें भी मैं एक नहज पे पहुंचा था, एक डिस्कशन करते हुए। उसमें तीन दो करेक्टर हैं, एक यहाँ से निकलता है लाहौर से ट्रेवल करता हुआ, रास्ते में एक दोस्त को पिक करता, बातें करते करते वफा बेवफाई पे ठहरती हैं। उसमें वो पहला करेक्टर जो है मेन करेक्टर, वो क्वेश्चन करता है अपने दोस्त से कि मजबूरियां और ये बेवफाई के आपके पास बहुत सारी बेड़ियां हैं, ठीक है एक्सेप्ट किया, बट जो लोग ऐसे रिश्तों में आके अपना सब कुछ हार देते हैं, अपनी जान तक वार देते हैं, उन्हें फिर किस कैटेगरी में आप रखते हैं? इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन?
1: देखिए ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ
0: जी।
1: जो कोई कैटेगरी में आके मतलब अब एक इश्क है, एक मोहब्बत है
0: जी,
1: और एक इंसान अपने आप को उस इश्क में गर्क कर लेता है
0: जी,
1: तो अगला तो आपको नहीं कह रहा ना,
0: बिल्कुल
1: nobody is asking
0: of course।
1: और कई दफा किसी को पता भी नहीं होता, लोग उसे मोहब्बत कर रहे होते हैं,
0: ऐसे ही है जी।
1: तो उसको आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भी वो इतनी ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं और वो फना फेल हो रहा है और दूसरा बेवफाई कर रहा है।
0: बिल्कुल सही है।
1: तो बेवफाई तब होती है जब इक्वल लेवल पे दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है और इक्वल लेवल पे तुम्हारी चाहत होती है, मगर तुम एक आदमी बैकआउट कर जाता है डिफरेंट रीजंस की वजह से।
0: बहुत अच्छी बात की, मतलब बेवफाई तब होगी जब दोनों ही एक लेवल पे आएंगे, उसके बाद एक पीछे हटेगा
1: जी।
0: जब तक एक आपने फ्रीक्वेंसी या वाइब मैच ही नहीं हुई, तब तक बेवफाई हो ही नहीं सकती,
1: बिल्कुल नहीं हो सकती।
0: वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा नुक्ता दिया आपने, तो बहुत ही जबरदस्त फलसफाना किस्म का एक जो है ना दरवाजा खोल दिया।
1: तो बस मेरी तो यही थिंकिंग है।
0: बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आपने एक नुक्ता दिया, थैंक यू वेरी मच बेटा। थैंक यू अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सागर पाजी गर्मा गर्म हाँ, गर्मी को गर्मी मारे, गर्म दूध पी के सो जाएंगे नीम गर्म। मैडम सलमा की कॉल थी और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा बेवफाई तो तब होगी जब पहले एक लेवल पे आप आके मैच करते हैं एक दूसरे से, वफा का कोई ना कोई एक पैरामीटर सेट करके दोनों उस पर पहले आके इक्वली स्टैंड करें, फिर उसके बाद एक पीछे हटे। अच्छा है, बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। एनीवेज जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, वो मुझे एसएमएस कर सकते हैं अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है आपने, और उसके बाद आपने 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और अपना पैगाम लिखना है और इसको भेज देना 4471 पर। और इसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0422111001। एंड हेमून भाई, बिल्कुल आप लोगों के मैसेजेस में पढ़ता हूँ जी, और मेरी इसके अलावा लाइव स्ट्रीम है, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, rj.docs लिखेंगे तो लाइव स्ट्रीम मिल जाएगी, डू हिट में विद योर कमेंट्स वहाँ पे आके। एंड इसके अलावा मेरे आप फेसबुक पे स्टैटिक पोस्ट है, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, FM 101 लाहौर एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान, दोनों जगह पे आप आके कमेंट कर सकते हैं, आपको मेरी वहाँ पे भी पोस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे एक गाना लगाते हैं, एक गज़ल सुनाते हैं, आरजे मोहसिन अली, वालेकुम अस्सलाम, आई एम परफेक्टली फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दी, हमको मिली उसकी सजा हम जो गुनाह कर ना सके।
2: तेरी उम्मीद तेरा
0: दिस इज फॉर यू,
2: इंतजार जब से
0: अभी अलाप चेक करना आपने,
2: नशब को दिन से शिकायत,
0: फैज अहमद फैज, गजल है इंतजार, अलाप चेक करना आपने, फील इट।

तुम आए हो ना, शबे इंतजार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, जुनू में जितनी भी गुजरी बेकार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। हेलो जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:24, आज 20 मई 2026 के सैन एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से मैं हूँ आज डॉक्स। प्रोग्राम है नाइट थेरापी, जिसमें आपका मेरा साथ होता है जी बुध और जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। और अभी मेरा साथ आपके साथ खैर थोड़ा लंबा चलेगा, आज के दिन मैं लिबर्टी ले लेता हूँ। और मेरा बड़ा अच्छा सा भाई है, उसे कह लूँगा रहमान को, तो थोड़ा सा आगे कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन जिन लोगों ने ज्वाइन किया। एंड द क्वेश्चन सिंपल, ज़ेबा सिद्दीकी, आई एम फ्रॉम लाहौर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। क्वेश्चन ये है, बेवफाई के तरीके आपने मुझे बताना है, गैर संजीदा अंदाज में संजीदा सी बातें कर लेनी चाहिए। आजकल और भी एक बड़ा जुमला चल रहा होता है, वैसे आजकल तो नहीं है, बड़ा पुराना जुमला है, ये भी चलते हैं इस तरह के बहुत सारे जुमले। आई नीड स्पेस, बहुत सारा जुमला चलता है। और अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल बट रफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आई एम रियली वेरी सॉरी, आपका मैंने मैसेज पढ़ा। आई एम अ टेलर, आपका शो सुन रहा हूं, तमाम लिसनर को सलाम, आपका मैसेज बार बार आया, मैंने पढ़ने में ताखीर की, उसके लिए मैं माजत का हूँ। हाले नूर ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जी। एंड इसके अलावा हेमून लगारी, आपको मैंने बता दिया सिंगर, दैट वॉज माई सीक्रेट, मैंने आउट कर दिया। अच्छा, जो मैं बात कर रहा था, आजकल बड़ा चल रहा होता है जुमला, I need space। यार तुम, मैं अगर स्पेस चाहिए तो नासा में जाओ ना यार, why you are asking me for it? नासा में जाओ स्पेस लेने के लिए, तुम मेरे पास आ गए।

और मॉडर्न किस्म का आजकल का जो लव चल रहा है ना जी, क्योंकि सोशल मीडिया ने एक्सेस बहुत ज्यादा तेज कर दिया। इसमें सबसे बड़ा मेरा ख्याल है लव स्टोरी और लव थीम जितने भी चल रहे होते हैं, इसमें सबसे बड़ा स्कैम पता क्या है? तुम सबसे मुख्तलिफ हो यार, ये टोटली डिफरेंट। मैं भी हैरान हो रहा था, मतलब दिस इज नॉट न्यू यार, सारे ही मुख्तलिफ होते हैं। जैन अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारे खुदा की खिलकत ऐसी है कि आपके ये जो हाथों की लकीरें हैं ना, ये फिंगरप्रिंट इसीलिए लिए जाते हैं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं आपके किसी से मैच नहीं करेगा। तो जहां आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते तो वहां आप पूरे के पूरे कहां से मैच करेंगे? तो जब आपको कोई कहे डिफरेंट है तो प्राउडली कहा करें मैनू पता है, डोंट टेल मी, मुझे पहले ही पता है। वैसे आजकल फूड डिलीवरी वाले ना वो ज्यादा लॉयल हैं क्योंकि उनकी अपडेट अच्छी आ रही होती है। आप भी सरताज नीड स्पेस के चक्कर में ही तो न्यू एंट्री आती है ये चीज मेरे अजीज। सो टेल मी, बेवफाई के तरीके बताएं मुझे, क्या क्या होते हैं बेवफाई, किस किस तरह से की जाती है और क्या क्या तरीके होते हैं? आपने कभी किसी से बेवफाई की? आपके साथ किसी ने बेवफाई की तो किस तरह से करते हैं? बहरहाल यहाँ पे आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ माई लर्निंग आई वॉन्ट टू शेयर इट। बेवफाई का सबसे डेंजरस किस्म का तरीका पता कौन सा है? बेवफाई का सबसे डेंजरस तरीका वो है जहां बंदा जाता भी नहीं है और साथ रहता भी नहीं है। कुछ लोग इसी तरह के होते हैं ना, जो रिलेशनशिप खत्म भी नहीं करते लेकिन वो जो मोहब्बत होती है ना और वफा होती है उसको मार देते हैं। और वैसे भी आप हैं, मैं हूं, कोई भी इंसान है, वो ना किसी के धोखा देने से नहीं टूटता। जब हमारे अंदर की अपनी एक्सपेक्टेशंस एक सर्टन लेवल पे पहुंच जाती हैं वो हमें तोड़ देती हैं। आप अगर मुझे सुन रहे हैं जी, पहली दफा सुन रहे हैं, दिस इज आरजे डॉक्स और FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आपका मेरा साथ होता है बुध और जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। और अगर आपके पास पाकिस्तान के किसी भी कोने में है, आपके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, तो आप मुझे SMS कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू रीड सम मैसेजेस। आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, 101 लिखना है, स्पेस देनी है, 101 लिखना है, स्पेस दे के अपना नाम और पैगाम लिखना है, इसको भेज देना 4471 पर। और कुछ भी यार, कुछ भी जो दिल में आता बात करें। मेरा कैनवस बहुत बड़ा है, इग्नोर करें, मेरा मौजू पसंद नहीं आया, लिख के भेजें पसंद नहीं आया, और जो दिल में आता है बात करें, मेरा हाथ थामे ले चले, आई एम हियर फॉर यू। ये वो थॉट है जो मेरे माइंड में क्रॉस करता है उसे मैं यहाँ पे सवाल की शक्ल में ले आता हूँ। मैं टॉपिक नहीं रखता, मैं क्वेश्चन रखता हूँ जिस पर मैं चाहता हूँ आप लोगों से कुछ ना कुछ सीख लूँ, लर्न करूँ। तो आज मैं लर्न करना चाहता हूँ बेवफाई के तरीके क्या है। कोई एक डेंजरस सा तरीका, जैसे किसी ने कहा इग्नोर कर देना, किसी और का आ जाना, कुछ थोड़ी सी मैंने भी ऐड कर दिया, कुछ भी एनीथिंग यार, जस्ट से कुछ तो कहें। चलें जी, अभी मैं मैसेजेस को शामिल करता हूं, उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हां जी, ओके। मुल्तान से हुज़ैफ़ा भट्टी, शो बहुत अच्छा है, हम राही ड्रामे का OST चला दें। ओके सर, चलाएंगे ना जी, आज नहीं तो कल चला देंगे। माय नेम इज तितली, तितली उड़ी, कैसी हो तितली, लाहौर से सुन ली। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सारे जहाँ से उसको जो मुस्कुराना मुस्कुराना सीख ले, रोशनी है उसकी, सारे जहान सारा जहान है उसका, जो मुस्कुराना सीख ले, रोशनी है उसकी, जो शम्मा जलाना सीख ले, हर गली हर राह में मस्जिद है इकबाल पर खुदा है उसका, जो सर झुकाना सीख ले। वाह वाह वाह वाह, प्रोग्राम हमेशा की तरह कमाल, यू लुक लवली लवली। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी, आप मुझको एक आईना लगते हैं।
कौन सा वाला आईना? मुझे आईना से सिर्फ एक ही लतीफ़ा याद आता है, या मुझे एक मीर दाद की बात याद आती है, पर मैं आईने पे पहले वो लतीफ़ा सुना देता हूँ। अक्सर मैं यहाँ पे दोहराता रहता हूँ इस लतीफ़े का, मुझे बड़ा मज़ा आता है ना, कि वो एक शीशा था, उसके बारे में मशहूर था, जो भी इसके सामने झूठ बोले ना वो मर जाता है। तो नहीं अब मैं क्या छोड़े दवा करें, ये एमए टारगेट हो जाएगा ना, मैंने फिर कहेंगे रेसिस्ट है, ये है वो है इस तरह का। नहीं मैं नहीं करना चाहता। और आईने के बारे में मीरदाद की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मीरदाद किताबें, मीरदाद वन ऑफ माय फेवरेट बुक। मीरदाद सेड कि हर शख्स दूसरे का आईनादार हुआ करता है, जो तुम्हें दूसरे में बुराइयां, कमियां और अच्छाइयां नजर आती हैं, बेसिकली तुम्हारा अपना ही अक्स है जो तुम दूसरे में देखते हो। क्योंकि एक ही लम्हे में एक शख्स तुम्हें तो अच्छा लगता है, उसी लम्हे में वो शख्स किसी को बुरा लगता है, तो किस तरह से मुमकिन है एक ही शख्स एक ही लम्हे में अच्छा भी हो और बुरा भी हो? है ना सोचने की बात। अच्छा जी, तकवा साहब फ्रॉम चकवाल, सलाम स्वीटेस्ट। नहीं है, गलत मैसेज पढ़ रहा हूँ, माजरत के साथ। अच्छा, अब्दुल नूर हाशमी साहब का पढ़ लिया, इतरत का पढ़ लिया, दानियाल आपका पढ़ लिया, महर जी आपका पढ़ लिया। ओके, गुलाम मुस्तफ़ा सरगोदा से, सर आपका शो बहुत अच्छा है, हम बड़े शौक से सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा भाई। और जैनब हमें सुन रही हैं जी, सलाम भाई औसम शो। वालेकुम अस्सलाम जैनब, थैंक यू वेरी मच जी। इरफानुल्लाह सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं पाकिस्तान आर्मी से हूँ, आज़ाद कश्मीर बरनाला में इस वक्त छुट्टी पर हूँ। सर आपको दोनों हाथ उठा के सलाम है मेरा, आपकी वजह से सीना चौड़ा करके चलते हैं, यकीन करें। नवाल उसे मिलना ख़त्म कर देना, उसे लिफ्ट ना करवाएं, खरी खरी सुनाएं, उसे कहना हम बेवफा नहीं हैं, उसे मिलना ख़त्म कर देना, आप खुद ही कर दें, मुझे तो उसका नाम भी नहीं बताया आपने। उज़ैफ़ा कहते हैं पहली बार रिक्वेस्ट की है, लाजमी चलाना यार, ना शर्मिंदा करो ना मड़ा, तुम हमको शर्मिंदा कर रहे यार, अब हमको गाना ढूंढना पड़ेगा। शाह जी ये जहन में रखना है, हमराही का OST चलाना है जी हमने, बल्कि ढूंढ दें मुझे जो है ना, अगर मिल जाए हमराही OST का, हमराही ड्रामे का OST जी। ओके, सलाम मोहब्बत तस्लीम, मैं असमा, मैं आर्थोडॉक्स, कैसे हैं चांद साहब, हाय अल्लाह। मैं ठीक हूँ चंदा, जल्दी आ जाया करें। अच्छा आई एम सॉरी जी, बहुत इंतज़ार करवाते हैं, पूरा हफ्ता इंतज़ार की सूली पर लटका के रखते हैं, ताज्जुब की बात है अभी तक आप जिंदा हैं सूली पर लटक कर भी। आपकी खूबसूरत आवाज़ सुनने को मिलती है, बड़ी मेहरबानी है, आपका हुस्न समात है, बहुत बहुत बहुत अच्छा बोलते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहें। थैंक यू वेरी मच असमा जी, आपकी मोहब्बत है। अब्दुल नूर हाशमी साहब कहते हैं इससे पहले कि बेवफा हो जाए, क्यों ना दोस्त हम जुदा हो जाए। वाह वाह बहुत आला। असमा कहती हैं चांद अब तो मैं हर नमाज में दुआ करती हूँ आपकी नज़र उतारने वाली जल्दी आ जाए। हाय अल्लाह, मुझे दुपट्टा ला दो, शर्म आ रही है, चांद की शादी हो जाए, आमीन, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यारे हैं आप भी बहुत प्यारी हैं जी। शकील अहमद साहब हैं लाहौर से, डियर डॉग सलाम वालेकुम अस्सलाम, सलाम टू ऑल इंटरनेशनल मैच मेकर। इंटरनेशनल मैच मेकर, ओके। नासिर चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जी, आप सुनाएं आपके उधर कैसा मौसम है, पश्तो का गाना सुना दें यार। आज ना इरफान भाई, अच्छा मेरे फौजी भाई हैं, आपको मना नहीं कर सकता यार, चलो मड़ा हम तुम्हारे लिए चलाएगा, जरूर चलाएगा। यार अपना दानियाल भाई, अब हमारे फौजी भाई की भी रिक्वेस्ट आ गई यार, अब कंपटीशन पड़ गया, बुरा नहीं मनाना। अच्छा जी, मैच मेकर सर, आप लोकल लिफ्ट की बजाय जासिर से कहें कि भाभी इंपोर्ट करवा जासिर से कहें कि भाभी इंपोर्ट करवा लें, भाभी एक तो इंपोर्टेड, सेकंड कश्मीरी। आए हाय वल्ला वल्ला वल्ला या शेख वल्ला वल्ला, दिल खुश कर रहे हो हमारा।
सर जी अगर इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करने का तरीका बता दे सर जी, तेरी दिल लगी मेरे दिल को ठा करके लगी, हा हा सर जी। इंस्टाग्राम पे भी आपने सर्च करना RJ_DOX, वहाँ पे भी मेरा अकाउंट इसी नाम से है और आप मुझे कोई भी चीज़ें नहीं थैंक यू के ना आस्क में दी। सुनो सोनू फ्रॉम लाहौर भाई, वेदर अपडेट बता दें कोई लाहौर की, आप लाहौर में एंड स्टिल यू आर आस्किंग फॉर वेदर अपडेट। और लाहौर में इस वक्त मेरे पास मेरा मोबाइल कह रहा है 33 सेल्सियस चल रहा है जी। और एक और लास्ट मैसेज है मेरे पास, ये पढ़ लूँ 4471 का, फिर फेसबुक की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आई एम शाहिद सालार फ्रॉम साहिवाल। बेवफाई के लिए अपने महबूब को इतनी मोहब्बत करो कि उसे ब्रेकफास्ट करने से ज़्यादा आपके SMS का इंतज़ार हो। एक दिन SMS ना करे और नेक्स्ट डे को आप उसे बोले आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे भूल जाना, हमारा मिलना आग और पानी के मिलने जैसा है पाए। हुए हुए हुए हुए हुए, मतलब लव बॉम्बिंग टका के करें और उसके बाद अचानक से मैसेज करें, अच्छा यार फिर मैं चले हैं। मैं तो कहने लगा था आप कहीं ना कहीं ये लिखेंगे कि बेवफाई करने का तरीका क्या है, आप खुद बेवफा बना दें किसी को, आप इंतहा से ज़्यादा उसको मोहब्बत दें, इंतहा से ज़्यादा उसको प्यार करें, इतना प्यार करें कि उसकी अना मोहब्बत के आड़े आने लग जाए, फिर आपकी ही मोहब्बत के गरूर में आप से ही उलझ के आपको ही अपने हाथों से गवा दे। ये गुमा करते हुए कि शायद मैं हूं ही ऐसा या मैं हूं ही ऐसी कि मुझसे इतनी ही मोहब्बत की जाए, ये जानते ना जानते हुए कि वो करने वाला था, ये इंतहाए मोहब्बत उसकी थी जिसने तुम्हें इस मकाम पे पहुंचाया। हाय है ना, ऐसे भी होता, ऐसे ही होता। वक्त हो चुका है 11:38। ये मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। Is another number.

मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया।

0: रखा के बेवफाई के मुझे तरीके बताएं। हाय कल्बे मोमेंट डॉक्स भाई, आपने मैसेज रीड करें प्लीज। ओके सर, मैं अभी करता हूँ। फरा अफजाल आई हैं, अस्सलाम वालेकुम डॉक्सी, वालेकुम सलाम, ज़िलहज मुबारक हो आप सबको भी, तमाम सुनने वालों को ज़िलहज बहुत बहुत मुबारक हो जी। और अल्लाह इस ईद को, आने वाले अय्याम को आप सबके लिए, मेरे लिए बाईस मुसर्रत बनाए और आसानियां पैदा करे और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करे। अच्छा जी, मैसेजेस रीड करें या कॉल लें, क्या करें? बेवफाई के ऊपर एक बात अर्ज करूं फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं। बेवफाई पता क्या है? इन माई ओपिनियन बेवफाई वो खामोश कत्ल है जहां सबसे पहले एतमाद मरता है, बाकी चीजें बाद की बात है। एक कॉल लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम जी, डॉक्टर वेलकम बिस्मिल्लाह जी अब्रू।
0: वालेकुम
1: रहमत आयो, मैं उना रहमत बिस्मिल्लाह करा, मैं सबका गच्चा, मैं कुर्बान गच्चा छोड़े हो।
0: बड़ी मेहरबानी जी।
1: ओ उस्ताद मोहतरम, बड़ी देर इंतजार पे करने हैं, मैं क्या पता नहीं है जो उस्ताद और काल चासर जानी गुजर खान तू इश्तियाक मलक रेडियो एन टीवी पर कॉल पे बोल।
0: जी जी इश्तियाक साहब।
1: उस्ताद जी एक शेर,
0: बब्बर शेर सुना,
1: एडवांस ईद मुबारक जनाब पेश करता। तो पहला ये निकी जी नजम है, तो पहला जनाब साहब तो पहला मैं उस्ताद मोहतरम जेड़ा वे के जेड़ा उत्थां टॉपिक रखिया उसने बारे में आता के
0: जी
1: बेवफाओं से वफा ना मांगिए,
0: बेवफाओं
1: से वफा
0: ना मांगिए,
1: ना बोलो नाल
0: बेवफाओं से वफा ना मांगिए,
1: मांगिए उनके दर्द की दवा ना मांगिए।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय
1: हाय। बिस्मिल्लाह करो उस्ताद जी। उस्ताद जी एक नजम है निकी जी, पहले दो तरह नाम परसा बंदे इंतजार पे करने लेने बैठे हुए, एक खारिया तू मास्टर अब्दुल गफूर साहब जी बड़ी समाजी शख्सियत है, इस अलावा ये लव तू जनाब आए ने सुने शो भी जनाब सलीम बटी और तागे माड़ी की रानी है जनाब लाहौर तू रमशा बेटी आई है तो सलाम भी पेश कर रही। अगर मैं नजम पढ़ा नगा निकी जी नजम है उस्ताद, मैं शायद तक हो ना उस्ताद जी, पर चलो एक लिखी छोड़ी है तो मैं तो कबूल कर दो।
0: जी जी जी
1: बता ईद ते हो मसरूफ वंजे।
0: अच्छा
1: बता ईद ते हो मसरूफ वंजे, तैनू याद दसंदे पे आ।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: बता ईद ते हो मसरूफ वंजे, तैनू यार दसंदे पे आ। ताजी मैं तुसा की प्या आकड़ा।
0: अच्छा
1: है जी,
0: ठीक है।
1: अगे अगे सुनो जी, अगे वे जनाब के ए डाक सीद मुबारक कबूल करी, डाक सीद मुबारक कबूल करी, तेरी मेहनत करेंदे पे आ।
0: बड़ी मेहरबानी, खैर
1: डाक सीद मुबारक कबूल, डाक सीद मुबारक कबूल करी, तेरी मेहनत करेंदे पे हां। तू ईद मुबारक ईद ते देसे, तू ईद मुबारक ईद ते देसे, असा पहले देने पे आ।
0: वाह वाह, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, खैर
1: हूं। मैं किसे अलग रेडियो ना पे पता है कि 101 पर इंटरनेशनल शो विच मैं गाने भी गाना सिंगर भी, लेकिन मैं किसा की नजर नहीं भेजी बात है।
0: सर बड़ी
1: बड़े खुशकिस्मत इंसान हो क्योंकि दादा ने दगरी च नगरी च रहने हो, और उस्ताद जी मैं दाता दुआ की थी, मैं अरे दाता है भुखिया नगिया दाता है माड़िया चंगिया दा, मैं दुआ की थी या मौला या मैं दाता सरकार रेडियो एंड टीवी आर्टिस्ट और सब कुछ और मावन प्रोग्राम 88.4

0: 6 ਆ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗਸ਼ਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੈਂ
1: ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
0: ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਬੂਲ ਕਰ ਦੇ
1: ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
0: ਪਾਕਿਸਤਾਨ
1: ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ
0: ਮੁਸਲਾ ਖਵਾਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਦੇ ਜਾਗ
1: ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ओके जी इश्तियाक साहब जी बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं थैंक यू वेरी मच जी आपका शुक्रिया एंड लेट मी रीड सम मैसेजेस देन आई विल टेक कॉल्स और मैं बिल्कुल यहाँ पे 12:15 तकरीबन 12:20 तक आपके साथ हूँ तो अच्छा लाहौर पोस्ट से मैसेजेस रीड कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं स्ट्रीम वाले भी देखता हूँ इस्लामाबाद वाले भी देखता हूँ SMS भी हैं महानूर बलोचादी ने सलाम किया मैं ठीक हूँ आप बताइए आप खैरियत से हैं कल्ब मोमिन ने सलाम किया वालेकुम अस्सलाम किंग फजल ख़ान जी कोटा से सुन रहे हैं नज़ीर खोसो हैं जैन अली ने सलाम किया वालेकुम अस्सलाम आयशा शहजादी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है सर आपके मैं ठीक हूँ आपकी तबीयत कैसी है जुलेखा शहजादी लाहौर से बात कर रही हैं थैंक यू जुलेखा फॉर योर मैसेज आप कैसी हैं आप खैरियत से हैं आप ठीक हैं शाहिद खान इस्लामाबाद से हैं कहते हैं बेवफाई का बेहतरीन तरीका किसी को मुंह पर उसकी खूब तारीफ करें और करते जाएं जब काइट जब पतंग खूब ऊंचाई पर चली जाए और फिर नीचे से धागा काट दें बस फिर देखें उस पतंग का लोग क्या हाल करते हैं ओए होए होए होए होए होए होए बहुत गहरी बात कर दी आपने मतलब वही बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की मेरा ख्याल है आपकी और मेरी कहीं ना कहीं तार मैच हो गए कि उड़ा दें चढ़ा दें बेइंतहा मोहब्बत दें फिर अगला आपकी दी हुई मोहब्बत से खुशफहमियों में इस कदर मुब्तला हो कि फिर आपसे ही उलझ जाए और अपनी ही अना को आड़े लाकर आपकी वफा को ठुकराए सही कहा फरहान इकबाल हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब वालेकुम सलाम फरहान क्या हाल है बड़े दिनों के बाद आए आज डॉक्स वाइब आपका मैसेज उधर पढ़ लिया मरीना बिलाल हैं इस्लाम किया वालेकुम अस्सलाम नाइस शो थैंक यू वेरी मच कल्ब मोमिन मेरी तरफ से FM 101 सुनने वालों को सलाम आयशा की तरफ से जी बिनते सदीक सलाम वालेकुम अस्सलाम जी आज डॉक्स अल्लाह ब्लेस यू थैंक यू वेरी मच लिसनिंग यू फ्रॉम मुल्तान जी फरहान इकबाल थैंक यू वेरी मच आशिक खास खाली साहब हैं खास खली बड़ा मुश्किल सा नाम रखा हुआ आपने भाई नौरीन तौसीफ हैं अस्सलाम वालेकुम आज डॉक्स कैसे मिजाज है मैं ठीक हूँ काफ़ी दिनों के बाद आपके शो में शिरकत कर रही हूँ गुड शो लाजवाब इंतखाब नौरीन तौसीफ फ्रॉम फैसलाबाद थैंक यू वेरी मच अरबाब अली हैं मोहब्बत में महबूब की आंखों तक पहुँचना आसान नहीं होता वो आंखें हर किसी को नहीं अपनाती हर चेहरे को नहीं सजाती वो सिर्फ उसे जगा देती हैं जो अपने वजूद की सख्ती तोड़ दे जो अपनी अना को पीस कर सुरमे की मानिंद बारीक कर ले सुरमा कभी अपनी हस्ती पर गरूर नहीं करता वो पत्थर था मगर पिसा गया रोंदा गया अपनी असल सूरत खो बैठा तब जाकर किसी महबूब की आंख की जीनत बना हाय यार कितनी अच्छी बात की अरबाब आपने वेरी नाइस ओके कल्ब मोमिन आपसे पूछना था कि आपने लास्ट प्रोग्राम में आरजे के बारे में जिस ऑडिशन की बात की थी प्लीज़ रिपीट कर दें फॉर्म कहाँ से लेना है अच्छा अभी ये आप जो जो इंटरेस्टेड हैं FM 101 लाहौर की अभी यहाँ पे पोस्ट लगी है जिसको पिन कर दिया है मैंने और उसमें सारी डिटेल्स लिखी हैं और फॉर्म भी अवेलेबल होगा उस पर आप क्लिक करेंगे ऑटो जनरेटेड फॉर्म होगा उसको फिल करें वो हमारे पास पहुँच जाएगा और उसमें सारा क्राइटेरिया एन जी ईच एंड एवरी थिंग है जी 28 साल उम्र की हद है 18 साल है 18 साल से 28 के दरमियान होना चाहिए और जून की 16 गालिबन तारीख से शुरू होगा 2 महीने का प्रोग्राम है हफ्ते में 2 दिन इसके सेशन हुआ करेंगे इंटर्नशिप है जिसमें आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे ऑन माइक आपकी ट्रेनिंग होगी ऑफ माइक भी ट्रेनिंग होगी जमील खान साहब थैंक यू वेरी मच इसमें ज्वाइन कीजिए बहुत शुक्रिया और जस्ट लाहौर वाले कर सकते हैं यार कोई भी आ जाए आपने रहना मुझे तो कोई नहीं मसला आपको जुनून है आरजे बनने का बिल्कुल आइए फातिमा कोई भी कर सकता है वी हैव नो इशू कोई भी आ सकता है और ये हमने ब्रॉडकास्टिंग की यहाँ पे आपको ट्रेनिंग देनी है आप उसमें डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर बने जो दिल करता है आप बन जाए बस हमें याद रखना फिर आपने, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मलखेल, थैंक यू वेरी मच जी, आपका पैगाम मिला अरबाब, आपका बहुत शुक्रिया। बेवफाई अक्सर खामोशियों से शुरू होती है, नौरीन तौसीफ कहती हैं, जमील खान साहब ने पसंद किया, बहुत शुक्रिया जी। कहती हैं बेवफाई अक्सर खामोशियों से शुरू होती है, जहां वादे तो बाकी रहते हैं मगर एहसास मर जाता है। कुछ लोग लफ्ज़ों से नहीं रवैयों से बदल जाते हैं, और दिल को खबर तब होती है जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता। ये बड़ी आपने टेक्निकल बात की, जिस तरह मैडम सलमा ने की थी, आखिरी बात आपने की कि दिल को खबर तब होती है, ये वही है कि जाता नहीं है लेकिन मोहब्बत मार देता है। बहुत आला, बहुत आला। मुकम्मल दो ही दानों पे ये तस्बीह, ये मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना तो डोरी टूट जाती है। मुकर्रर वक्त होता है मोहब्बत की नमाजों का, अदा जिनकी निकल जाए कसा भी छूट जाती है। मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, उसे तकने से नीयत टूट जाती है। मोहब्बत दिल का सजदा है, जो है तौहीद पर कायम, नज़र के शिरक वालों से मोहब्बत रूठ जाती है। आहा, बहुत आला, बहुत आला जी, छा गए। ओके, थैंक यू वेरी मच। मलिक वसीम अब्बास साहब है जी, माशाल्लाह जी, आप सियालकोट से सुन रहे हैं, वफा लाजिम है या ज़रूरी है साहब? भला तुम बताओ फिर, क्या ये मोहब्बत है? अच्छा, बिनत सदीक, नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आँखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। हुए, हेलो हेलो, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम,
2: वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह,
1: माशाल्लाह, बड़े अरसे के बाद मैडम आपकी कॉल आई।
2: जी जी, सबसे पहले आप मुझे अपना सुनाएं, छोटू की सुनाएं, बड़ा हो गया माशाल्लाह।
1: कौन जी? ओ, भतीजा मेरा।
2: हाँ जी हाँ जी,
1: मेरे माशाल्लाह दो हो गए जी भतीजे अब तो।
2: माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर तो आपको डबल डबल मुबारक हो।
1: बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और दूसरी कॉल जी तो ताड़ी आनी है ना, मेनू लगता है उन्हें भी टुरन लग पैना है।
2: बस वो पता असर ऐसा हुआ ना
1: जी,
2: ईद के बाद ऐसी तबीयत बिगड़ी, तो मैं कह निकल लिए, मैं कह आज असद से फोन ही कर लूं, तो असद ये ना समझे बच्चा के ले रही मैडम तो निकल तो नहीं गई।
1: हाँ, मैं तो क्या मैडम निकल निकल गए ना। मैं कह मेनू पता भी नहीं लगा।
2: हाँ, ये भी गल सही है।
1: हाँ,
2: निकलना
1: निकलना तो सारे ने है, लेकिन एडी खामोशी नाल
2: नहीं, वो ही ना निकलना भी तो निकलना भी देखो फनी है।
1: अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी दे, क्या फरमाएंगी आज के दिन।
2: ये मैं बेवफाई तो औरत के हिस्से में ज्यादा,
1: औरत के हिस्से में।
2: हाँ, वो ऐसे कि एक ना, एक मुझे बात याद आ गई, तो हॉस्पिटल में थी वो अपनी बहन के पास थी, मैं तो दूसरे बेड में उसके घर में बैठी हुई थी, बड़ी प्यारी।
1: हाँ।
2: तो मैंने कहा कि आपके पास कोई भी नहीं आया, दो दिन हो गए। कहने लगी मेरी गल सुन बिशरा, मेरे घर से ही हुई ना, मेरे बंदे ने मैंने फोन किया, तो तू कुड़ी पैदा की ना, मैं नहीं अपनी माँ के घर सीधी जाई। हाय हाय, मुझे इतना दुख हुआ, मैं कह बेवफाई तुमने आज ही करती थी।
1: हाँ।
2: तो
1: बेवफाई,
2: तो मैंने ना वो बात याद आ गई मुझे, तो बेटा हो तो कहने लड्डुआ ने टोकरे पाल लो, ए बेटी हो तो कहने कुड़ी पैदा
1: देखो
2: निकला।
1: जबकि अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया कि ये रहमत है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जरूरी है कि उस हदीस कुदसी को समझा जाए, जहाँ पे कहा खालिक ने कि मेरे गजब पर मेरी रहमत गालिब आई।
2: जी,
1: जब खिलकत कायनात और ये सारे मामलात पर डिस्कशन हो रही है, जहाँ पे
2: वहाँ
1: पे खालिक ने कहा कि मेरे गजब पर यानी जाहो जलाल पर रहमत गालिब आई, रहमत है, और बच्चियाँ जो हैं वो रहमत होती हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और इस बात में ना मैंने अपनी अम्मी को भी देखा, जब उनकी सात बेटियां थी ना, तो उनकी हर तरफ से ना मेरी अम्मी की, बस आप समझ लें कि सब ऐसे देखते थे, बेवफाई तो बड़ी दूर की बात है, अदा ही कसूर है, अदा ही कसूर है। अच्छा, एक और मजे की बात है
1: जी।
2: मैं तो हसीने ले जाती थी, उठे रंधे वाले रिश्ते बड़े आंदे।
1: अच्छा,
2: इतों तक के मेरे नहीं रंधे रहे, मेरे नहीं भी लंडे ही आया। मैं अपने अबे नु कहा, मैं कहा अब्बा रंडिया नहीं आंदे, लंडे ही आ जाए, बंदा बड़े बड़े कोट पा के सर्दियां अच्छियां गुजारे। कहने का मकसद क्या हंस के जिंदगी गुजारनी।
1: चलें जबरदस्त हो गया। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल की इतने अरसे के बाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी।
2: अल्लाह हाफिज़।
1: अच्छा आज डॉग्स कह रही हैं एक दो दफा और मच्छर मारे, मैं कह रहे हैं मच्छर ने वड़ लिया है ना जी। अब मेरे फैंस हैं, बहुत फैन है मच्छर, इतने फैन है अकीदत में, कभी मेरे हाथों पे काटते हैं, कभी पैरों पे काटते हैं, और जिसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत चढ़ जाती है वो गालों पे आके भी चुम्मियां लेने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा शर्म है आई कोई नहीं बच्चों। शकील अहमद लाहौर से जी, डियर डॉग्स ऑन बिहाफ ऑफ टॉपिक, ओके टॉपिक के बिहाफ पे बात कर रहे हैं बेवफाई, गली के हर मोड़ पर मिलते हैं हम दर्द हजारों, शायद कि मेरी बस्ती में अदाकार बहुत हैं। हाय बहुत अच्छा। सलाम सर। वालेकुम सलाम अलम, हैदराबाद से हमेशा की तरह बेस्ट एंड बेस्ट गुफ्तगू। थैंक यू वेरी मच अलम, बहुत शुक्रिया। ओके मैंने आपको बता दिया इंस्टाग्राम पे कैसे अप्रोच करते हैं जी, मुझे बहुत शुक्रिया जी। और गदाब से दोस्त अली बुरफत, सलाम अदा, गुड शो अदा, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जमील खान आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं सर, थैंक यू वेरी मच जी। तितली तितली उड़ी तितली उड़ी, ठीक है आपका मैसेज पढ़ लिया मैंने। महानूर लोधरा से, सर शो बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। तितली आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया और पहले भी ऑन एयर पढ़ा, और प्लीज़ चला दें ज़रूर, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, पहले ये बताएं कौन है। मुकद्दस कहूटा से, बेवफाई के इल्ज़ाम में दे आए हैं दिले नादा, कुछ जख्म होते हैं जो बेवफाई का नाम देकर खुरचने पड़ते हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक है जी, मतलब आप मजबूरी की वजह से बेवफा हुआ है। अतीक है लाहौर से, भाई वेदर अपडेट बता दी मैंने। उस्मान ख्वाजा साहब सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अनायतुल्ला, कमाल शो है डॉग सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे फौजी भाई ने एक रिक्वेस्ट की थी, उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये गाना चलाऊंगा और उसके बाद फिर वापस आते हैं, डोंट गो एनीवेयर। और गुफ्तगू का सिलसिला आपसे जारी है, मौजू मैंने अभी कंक्लूड नहीं किया, बेवफाई पे बात जारी है। अच्छा हाल नूर, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, यूं बीच राह मुझे छोड़ने वाले। अली भट्टी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। दिस इज आज डॉक्स, मौजू आपके साथ जो रखा है मैंने बेवफाई के तरीके, किसी ने मुझसे कहा बेवफाई करनी क्यों है, ये तो बाद में बताऊंगा मैं।

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 12:07 और आज 20 तारीख 21 में बदल चुकी है और मई का महीना 2026 का सन है। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आपसे ने नाइट थेरापी विद आज डॉक्स मेरे सामने बड़ा मज़ेदार मैसेज है। माजवीन बड़ी अच्छी है, हमारे लिसनर हैं, कहती हैं आपकी बेवफाई आपकी आंखों से छलक रही है, है ना? शुक्र करे डुल नानी शुरू हो गई। फिर मेरे से भी नहीं सामी जाती, मैं बड़ी मुश्किल से जो है ना बदल के डायरेक्शन अब और तरह से गुफ्तगु करना शुरू कर दी है। कैसर फैसल ने सलाम किया, कैसे आप? मैं ठीक हूं सर। आपने जनवत ले लिया? मैं समझा नहीं, क्या ले लिया? अच्छा, फातिमा कहती है बेवफा लोग महबूब को ज्यादा वक्त देना शुरू कर देते हैं, बेवफा लोग मुखलिस होते हैं, अपनी अना में लोगों का दिल खरीद लेते हैं, कभी कभी खुद से बेवफाई करते हैं, दिल में खुद को कैद कर लेते हैं। ना दिस इज अनदर डायरेक्शन, एक्चुअली मैं चाह रहा था कोई इस पे भी आए। बेवफाई बाहर की तरफ नहीं होती, बेवफाई अंदर की तरफ भी की जाती है। बेवफाई की बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं। हम नॉर्मली बेवफाई, रहमान भाई आज मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा बेवफाई के तरीके बताएं, तो मैं पूछता रहा, नॉर्मली बाहर बाहर चलती रही बात। अभी एक मैसेज आया, उसने वो डायरेक्शन दी ना, बेवफाई देखें बाहर दो तरह की होती है ना, हर चीज़ के कम अज़ कम दो पहलू हर चीज़ के, और इसी तरह दो डायरेक्शंस हर चीज़ की। एक है बेवफाई बाहर की तरफ, बेवफाई अंदर की तरफ। अब बेवफाई जो अंदर की तरफ जाती है, मैंने ये चाहा, मेरे अंदर से सदा आई, मैंने खुद इरादा किया। क्या मैं रोज कहता हूं कि भूल जाऊं उसे, रोज ये बात भूल जाता, मैंने खुद से बेवफाई कर ली। मैंने कहा कि आज के बाद तेरे पे एतबार नहीं करूंगा, मैंने खुद से बेवफाई कर ली, कोई नहीं फिर एक और मौका दिया तुझे। मैंने कहा कि आज के बाद तेरे मुंह से निकलने वाले हर झूठ को तेरे मुंह के ऊपर मारूंगा, फिर तूने झूठ बोला, फिर मेरे अंदर से सदा आई, फिर मैंने अपनी जात से बेवफाई की, मुस्कुरा के मैंने फिर तुझ पे यकीन किया। क्या ख्याल है आपका? आप माइक पे आए ना हजूर मोहतरम, मेरा प्यारा भाई, मेरा बीमार भाई जी।
1: अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे मिजाज है आप सबके?
0: यू गॉट अ सेक्सी वॉइस, बड़ी फिट किस्म की वॉइस हो रही है।
1: क्या हाल चाल है डॉक्स, खैरियत से आप?
0: ओए होए होए, मैं फिदाई हुए जा रही हूँ।
1: ओह माय गॉड,
0: हाँ जी, क्या कह
1: वैसे ये मेरे लिए ना काफी सूटेबल, अगर आप फिदा हो जाए। ये जो आपने बेवफाई का दूसरा एक रास्ता निकाला है।
0: हाँ ना, नहीं है,
1: नहीं है।
0: कौन है जो नहीं करता अपने आप से
1: बेवफाई? आपने जो ये अपने अंदर की तरफ लोगों की झलक मोड़ने की कोशिश की है, उनकी नज़रें अपनी तरफ दोबारा से करने की कोशिश की है, हम हमेशा दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं, हम हमेशा ही कह रहे होते हैं हो जाती है गलती, मर्दों से हो जाती है गलती। अभी मैं अपने एक कुलीग आरजे, किसी भी रेडियो पर हूँ लेकिन होते वो कुलीग ही हैं आपस में ना, तो एक आरजे के बारे में सुन रहा था, वो कुछ यही कह रहे थे कि इंग्लैंड में मेरे एक दोस्त ने ना अपनी वाइफ के साथ ना बेवफाई कर दी, और फिर उसके बाद मुझे बुलाया गया क्योंकि मैं उनका काफ़ी करीबी था, गहरा ताल्लुक था मेरा उनके साथ। अच्छा, मुझे बुलाया गया और किसी तरीके से घर को बचाने की कोशिश मैंने करने की कोशिश की, तो मैंने हर लिहाज से कोशिश की, लेकिन औरत ने ये कहा कि अगर ये तमाम चीज़ें मैं करती तो क्या होता। उसने बहरहाल कुलीग आरजे ने कुछ अपनी तरफ से ना कुछ एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश की कि मर्द जो है ना वो आपके साथ रह रहा है, आपको सारा असल हक उसने आपको दिया है, आपको वाइफ बनाया है, आपके साथ उसने अपने बच्चे पैदा किए हैं, आपको वो घर दे रहा है, आपके साथ प्रॉपर्टी शेयर कर रहा है, आपके साथ पूरा घर शेयर कर रहा है। वो बेवफाई दरअसल आपके साथ नहीं कर रहा, वो उस औरत के साथ कर रहा है जिसको ये ख्वाब दिखा रहा है। कि जी मैं तुम्हारा ही हूँ, मेरी वाइफ इस तरह से करती है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैंने उसकी जब ये बातें सुनी ना, मैंने कहा अच्छा
0: यार पकार जे निकले।
1: अच्छा बहरहाल औरतें जो होती हैं ना वो बड़ी मासूम होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं, लेकिन उनका दिल भी बहुत बड़ा होता है। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, ये जो आपने अपने अंदर की तरफ एक झलक दौड़ाई है ना कि हम दरअसल अपने आप के साथ ही कितनी बार बेवफाई कर रहे होते हैं, अपने आप के साथ क्या कुछ कह रहे होते हैं कि हम बस एक बार उसने कर दिया, चलो एक मौका और उसको दे लेते हैं, ये अपने साथ सबसे पहली बेवफाई हो गई
0: सर मेरा,
1: कि जब अपने साथ पूरा आपने यकीन कर लिया। जी
0: सर, मतलब आप शुरू से मेरे साथ हैं,
1: बिल्कुल ऐसे
0: यहाँ पे हमने जब शुरू किया,
1: बिल्कुल।
0: मैं अक्सर बात करता हूँ कि यार मैं पता सवाल पूछता, मैं मौजू नहीं रखता।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: मैं सवाल पूछता हूँ, और सवाल वो जो मेरे अंदर जन्म ले रहे होते हैं, मेरे अंदर चाली होती है सोच,
1: यही तो
0: मैं शुरू के आगाज में मैंने कहा बज़ाहिर देखने में बड़ा सतही सा मौजू है।
1: ओह माय गॉड, ये बहुत वास्ट है, बहुत
0: बड़ा। बेवफाई के तरीके बताएं,
1: बिल्कुल ऐसे ही है,
0: जबकि मेरा फोकस हमेशा होता है फर्द वाहिद पे, मेरी जात।
1: हाँ ऐसे ही है,
0: जब मेरी जात पे है तो पहले मैं अपने अंदर जाऊंगा,
1: बिल्कुल
0: उस मौजू को ले,
1: बिल्कुल ऐसे।
0: तो बेवफाई को जब मैं पकड़ूंगा पहले मैं अंदर घुसूंगा, ना कि बाहर। अब मैं अंदर जाके देखता हूँ ना तो अंदर एक मुझे अजीब क्याओस सा नजर आता है, गुंजल पड़े नजर। मैं अपनी जात के साथ ही कई मकामात पे उलझा हुआ बेवफा हूँ,
1: बिल्कुल ऐसे ही।
0: मैं शुरू से लेकर आज तक इस मकाम पे पहुंचा हूँ, ना जाने कितनी जगह पे खुद ही खुद के साथ बेवफाई करते हुए,
1: हजारों मरतबा।
0: कई जगह मैंने खुद ही खुद को नाकाम किया,
1: बिल्कुल अपनी मर्जी से किया,
0: कभी अपनी आदतों से किया,
1: बहाने ये बनाए कि नहीं वो ऐसा मौसम नहीं था मेरे साथ, वो सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे, नहीं मैंने खुद
0: सर रीजन, फिर मैंने बहाने बना लिए, तकदीर में लिखा,
1: यस
0: हालात ऐसे थे,
1: मजबूरियां,
0: जबकि ऐसा कुछ नहीं,
1: ऐसा कुछ नहीं होता।
0: बेवफाई, दगा, फ्रॉड, ये सारी चीजों का आगाज मेरे अंदर अपने हो रहा है ना जी,
1: बिल्कुल ऐसे।
0: मैंने खुद अपने अंदर ये काम शुरू किया,
1: बिल्कुल ऐसे।
0: भाई किसी ने एक्सटर्नल इंपैक्ट पता है इंटरनल से आता है इस मौजू में,
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने,
0: उसने मेरे साथ दगा किया, नहीं आपने उसको मौका दिया, तू मेरे साथ दगा कर।
1: आपकी बॉडी तो एक बात की बात है, आपकी इनर में एक चीज है जो आपको सबसे पहले मतला कर देती है कि वो क्या कर रहा है
0: सर, यही।
1: लेकिन हम खुद को कह रहे होते नहीं यार वो कर ही नहीं सकता ऐसा, ये जो लफ्ज है ना वो कर ही नहीं सकता, यहाँ से शुरू होती है।
0: सो दिस इज द पॉइंट,
1: ओह माय गॉड, बड़ा खूबसूरत टॉपिक, बहुत
0: नाउ वी आर हियर, कि मौजू ये है कि बेवफाई एक्सटर्नल बात की बातें हैं। उसमें तो मैडम सलमा ने बड़ा अच्छा कोट किया आगाज में कि बेवफाई के लिए लाजिम है दोनों पहले एक ही मकाम मोहब्बत पर पहुंच जाए, फिर एक अगर निकले तो बेवफाई है, अगर नहीं पहुंचे तो कैसी बेवफाई है। और फिर ये बात थी मेरी अपनी जात की, मैंने ना जाने कई नाकामियां अपने दामन में समेटी, ना जाने कई दोस्तों से मैंने दगे किए, ना जाने कई जगह पे मैंने खुद अपने आप को मारा और क्या क्या नहीं किया। और मेरा रौला ये है हमेशा से, मैं यही यहां पे बैठ के कहता हूं कि अपने लिए वक्त निकालें, खुद को देखें। जिंदगी एक वन वे रोड है, वापस नहीं आता जो टाइम गुजर रहा है, कुछ लम्हात अपने लिए तो निकाल के अपनी जिंदगी जिए,
1: बहुत जरूरी है।
0: आपको जहां पे जरूरी होता है कि फलां ये कहेगा ऐसे हो जाएगा वो हो जाएगा, ये ना कर दे वो ना कर दे, और वहां पे आप अपनी ख्वाहिशात अपनी तमन्नाओं से भी बेवफाइयां करते हैं,
1: यस
0: गलत करते हैं, तमाम उम्र इसी इंतजार में गुजर जाती है हमारी कि वक्त आएगा मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। पैसों से कोई चीज नहीं होती,
1: ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही।
0: अगर आप सोचते हैं रिसोर्सेस कोई चीज नहीं करवाते, मौके कोई चीज आते नहीं है बना के ला के, मौका खुद बनाना पड़ता है, इंजॉय खुद करना पड़ता है,
1: आप खुद निकालना पड़ता है,
0: अपनी जात के लिए खुद करना। बेवफाई बाहर बात की बात है, अंदर की बातें हैं, मेरे साथ जो हुआ उसमें मेरी जात का कसूर है,
1: बिल्कुल
0: आपके साथ जो हो रहा है उसमें आपका अपना कसूर है।
1: हाँ।
0: क्योंकि आप अपनी जात के साथ बेवफा हैं। आई स्ट्रॉन्गली बिलीव जो बंदा अपने आप से मोहब्बत नहीं करता वो आपसे कैसे मोहब्बत
1: कैसे कर कैसे सकता है, और ये कैसे कह सकता है, दावा ये कैसे कर सकता है तुमसे बेहतर तुम्हें जानता हूँ। यहाँ से शुरुआत होती है, ये जुमला जैसे ही आप सुने ना आप फौरन अलार्मिक सिचुएशन में आ जाए। अच्छा
0: आजमीन कहती है इंसान इतना मुखलिस हो ही ना कि उसे दूसरा बेवफा लगे, यह अलमिया है कि आज के दौर में कोई एक अगर मुखलिस हो तो दूसरा बेवफा है। अच्छा जी, फिर कहती हैं फिर तो मैं भी बेवफा हूँ, शाहजेब शाहजू आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आकाश अली, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेजेस, और बड़ी मेहरबानी जी। इस्लामाबाद वाली पोस्ट के सर, होप यू वॉन्ट माइंड इफ।
1: अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ लो ना पड़े
0: को मैं तो पाए तानू क्या सी, मेरा शो कर लो तुसी, मेनू क्या नहीं करता।
1: आहो सही गल है,
0: ताड़ी वजह तो मेनू आना पया।
1: आने से पहले मैंने डॉक्स को फोन किया, मैंने कहा कि सर आवाज सुनने के बाद कहेंगे ओ नहीं नहीं तू ना रहन दे। अच्छा कहते कि नहीं यार मैं सुबह से निकला हुआ हूं, मैं थका हुआ हूं, बस मुझे फिर ना उसके बाद मेरे दिल में, अच्छा यकीन करें ये मेरी अपने लिए जस्टिफिकेशन थी, अब यहाँ पे आगे मेरा दिल कर रहा है मैं करा प्रोग्राम ये जो आपने छेड़ दिया ना अचानक से टॉपिक छोटा सा, बड़े ख्यालात के दर खुल जाते हैं, बहुत बहुत चीज़ें नज़र सामने आने लग जाती हैं, तो मज़ा अब दिल कर रहा है कि तुसी उठो तो मैं करा।
0: इस मौजू को लेके चले ना जी, अपने अंदर लेके आए।
1: यस यस करेंगे।
0: माजबीन कह रही है आकाश आपसे पूछ रहे हैं आपने कुर्बानी का जानवर ले लिया। हाँ जी जाऊँगा मैं, यकीनन इरादा रखता हूँ मैं। तो बात चल रही है आपकी, बात चल रही है मेरी, हम अपनी जिंदगी को अपने हाथों से
1: खराब कर देते हैं,
0: हम खुद अपनी उम्मीदों का, अपनी ख्वाहिशों का, अपने मामलात का, अपने हंसी का। आपका दिल करता है रोने का रोएं, आपका दिल करता है हंसने का हंसें, आपका दिल करता है घूमने फिरने का घूमें, अपने लिए टाइम तो निकालें थोड़ा सा अपनी मोहब्बतों का ख्याल करें अपनी जात के साथ, वरना मामला बिगड़ जाते हैं। सो इट इज एक्चुअली बेवफाई के तरीके, सबसे बड़ा तरीका ये है जहां आप अपनी जात को पसे पुश्त डालते हैं, यानी पीछे फेंकते हैं। यू ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अदर्स, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बिकम अ सेल्फिश पर्सन, सेल्फिश नहीं होना, क्योंकि सेल्फिश आप तब होंगे जब वो अवामल जिनका इम्पैक्ट इज्तमाई तौर पे लोगों पे आता है उनमें आप वो चीज़ करें जिसमें सिर्फ आपकी खुशी हो तो ज़्यादती है, लेकिन वो जिनका कतई तौर पे सिर्फ ताल्लुक आपसे, आई वॉन्ट यू टू एंजॉय देम। शायद सलार थैंक यू वेरी मच। यार जो मेरा खान नहीं आती मुझे, बिल्कुल अंदाजा नहीं है यहाँ से नहीं आता। यार ये बड़ी मजेदार सी पोइट्री है, अगर आप इसको सुने तो। अमरीन लाला असलाम किया, वालेकुम असलाम। उज़्मा है, नूर फ्रॉम इस्लामाबाद, आपने मेरी पूरी जिंदगी बता दी, आई लव ब्लैक कलर है ना, मैंने जो लास्ट टाइम थर्सडे को बताया था ब्लैक कलर, आई होप काफी लोगों से मैच किया। आलम परवेज, बेवफाई करनी क्यों है, बेवफाई होती है, मैं ये कह रहा हूँ मत किया करें ना, तरीकों पे बात तो तभी थी। बिन तसदीक, फरिश्ता सिफ्त लगती हैं आप जब ऐसे आप इमोजी भेजते हैं। जिद्दी लड़की, ओ हाउ आर यू, मेरा शो सुनती हैं, थैंक यू वेरी मच। फुल जोश वाले लगाएं, हम आपके साथ हैं 12 बजे तक। बीट मैंने उठा के रखी है जिद्दी लड़की, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम रीडिंग मैसेजेस काफ़ी देर से, इसके लिए माजत कबूल करें, बीट मैं चुक के रखी। अच्छा जी, ताबान महबूब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इश्क सादिक हो तो बेवफाई नहीं होती, आईना दिल पे हो मैल तो रोशनाई नहीं होती, आईना दिल पे हो मैल तो रोशनाई नहीं होती। बाबा जिंदगानी खराब कर बैठे, दोस्तों से हिसाब कर बैठे। ओके जी, एक आखिरी कॉल में ले रहा हूँ। हेलो
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम जी।
2: जी रिमशा,
0: क्या हाल है, ठीक हो?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और रहमान भाई आपको भी सलाम, आप ठीक हैं?
0: जी रहमान भी ठीक हैं जी। वालेकुम सलाम जी।
2: आज आप बेवफाई पे बात कर रहे हैं।
0: हाँ बात कर दी मैंने
2: भाई, बेवफाई तो बहुत कुछ लोग होते हैं जो करवाते भी हैं और कुछ की भी जाती है,
0: जबरदस्ती पकड़ के करवाते हैं। खबरदार अगर तुमने वफा अब भी बेवफाई करोगे तो,
2: हाँ, कर, नहीं तो मैं छड़ांगा नहीं,
0: जे तो बेवफाई ना की थी मैं तेरे छड़ांगा नहीं।
2: बकायदा घर वाले भी करवाते हैं,
0: घर वाले जो बेवफाइयां कराते हैं उन ना मैं की करूं और वो लड़कियों से ही क्यों करवाते हैं, मैं वैसे अक्सर देखता हूँ। अम्मी नहीं मान रही,
2: ये अक्सर जो होते हैं ना लड़कियों पे,
0: अम्मी कह रही है नहीं,
2: लड़के जो होते हैं ना उनके ऊपर बहुत कम,
0: अम्मी कह रही है नहीं ये मुंडा नहीं चंगा है, रहन दे असि तेरे माजा साइकिल वाला लभ्या वो नहीं जिससे तुम पसंद करती हो, वो चाहे जितना मर्जी अच्छा है, जिंदगी तुमने थोड़ी गुजारनी है, जिंदगी तो हम गुजारेंगे, जाओगी तुम, है ना,
2: बिल्कुल ऐसा ही है,
0: जिंदगी थोड़ी है तुम्हारी, तुम तो बैल बकरी हो, जहां दिल करेगा जिस किले से दिल करेगा हम तुम्हें बांधेंगे, खबरदार अगर तुमने बात की, माँ बाप के हकूक याद आ जाते हैं उस वक्त सारों को,
2: घर वाले भी करते हैं,
0: है ना, घर वाले बेवफाइयां करवाते भी हैं, हकूक याद आ जाते हैं तब अम्मा अब्बा को, माँ दे हकूक ते प्यो दे हकूक ते वालदैन दे हकूक, वालदैन उस वक्त भूल जाते हैं कि उसी मजहब ने यह भी कहा है कि पसंद की शादी की इजाजत है, अगर नसब अच्छा है कसब अच्छा है,
2: बिल्कुल ऐसा होता है जब कोई
0: कोई चक्कर ही कोई नहीं, वो हदीसे याद नहीं आते,
2: तो कहते हैं कि पगड़ी जो है ना वो खराब कर
0: रही
2: है,
0: इज्जत खराब, आजकल पगड़ी
2: कोई बांधता
0: ही नहीं, टेंशन ही नहीं लेनी आपके उन्हों के लिए, बहुत सारी दुआएं
2: बिल्कुल, और लेकिन भाई आज आपने बिल्कुल भी कॉल नहीं ली, उन्होंने आज कॉल मिलानी थी लेकिन आपने कॉल नहीं पिक किया आज किसी की भी इतनी ज्यादा,
0: मैं बहुत ही मैं देख रहा हूँ
2: सुस्त और बेशर्म होता जा रहा
0: हूँ, मैं बहुत बेवफा इंसान हूँ, अभी माजबीन कह रही थी आपकी आंखों से आपकी बेवफाई नजर आती है, मेरे माथे पे भी लिखा हुआ है बेवफा इंसान जो अकेला आया था दुनिया में और अकेला ही जाएगा, सही कह रही है आप। खुश रहो
2: ओके भाई, आप भी बहुत खुश रहें, शुक्रिया मेरी आखिरी बात करने के लिए,
0: थैंक यू,
2: ओके अल्लाह
0: हाफिज, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, मैं कह रहे हैं जॉन एलिया भाईजान क्या बात है, चासा आएगी आपको, आज मैंने रहमान भाई जो गाने सटे हैं ना जी, वो चासा आएगी अगर आपको भी जो है ना सुनेंगे आप, बेकरारी सी बेकरारी है,
1: वाह,
0: वसल है और फिराक तारी है,
1: वसल है और फिराक तारी है, अच्छा नाल दूसरा काम भी चल रहा है,
0: बेकरारी सी बेकरारी है, वसल है और फिराक तारी है, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है,
1: हमने वो जिंदगी,
0: बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है,
1: क्या मेरी नींद भी तुम्हारी, वाह वाह वाह वाह, क्या क्या क्या क्या, बहुत खूबसूरत,
0: दिस इज आदि डॉक्स, बेवफाइयां करनी छोड़ दें अपने साथ, दिस इज आदि डॉक्स साइनिंग ऑफ, कल मिलते हैं, और This is for you and for Rahman Anwar.
1: Thank you so much.
0: Such a lovely person he is.
1: Thank you so much. Love you.
0: अगर अंधेरे में सामने खड़ा रहे तो और अगर मिलता रहे तो
1: ये तो जिंदगी भर का मामला है, क्या करेंगे?
0: Take care. Bye bye.
1: मैं आ रहा हूँ.
0: जाना नहीं है रहमान भाई इधर ही है. इस शो को कंटिन्यू कर रहे हैं. एंड यस रहमान भाई, हमने वो पोस्ट लगा दिया आज इंटर्नशिप वाली, उसके बारे में भी आगाह करते रहिएगा, अभी फेसबुक पे भी लगा दिया हमने.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

तुम्हें अगर उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं।

मैं उसे देख के हैरान हुआ फिरता हूँ। वही गाती हुई आंखें, वही अंदाज़े कलाम, वही गुलनार तबस्सुम से महकता चेहरा, वही खुश रंग खिराम। नर्म लहजे में तरन्नुम की वही गुलकारी, जैसे वो कल की गई आज चली आई हो, जैसे सब जाग के काटी हुई काली रातें सर्द कमरे में ठिठरती हुई सोचें यादें, रात भर रोई हुई आंख से भीगे तकिए और तालू से चिमटे हुए कड़वे लम्हे मेरे बहके हुए ख्वाबों की तरह शीदा थे। मैंने सोचा था गुजरते हुए कड़वे लम्हे उसके तालू से भी चिमटे होंगे, उसके तकियों पे भी मेरी यादें अश्क बन बन के टपकती होंगी, सर्द रातों में समय तन्हाई उसकी नींदों को भी खाता होगा, उसकी आंखों में मगर दर्द का साया भी न था। जैसे वो गुजरे हुए वक्त से गुजरी ही न थी, जैसे उसने मुझे चाहा भी न था, मुझको यूं सामने पाकर वो हरासा न हुई, मेरे बेरब्त सवालों से परेशान न हुई, अपने मानूस तबस्सुम में तरन्नुम भरकर मुझसे चलते हुए बोली, हेलो हेलो शायरे वक्त, कहो कैसे हो। मैं उसे देख के हैरान हुआ फिरता हूँ। मैं उसे देख के हैरान हुआ फिरता हूँ। रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के बराह रास्त लाहौर के स्टूडियो से प्रोग्राम अधूरी बातें लेकर आपका मेजबान आपका रहमान जहां रहमान अनवर हाजिर है। तमाम खूबसूरत समातों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसे मिजाज हैं आप सबके? आप सब खैरियत से तो हैं, ठीक ठाक तो हैं? हमेशा मुझे मेरे पाक परवरदिगार पर यही उम्मीद और यकीन रहता है कि मेरे तमाम सुनने वाले मेरे पाक परवरदिगार की रहमत के साए तले होंगे, मेरे अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में होंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान का मायारी वक्त है 12:48। इस प्रोग्राम में हमारा और आपका साथ रहा करता है शब के 2 बजे तक। प्रोग्राम में शामिल रहती हैं बहुत सी बातें, बहुत से टॉपिक्स। जी हाँ बिल्कुल, एक ही प्रोग्राम में बहुत से टॉपिक्स शामिल रहते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हर बात का

आगाज एक ख्याल से होता है। यस, ये ख्याल ही तो है जो अल्फाज के ताने बाने को जोड़ता है। ऐसी बहुत सी बातें जो ख्यालात से होते हुए अल्फाज का रूप धार लेती हैं। ऐसे बहुत से किस्से हैं, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो मंजिल की पहुंचने की जुस्तजू में नामुकम्मल, अधूरी औलीदा दामन रह जाते हैं। इनमें आंसुओं की वो कतारें भी शामिल हैं जो मन के कैनवस पे किसी खास का धुंधला साक्ष बनाती हैं, मिटाती हैं। हर वो ख्याल जो दर्द की शिद्दत की कैफियत में खुद ही तक पहुंचा देता है, अपने आप से मिलवा देता है, हकीकत का रास्ता दिखला देता है, इस प्रोग्राम में शामिल रहता है। दोस्तों, ये जो जिंदगी में दर्द होता है ना, यकीन करें ये बड़ा बड़ा लाजवाब होता है, बड़ा जरूरी होता है। आपके पैदा होने के बाद बनने में सबसे बड़ा किरदार जो अदा करता है वो दर्द अदा करता है। आपको बनाने में, आपके अंदर जज्बात पैदा करने में दर्द हमेशा आगे आगे पेश पेश रहता है। आज बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, आज ख्याल के कैनवस के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। अभी कुछ देर पहले नाइट थेरेपी, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत खूबसूरत अंदाज में 101 की शान हमारे बहुत ही प्यारे से आरजे हैं, आरजे डॉक्स भाई हैं मेरे तो बड़े, खैर, और बहुत खूबसूरत तरीके से वो पेश कर रहे थे, बहुत बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। और उनसे आकर कुछ देर के लिए उनके टॉपिक के ऊपर बात करना हमेशा हमेशा बहुत एक्साइटिंग होता है, हमेशा बहुत अच्छा लगता है। सो बहरहाल, अभी नाइट थेरेपी को अलविदा कहते हुए अधूरी बातों के सिलसिलों का बाकायदा आगाज करते हैं, और प्रोग्राम का पहला गीत आपकी समातों की नज़र करने जा रहा हूं, और उम्मीद यही करता हूं आपको आपको ये सुनना अच्छा लगेगा। बस कुछ देर के बाद लौट के वापस आऊंगा। जब तबीयत खराब होती है ना, जब गले में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, जब आवाज निकालने की कोशिश करनी पड़ती है, तब नेमत का अंदाजा होता है कि क्या नेमत है सेहत। तब ये अंदाजा होता है कि क्या क्या नेमत है। तब फिर हर नेमत की कदर दिल में आ जाती है। आंखों से देख पाते हैं क्या नेमत है, हाथों से छू पाते हैं क्या नेमत है। कदम हमें चलाते हैं हमारी मर्जी की डेस्टिनेशन पे, हमें पहुंचा देते हैं क्या नेमत है। उसका शुक्र अदा करने का दिल चाहता, यही वो चाह रहा होता है, बस फिर उसके बाद वो सब ठीक कर देता है।

12:57 हो चुके हैं और हमारा और आपका साथ इस प्रोग्राम में 1 घंटा और 2 मिनट का बाकी रह गया। इसमें हम आपकी लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और साथ ही साथ हम आपसे टॉपिक के ऊपर भी बातचीत करेंगे।

दुनिया में मुश्किल तरीन कामों में से एक काम अकेले बैठकर बोलना होता है। यकीन करें, ये बात अभी आपने सुनी होगी तो आपने थोड़ा सा अजीब सी नजरों से देखा भी होगा और सर को झटका भी दिया होगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करें, आप थोड़ा सा सोच विचार करने की कोशिश करें कि एक कमरा है, हॉल नुमा कमरा, जिसके अंदर तमाम लाइट्स जो हैं वो बंद हैं, यहां तक कि राइट साइड पे जो ड्यूटी ऑफिसर्स का जो कमरा होता है जिसमें बैठकर ड्यूटी ऑफिसर्स आरजेस के प्रोग्राम्स को मॉनिटर करते हैं और हर तरह की मुआवनत उन्हें देते हैं। अब ड्यूटी ऑफिसर्स का जिक्र आया है तो मैं अदील भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, हाफिज आसिम गुजर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एमसीआर में वो मुझे मुआवनत दे रहे हैं, मुझे हमेशा हर लम्हे मेरा साथ दे रहे हैं और मेरी आवाज़ को आप तक बिल्कुल सही तरीके से बगैर किसी डिस्टॉर्शन के पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर बाकी दूसरे शहरों में सुना जा रहा है, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद, हैदराबाद, पिशावर, क्वेटा, जहां जहां पे भी 101 की ट्रांसमिशन और हमें सुना जा रहा है, वहां वहां के जितने भी प्रोडक्शन इंजीनियर्स हैं उन सब का नाम मैं नहीं जानता लेकिन उन सब का बेहद शुक्रिया। और यहां पे हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हुआ करती हैं खदीजा मुराद साहिबा, थैंक यू वेरी मच मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर प्रोड्यूसर हुआ करते हैं जुबैर बशीर साहब, सर आपका भी बेहद शुक्रिया। इस समय स्टेशन डायरेक्टर हैं FM 101 लाहौर और रेडियो पाकिस्तान लाहौर के अहमद सोहेल बसरा साहब, सर आपका भी बेहद शुक्रिया, सलामत रहें। बात मैं ये कर रहा था कि एक कमरा और उस कमरे में सारी लाइट्स ऑफ और यहां तक कि ड्यूटी रूम की भी लाइट्स ऑफ और अकेला बैठा हुआ है इंसान। एक माइक है, नीचे एक पैनल है जिसके ऊपर कुछ बत्तियां जो हैं वो कुछ देर के बाद चलती हैं और लेवल के बारे में इन्फॉर्म करती हैं कि मेरी आवाज़ का लेवल इस पैनल में कितना है, क्या मेरी आवाज़ का लेवल सुनने वालों तक बिल्कुल सही पहुंच रहा है। और इसके साथ साथ दो मॉनिटर्स हैं राइट और लेफ्ट साइड पर जिनकी रोशनियाँ चल रही हैं। और ऐसे हालत में, ऐसी सिचुएशन में ना कोई प्रॉम्प्टर है ना कोई और चीज है जिससे देखकर बोला जाए या पढ़ा जाए, या अमूमन जहां पे न्यूज चल रही होती है या कुछ दूसरी चीजें चल रही होती हैं वहां पे बहुत सारे इंतजाम होते हैं, लेकिन रेडियो, यस, ऐसी कोई चीज नहीं है यहां पे आसपास। प्रॉम्प्टर लगाया जा सकता लेकिन थोड़ा सा फेकनेस आ जाता है, सामने देखकर पढ़ने में थोड़ा सा बनावटीपन आ जाता है। यहाँ पे प्रोग्राम करते हुए न्यूज़ का इफेक्ट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे प्रोग्राम करते हुए जैसे दो दोस्त आपस में बैठकर बातचीत करते हैं बिल्कुल वैसा इफेक्ट आना चाहिए। मुश्किल नहीं लगना चाहिए कि ये इंसान जो पैनल पे बैठा है इससे बात करना बड़ा ही मुश्किल है, इससे बात नहीं की जा सकती, हमारे मायार पे नहीं है। नहीं, ऐसा एहसास अगर कोई आरजे दे रहा है, ऐसा एहसास अगर कोई इंसान दे रहा है सुनने वाले को, तो ये उसकी नाकामी है। अगर हर सुनने वाले को ये एहसास मिल रहा है ये मेरे दिल की आवाज़ है, ये मुझसे बातें कर रहा है, ये इंसान मेरी तन्हाई को बांट रहा है, ये इंसान जी हाँ। रेडियो पे प्रोग्राम करने वाले जो आरजेस होते हैं वो ये ही वक्त रखते हैं हर सुनने वाले की जिंदगी में, उसके गुमनाम साथी होते हैं, हम सफर होते हैं, बातचीत करते हैं उससे। तो ये जो बोलना होता है दो घंटे का जो प्रोग्राम स्लॉट है, एक ये जो बात करनी होती है, ये जो कंटेंट होता है मुख्तलिफ टॉपिक्स को लेकर, जैसे अभी कुछ देर पहले डॉक्स बेवफाई के हवाले से मुख्तलिफ तरह के गुफ्तगू, मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स को, बेवफाई एक टॉपिक है, इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। ये फन है, ये कमाल फन है कि
कि अपनी बात को भी पहुंचाना और तमाम लोगों की दिलों की बातों को भी उन तक पहुंचाने की कोशिश करना। हमारे अंदर हमारी सच्ची आवाज़ कहीं दबी हुई होती है लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रही होती। इतनी झूठी आवाज़ों में, इतने शोर में, इतनी दूसरी आवाज़ों में, ख्यालात के अंबार तले दबकर वो एक सच्ची आवाज़ कहीं छुप जाती है, कहीं बहुत नीचे चली जाती है। ऐसी सूरत हाल में उनके ही वो छुपी हुई आवाज़, वो जो बहुत नीचे जा चुकी है, उसको लेकर आना और दोबारा से उनकी समातों में उस आवाज़ को पहुंचाना, अपने मन की बात को, उनके ही मन की बात को उन तक पहुंचाना, ये फ़न होता है। सो इस फन के लिहाज से आपको, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर ये कुछ है, बोलने का हुनर है, जिनके अंदर ये हुनर है कि वो खुद भी बात कर सकते हैं और अकेले में बैठकर अगर वो माइक के सामने बात करें तो बहुत सारे दिलों को, बहुत सारे दिमागों को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, उनके अंदर नई दुनियाओं को आबाद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एफएम मनोवन ने हमारे जो मैनेजमेंट है, जहाँ अहमर सोहेल बसरा साहब, ज़ुबैर बशीर साहब, असद इब्रार साहब, मैनेजमेंट ने एक चांस दिया है। बहुत कम होता है ऐसा, बहुत बहुत अरसे के बाद ये चीज़ एक दोबारा से एफएम 101 लाहौर को इस बात का सहरा जा रहा है और लाहौर की मैनेजमेंट को इस बात का सहरा जाता है कि बहुत अरसे के बाद ये इनिशिएटिव लिया गया है कि यहाँ पे आरजेज की ट्रेनिंग करवाई जाए। जहाँ पे लोग रेडियो के हवाले से ये बातचीत कर रहे थे, चहमगोइयाँ कर रहे थे कि ये इंडस्ट्री अब ख़त्म हो चुकी है, यकीन करें इस समय एफएम 101 जो है पूरे पाकिस्तान में नंबर वन चैनल हो चुका है अपने प्रोग्राम्स की वजह से, अपने कंटेंट की वजह से, और बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो अपने प्रोग्राम्स को पेश करता है। हर आरजे पूरी मेहनत के साथ आपके सामने आता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो ये चाहते होंगे या फिर उनके अंदर कोई इनसिक्योरिटी होगी, वो ये जानना चाहते होंगे कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए। जैसे झिझक होती है, मैं बात अपनी कन्वे नहीं कर पाता, मुझे, मैं कोई बात करने की कोशिश भी करता हूं तो मुझे रोक दिया जाता है, टोक दिया जाता है और मेरे अंदर से भी कोई मुझे रोक देता है, नहीं नहीं बात नहीं करनी। वो बचपन से कभी रोका गया हो और फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी का एक दौरानिया, एक अमल शुरू हो गया हो, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी हो जिसकी वजह से आप अपने अंदर की आवाज़ को, अपने आप को, अपने लिए आवाज़ को उठा नहीं सकते, अपने हक को हासिल करने के लिए ज़बान से अल्फाज निकाल नहीं सकते, तो ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। रेडियो पाकिस्तान आपके लिए लेकर आया है, एफएम 101 आपके लिए लेकर आया है आरजे एंड ब्रॉडकास्टिंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। यस, इंटर्नशिप होगी यहाँ पे। इंटर्नशिप ये नहीं होती कि आप बस कुछ चीज़ें पीछे पीछे घूमते फिरते रहते हैं, आपको जो कहा जाता है आप वो कर रहे होते हैं, बस उसके बाद 3 महीने का एक पीरियड ख़त्म हो जाता है और फिर उसके बाद आप चले जाते हैं, ऐसा नहीं। ये जो इस समय मैं बोल रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, बिल्कुल इस तरह से बात करने का आपको मौका मिलेगा और उससे पहले आपके अंदर वो एक जौहर, आपके अंदर का एक ऐसा छुपा हुआ हिस्सा जिसको शायद इससे पहले आप भी नहीं जानते होंगे, उसको निकाल कर बाहर आपको दिखाया जाएगा, आपको हीरा बनाया जाएगा, आपको तराशा जाएगा। सो आप अगर चाहें तो आप एफएम 101 के हमारे पेज पे जा सकते हैं और वहां पे आपके लिए एक पोस्ट अपलोड कर दी गई है जिसमें लिखा ये गया है कि क्या आप आवाज की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो रेडियो पाकिस्तान लाहौर लाया है आपके लिए एक सुनहरी मौका, आरजे एंड ब्रॉडकास्टिंग इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। यस, तो आप आइए यहां पे, इस फॉर्म को फिल कीजिए। बस ये याद रखिएगा कि अंडर 30 आपकी एज होनी चाहिए और आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं, स्टूडेंट नहीं भी हैं, आप पढ़ चुके हैं
आप कहीं पे काम कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज मौजूद हैं, तो आप जरूर आइएगा। अपने आप को एक मौका जरूर दीजिएगा। इस दुनिया में मौके खुद हासिल किए जाते हैं। अभी डॉक्स भी आपको समझा रहे थे, अभी पिछले प्रोग्राम में आपको बता रहे थे कि मौकों की तलाश में रहते हैं लोग। अगर आप तलाश में भी थे और आपने सुन लिया तो यह मौका आप तक पहुंच गया। आप इस मौके को जरूर अवेल कीजिएगा। बहरहाल कुछ देर के बाद हम आरजे डॉक्स को या फिर मैनेजमेंट में से किसी को कॉल पे लेंगे और फिर इस प्रोग्राम के हवाले से फर्दर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए शेयर जरूर करेंगे, ठीक है ना। गला आप जानते हैं गला बहुत खराब है और आवाज जो है वो बहुत मुश्किल से।

एक और बात आपको बता देंगे, आज 12 बजे के बाद 21 मई यस पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सफारती ताल्लुकात का जन्मदिन भी है। हम इस तकरीब को मनाएंगे, सुबारजेस आपको इसके हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशंस भी देंगे। हर मौके पे चीन हमारे साथ होता है। सबसे पहले तस्लीम करने वाला चीन को जो मुल्क है वो पाकिस्तान है। डॉग्स थैंक यू वेरी मच। ये ट्रैक जो आप देखे गए ना मुझे, ओह माय गॉड, लव यू। वापस आता हूं, टॉपिक का थोड़ा सा हवाल आपके सामने रखेंगे। बाय द वे आप जानते हैं इस प्रोग्राम में वक्त पर लगाकर उड़ता है, 50 मिनट बाकी, कुछ ट्रैक्स प्ले करेंगे, कुछ बातें करेंगे और ऐसे वक्त बीत जाएगा और 2 बज जाएंगे। यस

0: आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाने जा रहा हूं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0421100101, हमारे और आपके दरमियान रब्ते का नंबर है। आपकी कुछ कॉल्स रिसीव करूंगा, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैनेजमेंट में से किसी को कॉल पे लिया जाए, और फिर ये जो आरजेस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसके हवाले से थोड़ी सी बात की जाए, ठीक है ना। सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि खुद को हर लिहाज से प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। टेलीफोन लाइन पे आपकी पहली कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जनाब रहमान भाई।
0: जी जनाब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? कौन बात कर रहे हैं?
1: अल्लाह का शुक्र है, मैं नवाज बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से।
0: जी भाई जन, क्या कहना चाहेंगे?
1: रहमान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता चाहता हूँ, जिससे आपने मुझे बहुत ही अहसन तरीके से अप्रिशिएट किया था, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे शॉक भी लगा था।
0: सलामत रहे, आबाद रहे। बाज़ोकात सच्चाइयों को समझने के लिए शौक मतलब बर्दाश्त करना पड़ता है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप जीतना चाहते हैं।
1: लेकिन मैंने फिर वो बहुत सारे लोगों से मशवरा भी किया, उन्होंने मुझे यही राय दी कि वो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नेटवर्क है FM 101 चैनल पाकिस्तान।
0: जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही,
1: जहाँ पे वो प्रोग्राम करते हैं, और उन्होंने आपको जो मशवरा दिया है वो 100% ठीक है। अच्छा, आपने मुझे कहा था कि आप अपने बारे में मुखलिफ नहीं है, ऐसे ही बोला था?
0: जी जी बिल्कुल ऐसे ही।
1: और मैंने ये बात खुद भी अपने आप में देखी है कि मैं अपने आप बारे में मुखलिफ नहीं हूँ। रहमान भाई, मैं इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और दूसरी बात ये करना चाहूंगा कि मेरी लाइफ में के ऐसा पर्सन आया है कि जिसने मुझे कुछ मोटिवेट करने की हिम्मत और ताकत दी है।
0: यकीन करें कि बड़े खुश नसीब इंसान है आप। अभी मैं इस जंग के अंदर आपसे बात करने के बाद अभी मैं इसी हवाले से बात करने वाला था।
1: मैं एज ए डिसेबल आपसे बात कर रहा हूँ, ब्लाइंड हूँ मैं, तो उस पर्सन ने मुझे मतलब ऐसे मैनेज किया, इस तरीके से मुझे उसने मुझे एक दो राह पे चलने वाले को एक रास्ता दिखाया। जो दो राहों पे चलने वाले होते हैं ना, वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होते।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
1: हमेशा चूज करना है उसमें, चाहे जो भी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है, जो भी है, आपने जो रास्ता चूज कर लिया फिर उसको आपने पूरी तरह से निभाना है।
0: बिल्कुल ऐसे ही।
1: आई एम राइट सर?
0: बिल्कुल ऐसे ही।
1: तो इंशाल्लाह मैं इस पर कामयाब होने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपकी दुआओं की जरूरत है, आप मेरे उस्ताद मोहतरम हैं सर।
0: अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। और बस ये है कि ये जो मुखलिस ना होने वाली बात है, इसको ज्यादा आपने उस तरह से इतना नेगेटिव वे में नहीं लेना। ये सिर्फ इसलिए मैंने कहा था कि आप एक बार अपने अंदर झांक पाएं और अपने आप के साथ मोहब्बत कर पाएं, अपनी अहमियत के बारे में जान पाएं, अपने खुदा से और ज्यादा करीब हो पाएं, बहुत सारी आसानियां आपके लिए पैदा हो जाएंगी।
1: इसी तरफ मैं आपको लाना चाहता था सर, इसी तरफ।
0: बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सर।
0: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। मुझे हमेशा इस बात की बहुत खुशी रहती है कि यहाँ पे सुनने वाले सिर्फ सुनते नहीं हैं, पूरे मन से सुनते हैं, मन के कान खोल कर सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमान, आज जो आपकी कैफियत है आपसे ज्यादा मेरी खराब है। इतना शदीद नज़ला और खांसी और गला खराब।
0: जी जी ऐसे ही।
2: मैंने कहा रहमान से तो मुझे बात करनी है, मुझे पता चल रहा था कि तबीयत सही नहीं, सही नहीं। मुझे फिक्र हो रही थी सच में, कोई ऐसा नंबर भी नहीं है आपके स्टेशन पे कि जहाँ से फोन करके खैरियत ही मालूम कर लें किसी की भी। तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था, मैंने पता नहीं क्या हाल है जो आए नहीं, वरना रहमान हमारे रुक जाए, ऐसा हो नहीं सकता।
0: ऐसे ही ऐसे ही
2: माशाल्लाह। और जो आप आए ना आवाज़ का कह रहे हो, तो रहमान यकीन करो आपकी पर्सनैलिटी पर ये आवाज़ बहुत जच रही है, लेकिन अल्लाह करे कि गला बिल्कुल ठीक हो जाए।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगर बुरी नहीं लग रही तो फिर तो बहुत अच्छा
2: है। बुरी नहीं लग रही, वरना मैं बताती, बल्कि मुझे खुद अपनी बहुत बुरी लग रही, लेकिन मैंने कहा मैंने रहमान से तो खैरियत पूछनी है भाई, जैसी भी लगे।
0: नहीं नहीं, बहुत अच्छी लग रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से, बल्कि अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए।
2: देखो रहमान, मैं तुम्हें थोड़ी सी दो चार सच्ची सच्ची बातें बताती हूँ।
0: जी जी बताइएगा मुझे।
2: किसी के बुरा कहने से ना हम बुरे हो जाते हैं
0: जी बिल्कुल,
2: और ना अच्छे,
0: बिल्कुल ऐसे ही।
2: जबान से हर शख्स अपना जर्ब दिखाता है,
0: बिल्कुल ऐसे ही।
2: नहीं, किसी का दिल तोड़ कर माफी मांगना तो बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूट जाए तो किसी को माफ करना बहुत मुश्किल होता है।
0: बिल्कुल ऐसे ही
2: फैक्ट है। कभी टाइम होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी रहमान,
0: बिल्कुल बिल्कुल जरूर,
2: मुश्किल होता है ये। और एक आखिरी शेर सुना के तुम्हें मैं कहूंगी अल्लाह हाफिज़, आज टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है।
0: बिल्कुल ऐसे
2: तो मैं देख के फिरता हूँ तेरे हिजर में जिंदा,
0: वाह वाह,
2: मैं देख के फिरता हूँ तेरे हिजर में जिंदा, ये पूछ के जीने में मजा है कि नहीं,
0: ये पूछ जीने में मजा है कि नहीं, वाह वाह।
2: तुम तो इतने खूबसूरत शायर डालते हो अपनी रील्स में, मैं तो पढ़ पढ़ के हैरान होती रहती हूँ, पता नहीं कितने से निकालते हो।
0: अरे सलामत
2: रहमान, मेरा बहुत प्यार और बहुत दुआएं तुम्हारे,
0: बहुत शुक्रिया,
2: सब सुनने वालों के लिए भी और डॉक्स के लिए भी बहुत सलाम और दुआएं,
0: वालेकुम सलाम,
2: प्रोग्राम करके गए, जीते रहे सब लोग,
0: थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल आपकी रिसीव करते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। गलत नंबर पे डायल हो गया शायद उनसे, है ना। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम सलाम रहमान भाई, परवेज अख्तर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से।
0: जी परवेज साहब, कैसे मिजाज है आपके, आप खैरियत से?
3: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सेहत ठीक है आपकी?
0: अल्लाह का बहुत करम है, बहुत एहसान है, आप बताइए।
3: तो बस अभी अभी मैंने लगाया तो बस आप ये हमारी बहन की आवाज सुनी तो मैंने बोला मिला लिया नंबर और लग गया।
0: बहुत शुक्रिया,
3: यकीन कर पहली दफा मिले, अभी मिला है। और ये बात ये है कि इंसान रूह जिसको कहते हैं दिल
0: जी,
3: दिल खालस, बिल्कुल दिल को बिल्कुल इंसान पाक और साफ कर लेना, अंदर से बिल्कुल धो लेना। यकीन कर मैंने ट्राई की, मैंने बोला शायद, लेकिन बिल्कुल यकदम भी लग गया। और माशाल्लाह क्या आपका शो बहुत जबरदस्त होता है हमेशा की तरह, आप होते हैं, जिया भाई होते हैं और दूसरे असद भाई होते हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं सर, आपसे हम लोग तो सीखे रहते हैं।
0: बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आप। आज टॉपिक ये रखा है जी कि खुद को कारामत कैसे बनाया जा सकता है, हर लिहाज से खुद को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है।
3: देखिए मेरे पास इतना पढ़ा लिखा नहीं, 6-7 क्लास पढ़ा हूं।
0: अच्छा,
3: जब इंसान बच्चा पैदा होता है खाली दिमाग आता है, उस पर खाली ज़हन होता है, तो कुछ जो है ना हर वक्त गैर से मिलती है वालदैन से, जैसे भी हूँ वालदैन, परवरिश गैर से ही होती है, लेकिन इंसान को खुद चाहिए कि वो अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए, अच्छी सोच अच्छी रखनी चाहिए, और दूसरों को अपने से बहुत अच्छा बेहतर समझना चाहिए।
0: ऐसे ही
3: मैं तो इस चीज में, मुझे वो इंसान बहुत ही बुरा गंदा लगता है जिसके अंदर तकब्बुर हो, मैं हो, तकब्बुर मुझे बर्दाश्त नहीं होता।
0: ठीक है,
3: देखें आज ही सबसे अच्छी प्यारी आज ही अल्लाह को अपनी पसंद है ना, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करते। 1700 साल हमारी जिंदगी, उसके बाद तो हमने यहाँ से चले जाने, हमारा तो सर आखिरत में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ रखा है, नाम कुरान में सब कुछ बता दिया।
0: ठीक है,
3: फिर हमें अमल बहुत कम करते हैं, तो बस ये मुखलिस इंसान अपने आप को अंदर से बिल्कुल साफ कर ले, धो ले, अल्लाह की फकल पे अल्लाह पे छोड़ दे, तो यकीन करें जो है ना वो इंसान की जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। जिंदगी तो हमने खुद अपने आप को खुद में मुश्किल में डाला हुआ है सर, जिंदगी तो बहुत आसान है, इंसान आज ही सादगी इख्तियार कर लेना, यकीन करें तो बहुत मजा आता है। आप लोगों से बहुत माशाल्लाह हमें मोहब्बत है, रेडियो से मोहब्बत है, आज से बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं हमें।
0: थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहें।
3: 6-7 क्लास पढ़ा हूँ, तमाम सुनने वाले को सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: पाकिस्तान जिंदाबाद जी, थैंक यू वेरी मच। 1:28, एक और लाइव कॉल प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
4: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम,
4: कैसे हैं भाई?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं, आप खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका?
4: मैं किस्मत लाहौर से बात कर रही हूँ।
0: जी बिस्मा, क्या कहना चाहेंगे?
4: आपका टॉपिक क्या है?
0: खुद को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता?
4: ये तो सोच कर बताना पड़ेगा। अच्छा, मैंने जस्ट जोक्स भाई के शो सुन रहे थे, तो उसमें कब से ट्राई कर रहे थे कॉल का, तो नहीं उसमें लग सकी।
0: अच्छा,
4: तो
0: अच्छा,
4: वो
0: अच्छा,
4: ये बता रही थी कि वो जो है आप वो कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं, आरजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगर हमने करना है मीन्स कि हम आएंगे जहाँ पे आपका लाहौर का स्टेशन है वहाँ पर, या फिर घर बैठकर अगर जो नहीं कर सकते फॉर्म फिल या जिनके पास नहीं सहूल है तो वो वहाँ पर डायरेक्ट आप ही करेंगे, इसके बारे में पूछना था, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें।
0: दरअसल एक फॉर्म है यहाँ पे ऑनलाइन, आप उसको फिल करने के बाद भेज सकते हैं यहाँ पे हमारे एफएम, या फिर उसको लेकर भी आ सकते हैं, उसकी कॉपी निकलवा कर उसको फिल करके उसको लेके आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका फिज़िकल आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके साथ क्लासेस लेना, यहाँ पे आपको जो एनवायरनमेंट है स्टूडियो का वो दिखाया जाएगा, उसके साथ साथ रेडियो पे बात कैसे करते हैं ये बताया जाएगा, तो यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना अगर ऐसे सीखना है घर बैठ के तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आप वहाँ पे सीख भी सकते हैं।
4: हाँ, हमने जैसे हम एडमिशन लेते हैं कहीं जाकर सीखते हैं, ऐसे ही होगा ना?
0: जी बिल्कुल ऐसे ही,
4: घर बैठ के जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो
0: जी
4: नहीं है।
0: वो नहीं है
4: जी, ठीक है। हाँ, ये पहली दफा मैंने कॉल की है आपके शो में
0: जी, ठीक है।
4: और आज जो डॉक्स भाई के शो में तो करते रहते, कभी भी नहीं मिली, वो मरने के बाद ही मिलेगी। और जिया भाई की शो में भी मेरी दो दफा उनसे बात हो चुकी है, और ये फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लगा है। और आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, अभी आपका गला खराब है फिर भी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। एक ट्रैक प्ले करते हैं और फिर वापस आते हैं, और फिर आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट से बात करके आरजेएस ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से और ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्फॉर्म करते हैं।

0: Alright जी, once again welcome back. हाय हाय, क्या क्या क्या क्या ट्रैक्स हैं ये डॉक्स आपने ये वैसे मेरे साथ ना बहुत अच्छा किया. थैंक यू सो मच. मैं ना ढूंढ रहा था कि मुझे मिल जाए कहीं से. हाँ बिल्कुल, क्रेडिट आपको जाता है ऐसे ही. अस्सलाम वालेकुम डॉक्स.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: असी इस तरह गल्ला कर रहे जिस तरह आपस नहीं कर दे. क्या हाल चाल है? हाय, ये आपका मोहब्बत और प्यार है ना, मैं भी अब आपको दिया करूंगा.
1: याद करेंगे आप?
0: यस यस यस यस, हमेशा याद रखूंगा मैं. और ये वाले ट्रैक्स ना अब मैं भूल नहीं सकता क्योंकि इसमें से मैंने खंगालने हैं बहुत सारे. अब डॉक्स, मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे ना अभी बिस्मा भी आई थी, एक कॉलर आई थी, और बहुत सारे और भी लोग हैं जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या फिर वो घर में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद ख्वाब देखते हैं कि किसी तरीके से हम भी ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाएं, इस मीडिया का हिस्सा बन जाएं. कुछ लोग अपने चैनल्स के हवाले से बोलने का हुनर सीखना चाहते हैं, कॉन्टेंट क्रिएशन का हुनर सीखना चाहते हैं. मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि ये जो रेडियो पाकिस्तान ये जो इनिशिएटिव ले रहा है, ये क्या है बेसिकली, क्या कर क्या रहा है?
1: हम सारों को रहमान अनवर की तरह बोलना सिखाए, अंजुम की तरह बोलना सिखाए,
0: डॉक्स की तरह, है ना,
1: मेरी तरह ना सीखे.
0: नहीं वो
1: बड़ा कैजुअल हो जाना, आप लोग बहुत अच्छा बोल.
0: नहीं नहीं नहीं, आप बहुत खूबसूरत बोलते हैं, और ये जो ऐसे कैजुअल बोलना होता है ना, ये बड़ी आसानी से समझ में आता है.
1: अच्छा जी.
0: यस, यही समझ में आता है, ये सुनना चाह रहे थे.
1: जब मैं गया ना उधर LGU में, वहाँ पे एक लड़का खड़ा होके मैंने कहा क्वेश्चन आंसर करें ना, इनफॉर्मल डिस्कशन करें.
0: मैंने गल्ला ना इतने नहीं करनी है.
1: मैं कहा जी सवाल है, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं.
0: अच्छा, उसने कहा कि डॉक्स आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं.
1: मैं कहा अच्छा जी. हाँ जी सर. मैं कहा आपने यार जरूर आना है ना.
0: अच्छा.
1: कहता जी सर. मैं कहा आपने ट्रेनिंग के लिए जरूर आना है, आरजे रहमान अनवर को मैं कहूंगा.
0: हाँ नहीं, मतलब ठीक है, अगर वो मतलब इस तरह से सीखना चाहता है, बोलने का हुनर सीखना चाहता है, तो आप अगर मुझे रेफर करेंगे तो मैं कर लूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं.
1: आप उसे रंग बिरंगे अलाप सिखाए.
0: अच्छा, आपने कह दिया कि अलाप रंग बिरंगे. ओह माय गॉड, ठीक है.
1: बहरहाल जी, ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से ये है
0: जी
1: कि इसमें सिर्फ ये स्टूडेंट जो हैं उन तक महदूद नहीं है, 18 से 28 साल की उम्र.
0: यस, 28 साल. यस.
1: और फिर इसके अलावा आप अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं भी जाते, प्रोफेशनल लाइफ में है, कोई मसला नहीं है.
0: बिल्कुल.
1: कम से कम बैचलर किया हो आप.
0: बिल्कुल.
1: और अगर बैचलर नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन फॉर सम रीजन रह जाती है, लेकिन उनके पास नॉलेज है, अच्छा है, और इंटर किया हुआ है फॉर सम रीजन, या ए ओ लेवल किया है, नहीं आगे कर पाए, बट स्टिल दे वॉन्ट टू लर्न, और प्रोफेशनल लाइफ में है, हमें अपना वो भेजेंगे, तो विल डेफिनेटली कंसिडर देम.
0: बिल्कुल.
1: और किसी भी शोभा से हो, अगर यूनिवर्सिटी में है, मैथ्स कॉम के अलावा भी किसी भी, ओपन, इट इज ओपन फॉर एवरीवन. हमने आपको बोलने का फन सिखाना है.
0: यस.
1: एल्गोरिदम नहीं सिखाएंगे हम, सिर्फ बोलना सिखाएंगे.
0: हाँ.
1: बोलने में आपने हमसे सीखना है, एल्गोरिदम आप खुद ही सीख जाएंगे.
0: बिल्कुल.
1: डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बनते हैं जो भी बनते हैं.
0: बिल्कुल.
1: फॉर्म इसके अवेलेबल हैं, जो ऑनलाइन फॉर्म बना दिया गया है FM 101 के पेज के ऊपर.
0: बिल्कुल.
1: उस पर क्लिक करें, वहीं पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करें और वो सबमिट हो जाएगा.
0: बिल्कुल ठीक है.
1: और ये हम स्टार्ट करेंगे 16 तारीख से
0: जी,
1: जून से, और हफ्ते में 2 दिन क्लासेस हुआ करेंगे. सेशन ऑफ माइक होगा 1 महीना, और ऑन माइक होगा आखिरी महीना.
0: अरे ऑन माइक भी, जबरदस्त. अरे जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ये तो ड्रीम होता है बहुत से लोगों का कि वो आरजेस के साथ बैठकर कभी ऐसा मौका हो कि हम सुन रहे हैं और हम उनके साथ बैठकर बात भी कर पाए, वो माइक शेयर कर पाए।
1: डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस भी करवाएंगे, सिर्फ ये नहीं है कि लेक्चर ही दिए जाएंगे।
0: जी जी,
1: आपसे एक्सरसाइजेस करवाएंगे, एक्टिविटीज करवाएंगे हम।
0: बिल्कुल,
1: जिसमें मुख्तलिफ तरह की होंगी। अब वो तो तब की तब बताएंगे, डिस्क्लोज थोड़ी करना है।
0: यस यस,
1: दैट गोना बी फन।
0: ये बहुत मजा आने वाला है। और ये डॉक्स, ये भी मैं बीच में मेंशन करना चाहता
1: हूँ, इंटर्नशिप है।
0: यस, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये बीच में मेंशन करना बहुत
1: जरूरी। सिर्फ आपकी टाइम है,
0: आपका टाइम है, वो भी आपकी अपनी जात के लिए। क्योंकि ये यहां से मुझे ऐसा लगता है डॉक्स के 3 महीने की ये क्लासेस अपनी कंप्लीट करने के बाद, जो कि हफ्ते में दो क्लासेस होंगी आई थिंक।
1: हाँ जी,
0: मंगल और बुध दो क्लासेस होंगी सिर्फ, और पूरे हफ्ते में दो क्लासेस आपने। अच्छा, इसका टाइम का भी कोई डिसाइड हो चुका है डॉक्टर?
1: सर 12 से 2।
0: 12 से 2 दोपहर में, ऐसा ही
1: दोपहर में जी।
0: यस, 12 से 2
1: ऐसी होगा जी, गर्मी में नहीं उठाए।
0: अरे जबरदस्त। तो ये दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ये जो 3 महीने हैं हफ्ते में सिर्फ दो महीने हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, ये सिर्फ यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग फील्ड की बात नहीं है, आप अपनी जिंदगी में अपने आप को बिल्कुल नए तरीके से लोगों को नजर आएंगे। वो दोबारा 2 महीने के बाद जब आपसे बात करेंगे तो डिफरेंट नजर आएंगे।
1: यूसीपी है ना जी, वहां पे

0: कल आपसे दोबारा मुलाकात करने के लिए आऊंगा। और कह रहे हैं कि ये शेर सुना दें प्लीज, खुद को मसरूफ किए रखने की कोशिश करना, क्या तेरी याद के जमरे में नहीं आता है। ले जी, मैंने शेर आपके लिए पढ़ दिया। और स्टूडियो में दाखिल हो चुके हैं वसीम भाई, यस, और उनके लिए मैं इसी ऑन कर रहा हूं। सर कैसे मिजाज है आपके, खैरियत से? ले जी, इजाजत लेने का वक्त आन पहुंचा, कोई बात बुरी लगी हो तो तिफलम मकतब समझकर ये सोच करके अभी सीखने के अमल में हूं, दरगुजर कर दीजिएगा या फिर माफ कर दीजिएगा, बड़े लोग हैं आप। लेकिन अगर कोई बात किसी एक इंसान के लिए भी मशले राह हो गई तो यहाँ पे आने का, प्रोग्राम करने का मकसद पूरा हो जाता है, और बस यही मकसद होता है।
1: इंतजार जब से
0: डॉक्स, ये आपके लिए है, ठीक है ना?
1: न शब को दिन से शिकायत,
0: इस पे एक नज्म आपको सुनाता हूं। देखूं जो आसमां से तू इतनी बड़ी जमीन, इतनी बड़ी जमीन पे छोटा सा एक शहर, छोटे से एक शहर में सड़कों का एक जाल, सड़कों के जाल में छुपी वीरान सी गली, वीरान गली के मोड़ पे तन्हा सा एक शजर, तन्हा शजर के साए में छोटा सा एक मकान, छोटे से एक मकान में कच्ची जमीन का सहन, कच्ची जमीन के सहन में खिलता हुआ गुलाब, खिलते हुए गुलाब में महका हुआ बदन, महके हुए बदन में समुंदर सा एक दिल, उस दिल की वो सतों में कहीं खो गया हूं मैं, यूं है कि इस जमीन से बड़ा हो गया हूं मैं। मैंने ठीक कहा ना डॉक्स? मैं जमीन से एक दिन आसमां को आऊंगा, तुम पहले आसमां पे मेरा इंतजार करना। अल्लाह हामी नासर।

Wired Radio. Dave's best music. Q101. Electric. सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

हमको मोहब्बत भी तो हो सकती है, आपसे हमको मोहब्बत भी तो हो सकती है, ये नजर नजरे इनायत भी तो हो सकती है, आपसे हमको मोहब्बत भी तो हो सकती है, ये नजर नजरे इनायत भी तो हो सकती है। क्या जरूरी है कि हर शख्स ही झूठा निकले? क्या जरूरी है कि हर शख्स ही झूठा निकले? उसकी बातों में सदाकत भी तो हो सकती है, आपसे हमको मोहब्बत भी तो हो सकती है, ये नजर नजरे इनायत भी तो हो सकती है। क्या जरूरी है कि हर शख्स ही झूठा निकले? उसकी बातों में सदाकत भी तो हो सकती है। बेनियाजी का ये अंदाज, ये बेजार रवश, बेनियाजी का ये अंदाज, ये बेजार रवश, भूल जाने की रियाजत भी तो हो सकती है। साथ चलने का हुनर आता है चलते ही नहीं, साथ चलने का हुनर आता है चलते ही नहीं, ये जमाने की रवायत भी तो हो सकती है। इतना दुश्वार नहीं मिलना हमें मिलने की, कोई आसान सी सूरत भी तो हो सकती है। दूरियों का ये जो सहरा है बहुत खूब, मगर दूरियों का ये जो सहरा है बहुत खूब, मगर वक्त के साथ ये आदत भी तो हो सकती है। बेरुखी का यूं ही इल्जाम लगाया तूने, बेरुखी का यूं ही इल्जाम लगाया तूने, गौर से देख ये हैरत भी तो हो सकती है। जिसके होठों पे है सन्नाटा कभी गौर तो कर, उसकी आंखों में शिकायत भी तो हो सकती है। ये गजल दिल की हिकायत है जुनू भी है मगर, ये गजल दिल की हिकायत है जुनू भी है मगर, ये गजल मेरी शरारत भी तो हो सकती है। तूने समझा के अयादत को वो आया है बतूल, ये मुलाकात की नियत भी तो हो सकती है, आपसे हमको मोहब्बत भी तो हो सकती है, ये नजर नजरे इनायत भी तो हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामईन, 101 FM पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से ये आवाज़ आपकी जानी पहचानी, आपके अपने मेज़बान आरजे वसीम अहमद की तमाम खूबसूरत समातों को प्रोग्राम गुंचाए शौक में मेरा बहुत बहुत मोहब्बत भरा, खुलूस भरा, प्यार भरा सलाम कबूल हो। यकीनन सभी समातें माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगी। आज की रात यानी बुध और जुमेरात की दरमियानी रात होती है, हमारा आपका साथ होता है इस वक्त से लेके यानी 2 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक। तो मेरे बहुत सारे सामईन जो हैं वो अपने रेडियो सेट के पास मौजूद होते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कॉल करते हैं, जब आप मुझे याद करते हैं और जब आप अपनी खूबसूरत पोइट्री शायरी आप मुझे सेंड करते हैं, भेजते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो बेस करता है शायरी के ऊपर। कोशिश हमारी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अशार जो हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो पोइट्री है, जो शायरी है, जो नज़में हैं, जो गज़लें हैं वो प्रोग्राम में शामिल की जाएं। तो आपसे दरख्वास्त करता हूँ हमेशा
कि जब भी आप आएँ तो अपने साथ कोई एक आधा शेर, कोई एक आधा मिसरा ही सही वो लेके आए, और अगर कोई गज़ल हो जाए तो क्या ही बात है, कोई नज़्म हो जाए तो क्या ही बात है। आपको दिल की गहराइयों से हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। और यकीन मानिए बहुत सारी बातें जो हम कहना चाहते हैं उनको कहने के लिए बाज़ुकात हमारे पास अल्फाज हमें नहीं मिल पाते कि हम वो बात डायरेक्टली कह पाएँ। इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर हम शायरी का सहारा लें, उन्हीं अल्फाज को अगर हम शायरी में कन्वर्ट कर दें, शायरी में तब्दील कर दें, शायरी में लिख लें, शेर बना लें उसका, तो यकीन मानिए वो बात जो हम कहते हुए झिझकते हैं, कहना मुश्किल होता है, लफ्ज़ों में बताना मुश्किल होता है, वो बात बहुत आसान हो जाती है। तो आप उन लफ्ज़ों की एक लड़ी बना सकते हैं, एक लड़ी में पिरो सकते हैं उन लफ्ज़ों को फूलों की तरह, और किसी को भी पेश कर सकते हैं आप उस लड़ी को, और आप अपने जज्बात का बआसानी इजहार कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वो बातें जो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हम शायरी की ज़ुबान में कह जाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कह जाते हैं। कहते हैं कि जो एहसासात होते हैं वो हमारे दिल की जो अथाह गहराइयों के अंदर सच्चाई छुपी होती है उनको हम एहसासात कहते हैं, और जो एहसासात होते हैं वो हमें कभी भी धोखा नहीं देते हैं। जो हम महसूस कर रहे होते हैं, जो हमारा दिल महसूस कर रहा होता है, हमारा दिमाग महसूस कर रहा होता है, हमारी रूह महसूस कर रही होती है, हर चीज़ जो है वो धोखा दे सकती है, मगर एहसासात कभी भी धोखा नहीं देते। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो हम महसूस कर रहे हों वो गलत हो। ये हमारे दिल की आवाज़ होती है, हमारे अंदर की आवाज़ होती है, हमारी आवाज़ होती है। इसलिए एहसासात जो होते हैं उनको हम सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। इंसान हर चीज़ को गहराई से महसूस करता है, हम भी किसी के लहजे को हम देखते हैं उसको महसूस करते हैं, किसी का लहजा बदल जाता है उसको महसूस करते हैं, किसी का रवैया बदल जाता है उसको महसूस करते हैं, हवाओं को महसूस करते हैं, मोहब्बत की जो वाइब्स होती हैं उनको महसूस करते हैं। जो लोग खूबसूरत निगाहों के साथ प्यार भरी निगाहों से हमें देते हैं हम उनको भी महसूस करते हैं, मोहब्बत को ख़ास तौर पर हम महसूस करते हैं। ये हमारे इर्द गिर्द खुशबू का हाला बन के मौजूद रहती है, और हम हर चीज़ को गहराई से महसूस करते हैं, और इंसान वो महसूस करता है कि किसने इससे मोहब्बत की है, कौन इससे मोहब्बत करता है, और किसने मोहब्बत करना छोड़ दी है। क्योंकि ये एहसास जो है वो बड़े ही दिल को जला देने वाला है, बड़े दिल को दुखा देने वाला एहसास है कि कोई आपसे मोहब्बत करना छोड़ दे, मगर आपको उसी वक्त उसका पता चल जाता है कि वो पहले वाली निगाह नहीं, वो पहले वाली बात नहीं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हमें ये एहसास दिला देते हैं कि वो हमसे मोहब्बत नहीं करते, और कभी कभी कोई शख्स हमारे एक लफ्ज का इंतजार कर रहा होता है, वो अपने एहसास से हमें महसूस कर रहा होता है और एक लफ्ज का इंतजार होता है उसे, हमारे एक लफ्ज का, कि हम उसे कहें कि मैं, कि हम उन्हें चाहते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। कभी कोई कहीं पे किस तरह के एहसासात के साथ जुड़ा होता है, कभी कोई कहीं पे किसी और तरह के एहसासात के साथ जुड़ा होता है। अगर हम गौर से देखें तो जिंदगी नाम ही महसूसात का है, एहसासात का है। जिस शख्स के अंदर महसूस करने वाली हिस नहीं है, जो चीज़ों को महसूस नहीं करता, कि ऐसे शख्स भी होते हैं दुनिया में, ऐसे लोग होते हैं जो महसूस ही ना करें किसी बात को, न मोहब्बत के जज्बे को महसूस करें, ना प्यार के जज्बे को महसूस करें, ना नफ़रत के जज्बे को महसूस करें, ऐसा नहीं हो सकता। उसको हम इंसान तो नहीं कहेंगे, वो पत्थर हो सकता है।
मोरमन एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन। अगर कोई आपसे मोहब्बत करना छोड़ दे तो फिर आप क्या करेंगे? कभी इसके बारे में सोचा है? कुछ लोग ऐसा सोचते ही नहीं, वो कहते कि हम ऐसा सोच ही नहीं सकते कि जिसको हम चाहते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा चाहता है हम, बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम चाहें ना चाहें उन्हें चाहिए कि वो हमें चाहते रहें, और अगर वही उनको ये कहना छोड़ दें कि हम उन्हें चाहते हैं या वो हमें चाहते हैं, तो ज़िंदगी जो है वो कैसी हो जाएगी? एक खला पैदा हो जाएगा, एक अकेलापन पैदा हो जाएगा, ऐसे ही है ना। ज़िंदगी की खूबसूरत बातें, खूबसूरत पहलू हमारी हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आप भी भरपूर तरीके से उसमें शामिल होते हैं, और आपके जो कॉल्स हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, वो प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं। हमेशा ये कहता हूँ कि आप ढेर सारे कमेंट्स हमें भिजवाया कीजिए, अपनी राय का खुल के इजहार किया कीजिए, ताकि हम अपने प्रोग्राम को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकें। प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं फेसबुक के थ्रू, जिसका पता है www.facebook.com/fm101lahore। इसी तरह से आप हमें SMS भी कर सकते हैं, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, नाम लिखिए और सेंड कर दीजिए 4471 पे। टेलीफोन नंबर आपका जाना पहचाना 04211100101। पाकिस्तान से बाहर से कॉल करेंगे तो 0092 मिलाइएगा, उसके बाद 42 मिलाइएगा, उसके बाद 111 यानी 111100101 मिलाइएगा, तो आपकी कॉल हम तक पहुंच जाएगी। अभी आपकी ऑफर कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करूंगा, उसके साथ साथ आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस, सभी कुछ प्रोग्राम में शामिल होंगे, मगर शर्त एक है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर हमें भेजिए, पोइट्री के हवाले से, शायरी के हवाले से। हमेशा की तरह एक टॉपिक भी प्रोग्राम में शामिल होगा, वो भी हम आपको भी बताए देते हैं। बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ कुछ थोड़ी देर के लिए चलते हैं, कुछ लंबे अरसे के लिए चलते हैं, कुछ हमें, कुछ लोगों को हम हर वक्त अवेलेबल होते हैं, कुछ लोग हमें हर वक्त अवेलेबल होते हैं, गिले शिकवे पैदा हो जाते हैं, जो हमेशा अवेलेबल होते हैं उनकी कदर कम हो जाती है, ऐसे ही है ना। वो कहते हैं ना, कदर खो देता है रोज का, ऑफ कोर्स आना जाना। अगर कोई नाराज़गी हो जाती है, कोई आपके साथ ज्यादती कर जाता है, कोई आपके दिल को तोड़ जाता है, कहीं पे कोई गिला शिकवा पैदा हो जाता है, तो क्या उसका जवाब देना ज़रूरी है? क्या खामोशी ही सबसे बेहतरीन जवाब हो सकती है? क्या आप खामोशी इख्तियार करते हैं? क्या हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए? हर बंदे की जो ज्यादती है, जो उसने हमारे दिल को दुखाया है, कोई हमारे साथ ऐसी बात की है जिससे हमारा दिल टूटा है, तो बजाय इसके कि हम चीखों पुकार शुरू कर दें, लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, क्या खामोशी जो है वो उस बात का मदावा हो सकती है? क्या ख्याल है? जो लोग कहते हैं कि खामोशी एक बेहतरीन इंतकाम है, तो क्या ये बात सही है? प्रोग्राम में आपके मैसेजेस प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, बिल्कुल इस तरह जैसे आसमान पे सितारे जो हैं वो, जब चांद अभी छोटा होता है जैसे आज कल है, तो सितारे जो हैं वो अंधेरे में और ज़्यादा चमकते हैं। ढेर सारे सितारे होते हैं, आसमान को सजाते हैं, चांद भी सजाता है। आजकल तो ईद का चांद है और आसमान बहुत खूबसूरत नज़र आता है, तो जो चांद और सितारे हैं वो मेरे प्रोग्राम में आपके मैसेजेस हैं, आपके कमेंट्स हैं। प्रोग्राम के आसमान को खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए आप अपने कमेंट्स ज़रूर भिजवाइएगा। अपने सर पर बहुत देर से मैं नीम दराज, सोचती थी कि वो इस वक्त कहां पर होगा। सोचती थी कि वो इस वक्त कहां पर होगा। मैं यहां हूं मगर
इस कूचाए रंगोबू में रोज की तरह से वो आज भी आया होगा। सोचती थी कि वो इस वक्त कहां पर होगा, मैं यहां हूं, मगर इस कूचाए रंगोबू में रोज की तरह से वो आज भी आया होगा। और जब उसने वहां मुझको ना पाया होगा, आपको इल्म है वो आज नहीं आई है। और जब उसने वहां मुझको ना पाया होगा, आपको इल्म है वो आज नहीं आई है। मेरी हर दोस्त से उसने यही पूछा होगा, क्यों नहीं आई, वो क्या बात हुई है आखिर, क्यों नहीं आई, वो क्या बात हुई है आखिर। खुद से इस बात पे 100 बार बोल जा होगा, कल वो आएगी तो मैं उससे नहीं बोलूंगा, कल वो आएगी तो मैं उससे नहीं बोलूंगा। आप ही आप कई बार वो रूठा होगा, वो नहीं है तो बुलंदी का सफर कितना कठिन, सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने ये सोचा होगा। राहदारी में हरे लॉन में फूलों के करीब, राहदारी में हरे लॉन में फूलों के करीब उसने हर समत मुझे आन के ढूंढा होगा। नाम भूले से जो मेरा कहीं आया होगा, नाम भूले से जो मेरा कहीं आया होगा, गैर महसूस तरीके से वो चौंका होगा। एक जुमले को कई बार सुनाया होगा, बात करते हुए 100 बार वो भूला होगा। एक जुमले को कई बार सुनाया होगा, बात करते हुए 100 बार वो भूला होगा। ये जो लड़की नई आई है कहीं वो तो नहीं, उसने हर चेहरा यही सोच के देखा होगा। जाने महफिल है मगर आज फकत मेरे बगैर, हाय किस दर्जा वही बज में तन्हा होगा। कभी सन्नाटों से वहशत जो हुई होगी उसे, उसने बेसाख्ता फिर मुझको पुकारा होगा। चलते चलते कोई मानूस सी आहट पाकर, चलते चलते कोई मानूस सी आहट पाकर दोस्तों को भी किसी उज्र से रोका होगा। याद करके मुझे नम हो गई होंगी पलकें, याद करके मुझे नम हो गई होंगी पलकें, आंख में पड़ गया कुछ कह के ये टाला होगा। और घबरा के किताबों में जो ली होगी पनाह, हर सतर में मेरा चेहरा उभर आया होगा। और घबरा के किताबों में जो ली होगी पनाह, हर सतर में मेरा चेहरा उभर आया होगा। जब मिली होगी उसे मेरी अलालत की खबर, जब मिली होगी उसे मेरी अलालत की खबर, उसने आहिस्ता से दीवार को थामा होगा। सोचकर ये के बहल जाए परेशानी दिल, सोचकर ये के बहल जाए परेशानी दिल, यूं ही बेवजह किसी शख्स को रोका होगा। इत्तफाकन मुझे उस शाम मेरी दोस्त मिली, इत्तफाकन मुझे उस शाम मेरी दोस्त मिली। मैंने पूछा कि सुनो आए थे वो कैसे थे, मैंने पूछा कि सुनो आए थे वो कैसे थे, मुझको पूछा था, मुझे ढूंढा था चारों जानिब। मैंने पूछा कि सुनो आए थे वो कैसे थे, मुझको पूछा था, मुझे ढूंढा था चारों जानिब। उसने एक लम्हे को देखा मुझे और फिर हंस दी, उस हंसी में तो वो तलख ही थी कि उससे आगे क्या कहा उसने मुझे याद नहीं है, लेकिन क्या कहा उसने मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना मालूम है ख्वाबों का भरम टूट गया।
किया। इतना मालूम है ख्वाबों का भरम टूट गया।

0: उड़ने लगे वजूद के जर्रे हवा के साथ, उड़ने लगे वजूद के जर्रे हवा के साथ, मैं इस कदर खलूस से बिखरा कभी न था। सूरज के साथ डूब गया दिल भी मेरा कतील, इतना उदास शाम का मंजर कभी न था। वरुण एफ पाकिस्तान, और इस वक्त देखते हैं कि लाइन पे कौन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जनाब, आज कराची से आपके साथ हैं।
0: क्या बात है परवीन नासिर, वेलकम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक?
1: बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक तो नहीं हूँ वसीम, मेरी आवाज़ से लग रहा होगा मैं तो बड़ी गड़बड़ है। मुझसे लेट ही नहीं जा रहा कि और ज्यादा खांसी होती है।
0: ओहो, ये आजकल कुछ मौसम ऐसा भी है, ठंडे पानी ने कुछ काम खराब कर दिया गर्मी के आने की वजह से।
1: मैं ज्यादा ठंडा पानी पीती भी नहीं हूँ, उसकी वजह से कि गला गड़बड़ ना हो, क्योंकि मुझे बड़ी उलझन होती है। लेकिन अब वो फैला हुआ ये सब जगह जिसे देखो यही हो रहा है
0: जी।
1: तो खैर है, मैंने कहा लेकिन आपने बहुत खूबसूरत नज़्म से आगाज किया, और अभी भी जो आपने बड़ी बहुत खूबसूरत थी भाई,
0: बहुत शुक्रिया।
1: इतना अच्छा लगाया था खास आपका, बहुत अच्छा। तो हाँ वाकई पसंद अच्छे हैं वसीम जी,
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मैं खास ढूंढ के लाता हूँ कि वो खूबसूरत गीत प्रोग्राम में शामिल किए हैं जिनको सुने हुए लोगों को बहुत अरसा हो चुका है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो बड़ा अच्छा, बड़ा मजा देते हैं
0: जी
1: सुनने में आजकल, तो कहाँ वरना ये हमारे जो जेंजी हैं खास तौर से वो तो नहीं सुनते ना ये सॉन्ग वगैरह, लेकिन हमने तो सुने और सुनते हैं अभी भी, बहुत मजा आता है
0: जी।
1: चलिए मैं आपको थोड़ा सा सुना के भाग जाती
0: हूँ। जी, जरूर जरूर।
1: देखिए, उजड़े हुए लोगों से गुरेजा न हुआ कर, हालात की खबरों के ये कतबे भी पढ़ा कर, क्या जानिए क्यों तेज हवा सोच में गुम है, खाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ा कर, खाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ा कर, उस शख्स के तुमसे भी मरासिम तो बहुत होंगे, उस शख्स के तुमसे भी मरासिम तो बहुत होंगे, वो झूठ न बोलेगा मेरे सामने आकर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे। ये भी शेर बड़ा खूबसूरत है वसीम,
0: क्या बात।
1: हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। और ये जनाब कि ऐ दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है, तू हल्का यारा में भी मोहतात रहा कर,
0: तू हल्का यारा में भी मोहतात रहा
1: मोहतात रहा कर। और आखिरी शेर है कि इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसिन, इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसिन, देखा है किसी बार, देखा है कई बार चिरागों को बुझा कर,
0: देखा है कई बार चिरागों को बुझा कर,
1: चिरागों को बुझा।
0: क्या बात, आपको सुनाती हूँ।
1: जिगर हो जाएगा, जिगर हो जाएगा छलनी, ये आंखें खून रोएंगी, वसी बेफैज लोगों से निभा कर कुछ नहीं मिलता,
0: कुछ नहीं मिलता। ब्यूटीफुल,
1: इतना बड़ा हकीकत पसंद आना शेर है,
0: क्या बात।
1: और आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके,
0: जिक्र तुम्हारा करके लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके, तुम्हारा।
1: और मोहब्बत कुछ अलग सी है मेरी आपसे, मोहब्बत कुछ अलग सी है मेरी

0: सुन्नत लिख दी गई है।
1: क्या
0: तो जब वो अपने वालिद के पास आई हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तो उन्होंने आके बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले तो बड़ा खुश हुए, उसके बाद ज़ारो क़तार रोने लगे। तो उन्होंने पूछा बाबा आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो एक रुख है मैं देख रहा हूँ कि जो दिल जोड़े उनके लिए जन्नत है, और मैं देख रहा हूँ जो मेरे नबी की उम्मत है वो तो दिल जो तोड़ ये उनका क्या होगा, वो किस कदर अजियत होगी उनके लिए। तो वो ये चीज सोच के तो परेशान हो रहे। तो हमारे यहाँ देखे ना, हम कहते हैं इसने एक बात कही है हम इसके घर तक पहुंच जाए, इसने ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, मैं भी जाके ऑफिस में दंगा फसाद खड़ा करूं और लोगों को बताऊंगा ये ऐसे है ये ऐसे है। यानी बदला लेने फौरन चले जाते हैं दूसरे को जलील और रुसवा करने। इज्जत अल्लाह ने देनी है,
1: बेशक बेशक
0: वो अल्लाह के इख्तियार में है, जिल्लत और इज्जत देना वो उसके इख्तियार में है। तो हम लोग कौन होते हैं हर एक के ऊपर अपनी बड़ाई जताने वाले और दूसरे की खुशियां छीनने वाले।
1: बहुत शुक्रिया अनिला जी, कुछ सुनाइए ना, कोई कोई शायरी भी तो सुनाइए ना।
0: शायरी के लिए मैं सुनाऊंगी, पहले तो मैं कहूंगी परवीना आंटी के लिए बहुत सारी दुआएं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे और रहमान को भी सेहत तंदुरुस्ती दे। और आज ना दिन गुजर गया, फरहान खान की बर्थडे थी, मैं बड़ी कोशिश करती रही डॉक्स और रहमान की, शुभ मेरी कॉल नहीं लगी, पर रहमान की शुभ बहुत लेट लगी मेरी कॉल। तो बाकी उनके लिए बहुत सी दुआएं, फरहान खान को अल्लाह ताला सलामत रखे, जिंदगी तंदुरुस्ती दे। और हमीद अब्दुल हमीद भाई आए, और
1: तो तारिक
0: भाई जो है ना ये वो ना अपना फ्रिज साफ करके ना खुद बड़े मजे से फ्रिज के सामने बैठे हुए, उनको पता नहीं ईद आ रही है।
1: सही है सही है।
0: और अमीर गुल साहब बहुत अच्छी गुफ्तगु कर गए, उनकी शायरी की क्या बात है,
1: क्या बात।
0: तो अच्छी रौनक होती है जब वो आते हैं, इतना खूबसूरत इंतखाब लेके आते हैं माशाल्लाह से। और अभी उन्होंने पंजाबी की जो अपनी पढ़ी वो बहुत अच्छी थी।
1: अच्छा हमीद गुल साहब का एक शेर भी पहुंचा है मुझे फेसबुक पे, कहते हैं कि ऐब से जब कोई नहीं खाली, ऐब से जब कोई नहीं खाली, आदमी चुप रहे तो बेहतर है। वाह क्या बात है,
0: क्या बात है, कहते हैं ना बेऐब ढूंढने निकलोगे तो अकेले रह जाओगे। तो बस ऐसे ही सुनाने के लिए मैं चार लाइनें सुनाती हूँ। रंजे बेअदाई क्या, ज़ौमे आशनाई क्या, माँ सिवाय तन्हाई, इश्क की कमाई क्या।
1: बहुत अच्छे।
0: खाली खाली आंखें हैं खोखले से जिस्मों पर, खाली खाली आंखें हैं खोखले से जिस्मों पर, बेयकीन रफाकत में बसल क्या जुदाई क्या।
1: बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
0: और थोड़ा सा गुनगुनाऊं?
1: हाँ अब टाइम हमारे पास बिल्कुल थोड़ा सुनाइए।
0: हमारे जो भी कॉलर आए थे अभी मुझसे पहले, एक वो बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत सी दुआएं सलाम है, और हमारे बाकी कॉलर्स के लिए भी बहुत सारा प्यार सरी आप भी के लिए
1: जी।
0: चले मैं कुछ गुनगुनाना चाह रही हूँ, और मैंने कहा मूड है थोड़ा सा गाते हैं
1: जी।

قم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم